अज ने हां कर दी थी, ठीक है, सेवक दे रूप ते तुसी कबूल। सानू अमृत वेले इशनान करा दिता करो। रोज दी सेवा हुण ब्यासा अद्धी रात नू उठदे ने, सिर ते गागर रखदे ने और आप जांदे ने, पहले स्वयं इशनान करदे ने, फिर गागर नू ब्यासा दे जल नाल भर के सिर ते रखदे ने। ए भरी होई गागर जद चुक के बिरद बाबा गुरु अंगद देव जी महाराज दे मार्ग ते चलदा है, ते इंज जापदा है जिवें त्रिलोकी दा भार इस बिरद बाबे ने चुके होया, जिवें समूह संसार दी जिम्मेवारी इस बाबे ने चुकी हुई है। बाद दे वाकई आप दे किरदार राही, आप दे प्रचार राही ये सब कुछ प्रगट भी होया। ये सेवा आपने कोई एक दिन नहीं की थी, एक महीना नहीं की थी, एक साल नहीं बल्कि 12 साल की थी। रोज अद्धी रात नू उठना है, ब्यासा ते पहुंचना है, अमृत वेले होंदे होंदे तक जल भर के लेना है और गालबन 3 कोदा पेंडा है, 6 किलोमीटर दा ये रस्ता है जो आप रोज तय कर देने जाना ते आना। आज किधरे ऐसा होया जद जान लगे अधी रात दा वकत, रात हनेरी सी, आप एक चुलाहे दी खड्डी देज गिर गए। आवाज आई, खड़ाक आई, ता जुलाहे ने अपनी घरवाली नू आवाज मारी, देख बार कोई है, खड्डी दे खड़े च कोई गिरे है। ता जुलाही कह लगी, अद्धी रात नू ओही अमरू ने थावा होएगा, उस तो इलावा होर कौन होएगा। अद्धी रात नू ओही उठदा है, उसे दे सिर ते गागर आउंदी है, ओही भटकदा होया गिर गया होएगा, ओही अमरू ने थावा। बथेरिया नू ये सोचण दा मौका मिल गया कि बिरद शरीर है, शायद पुत्र नहीं रखदे, भतीजे नहीं रखदे, ताई ते शरीकां दे घर आके टिके ने, और सिर्फ टिके ही नहीं, ताई ते ब्यासा तो गागर जल्दी भर के लैंदे ने, दिन नू लकड़ां फाड़दे ने, तप्पड़ छाड़दे ने, लंगर बनाउण दी सेवा करदे ने, ये नौकरी करदे ने, ये गुलामी करदे ने, इन्हां दा कोई थां नहीं। पर चल तो गई गल खंडूर देच, अमरू ने थावा, अमरू ने थावा, अमरू ने थावा। ए बचन धन गुरु अंगद देव जी महाराज दे कदमच पहुंचे और आप दे कन्ना ने सुन के हैरानगी जताई, है अमरू ने थावा। जैसे अमरदास जी आए, कोल बिठाया, सिर ते हथ रख के कह लगे, गुरु अमरदास निथावेयां दी थां, गुरु अमरदास निमाणियां दे माण, गुरु अमरदास नेओटियां दी ओट, गुरु अमरदास ने आसरियां दे आसरे। इंज लगातार वर दे ही गए, वर दे ही गए, और ए वाकई स्पष्ट होया कि गुरु अमरदास निथावेयां दी थां बने, निमाणियां दे माण बने, नियासरियां दे आसरे बने, नियोटियां दी ओट बने। आपने गुरगद्दी ते बैठदे आई सिख जगत दा पहला केंद्री तीर्थ आबाद कीता, बनाया गोविंदवाल, उत्थे बावली तैयार की थी। ए सिख जगत दा पहला तीर्थ है, उस दियां 84 पौड़ियां रखियां, इशनान दी महानता दसी, और उत्थे आपने लंगर दी जड़ी परंपरा तोरी उस दे च वरण वंड खत्म कर दिती। आख्या मैं किसे जात पात नू नहीं मनदा और किसे वरण वंड नू भी नहीं मनदा। 80% इस देश दी आबादी

बन गई, मेरा मन मौलवी बन गया। ऐ मौलवी तू पांच टाइम मस्जिद दे जांदा होवेगा, मैं हर वक्त मस्जिद दे रहना, तू पांच वक्त नमाज पढ़दा होवेगा, मैं 24 घंटे हर वक्त नमाज पढ़दा, तू जमीन दे उत्ते इट्टां दी मस्जिद खड़ी कीती है, मैं जिंदगी नूं ही मस्जिद बना लिया, खुदा दा घर बना लिया। देही महजिद, इस तरह का क्रांतिकारी एक बोल भगत पीपा का ही है, भावे इको ही है पर बड़ा क्रांतिकारी। कायो देवा कायो देवन कायो जंगम जाति, कायो धूप दीप नहीं बेदा, कायो बूजो पाती, काया ही मेरी मंदिर बन गई है, हरि मंदिर बन गई है, हरि निर्वैर है तो मैं भी निर्वैर हो गया, हरि निर्भय है तो मैं भी निर्भय, हरी प्रेम दा सागर है मैं भी प्रेम दा सागर। जमीन ते ते हरी मंदिर बन गया, मस्जिद बन गई, जिंदगी दे च दुर्गंध वैर विरोध दी है, अहंकार दी है, वासना दी है। गुरुद्वारे ते तू जा रहे हैं ते बना भी लिया, पर तू गुरु दा रूप नहीं बन सकया, तेनू वेख के गुरु मान नाल आख सके खालसा मेरो रूप है खास, ये मेरे अपना ही रूप, ये दर्शन मेरे ही दर्शन। गुरुद्वारे क्यों जानते हैं? ताकि गुरु दे दर्शन हो सकन, पर जिन्हें अपने आप नू गुरु वर्गा बना लिया ओदे दर्शन प्रभु दे दर्शन ने। संत राम में भेद किछ नाई, एक जन कई मैं लाख करो री, हर का भगत सो हर ही जे, हरी दा भगत ते हरी जैसा, परमात्मा जैसा है। और ताई ते साहब कहिंदे ने सिख मेरा ही रूप है, असी ताई अरदास दे च शब्द ऐड कीते ने, सही संत गुरुमुख प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चेते। हुण मैं अपने मूल विषय ते आवां, मैं देखदा पिया मैं पूरा नहीं कर सकिया, कोशिश करांगा कल। सूरज है, उदी किरण है, प्रकाश है, प्रकाश जिथे पै रहा है ओ जिस तो चीज प्रकाशित हो रही है और जो बनी भी उसे ही प्रकाश तो है ओ है। देखो सूरज ना होवे तो फिर कुछ भी नहीं होवेगा, सूरज ठंडा पै जाए असी पहले ठंडे पै, कहिंदे ना हाथ पैर ठंडे हो गए, गल खत्म। पानी ते पिया शरीर दे च, मुर्दे च भी होंदा है, मिट्टी दी ढेरी ते पई है अग ठंडी हो गई, शरीर दे च अग ठंडी हो गई, शरीर मुर्दा हो गया, ब्रह्मण दे सूरज ठंडा हो जाए सब कुछ मुर्दा हो जाए। सूरज एको रुत अने नानक करते के केते वेस, तो सब कुछ सूरज करके, सब कुछ परमात्मा करके, परमात्मा फिर जीव आत्मा ए किरण, फिर मन प्रकाश, फिर ए तन जिथे प्रकाश पैरे तैरे। तो मैं अर्ज कर रहा सी तार्किक ए कहंदे ने तन मैल है, मन मैल है, असी नहीं मन सकते कि जीव आत्मा मैली नहीं होगी, मैली है जीव आत्मा, मैली है तो फिर उस परमात्मा नु भी बेदाग कहने की लोड़ नहीं, ग्रहण सूरज नु भी लगता। बड़ी वड्डी तर्क है, ये भी मैं अर्ज करता, बहुत प्रबल दलील है। मैं संकोच नाल कह रहा क्योंकि एक सज्जन मैनु बड़ी किरणा नाल कह रहा भी थानू ये वाम मार्गियां दे ग्रंथ पढ़न की कोई लोड़ सी, थानू ऋषि वात्सायन नू पढ़न दी की लोड़ सी। मैं क्या पुरखा, परमात्मा ने बगीचे च बड़े फुल बनाए, बड़े फुल बनाए, हर एक दी अपनी अपनी महक, हर एक दी अपनी अपनी खुशबू है। महान होवेगा कमल पर चवेली भी

अगले महान होवेगा गुलाब, पर गेंदे दी भी अपनी गल, ओदी भी अपनी गल। मैं संकोची दिमाग का बंदा ही नहीं, कता ही नहीं। हवा सारी जगह ते जांदी है ते हुण सानू छू लिया ते हुण इहनू आखी हुण तू मुसलमान नू ना छूवे, ते जे मुसलमान नू छू के आ रही है फिर सानू ना छूवे, तू सब नू छूंदी है। सूरज दा चानना सारिआं दे घरां च जांदा है, सारिआं दे घरां च जांदा है। बारिश जद होंदी है तो बारिश ये थोड़ी सोचती है संत के घर दे बारिश करनी है, दूजियां दे घर दे च नहीं, सब जगह आउंदी है। टोयां ते आउंदी है, टिब्बियां ते आउंदी है, मरुथल ते आउंदी है, जंगलां दे च आउंदी है, शहरां च आउंदी है, पहाड़ां ते आउंदी है। परमात्मा सर्व सांझा है, सर्व सांझे नाल संकीर्ण दिमाग छोटा दिल संबंधित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तस भी बंदे नूं मैं धार्मिक मनदा ही नहीं आता, तंग दिल नूं मैं धार्मिक मनदा ही नहीं आता। मैं तो देखना सिख दी सिख नाल नफरत करना। खैर मुख्तसर जो मैं अर्ज कर वाह मार गई, कहिंदे ने सी बेदाग नहीं मनदे परमात्मा नूं। तन मैल है ते मन मैल है, ये सारे तस्लीम कर देने। ते जे मन मैल है ते जीव आत्मा कित्थों निर्मल हो गई, भी मैली। जीव आत्मा मैली है तो फिर परमात्मा भी बेदाग नहीं, ग्रहण सूरज नूं भी लगता, ग्रहण सूरज नूं भी लगता। भाई गुरुदास जी ने इस नूं जिवें हल कीता है, एक दलील मैं थोड़े सामने ये रखना। बाकी धन गुरु ग्रंथ साहब दियां बाकी दलीलां मैं थोड़े सामने कल रखने की निमाणी कोशिश करांगा, क्योंकि समा हो गया। बोल चुक दी शमा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु, हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो, हे शरण जोग दयाल दीनानाथ मया

वीरता दी मूर्ति नहीं दिखाई देती। समो जगत इसे ही वैण देच वह तो रहा है, इसे ही हड़ देच वह तो रहा है। और धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक देच इसी वेग का जिक्र कर रहे ने। हे कामं नरक विश्रामं बहुजोनी भरमावणे चित हरणं त्रैलोक गमन जप तप शील बेदारणे। हे काम तू कीते हुए जप नु कीते हुए तप नु शील नु भंग करने वाला है, ना तू संयम रहण देना है, ना तू शर्म रहण देना है, ना तू जप रहण देना है, ना तू तप रहण देना है, इतना चंचल कर देना है कि मनुख लई राम दा चिंतन कठिन हो जाता है, नहचल नाल जुड़ना कठिन हो जाता है। चंचल दा मतलब है चल चल चल, इतना चलाए मान कर देना है मन नू, वो जो नहीं चल है नहीं चलदा टिकया होया है उस नाल टिकना उस नाल जुड़ना कठिन हो जाता है। और जीवन चंचलता दे वैण विच बह तुरदा है। अगम्मी महान मिलिया ए जीवन काम दी भेंट हो जाता है, जदके जीवन मिलिया सी राम नू भेंट करन लई हो गया काम दी भेंट। अगर काम प्रार्थना बन जाए तो राम प्रगट होंदा है, काम वासना बन जाए तो फिर जीवन काममयी हो जाता है, काम दा रूप बन जाता है, वासना दा रूप बन जाता है। हे कामं नरक विश्रामं बहुजोनी भरमावणे चित हरणं त्रैलोक गमं जप तप शील बिदारणे अलप सुख अवित चंद।

जो इतना सुंदर कमल दा फुल है, इते पंख दी देन है, चिकड़ दी देन है, ए मनुखी जन्म, ए मनुखी काया, इतनी सुंदर काया, इति कौन वेग दी देन है, इति जमे है चिकड़ तो, पिता दा चिकड़, मां दा चिकड़, पिता दी वाशना, मां दी वाशना, इति उस तो जमे है, इति चिकड़ तो पैदा होया है, पैदा तो चिकड़ तो होया, घर तेच सुख वधे, आराम वधे, प्रभु दा सिमरन चलिया, ऊपर उठिया, आसमाना नु छूण दी लालसा, गगन नु सजदा करन दी लालसा, लेकिन पानी घटिया, थल्ले आया, दुख और पदार्थां दी कमी, उलझना कुछ खेड़े च फर्क पांदिया ने, कुछ गिरांदिया ने, अचानक किधरे हड़ दा पानी, किधरे किसे दरिया चो वाड़ा निकले है, उसने रुख सरोवर दी तरफ कर लिया, लबालब अचानक अचनचेत सरोवर नु भर देता है। कई दफा अचानक धन संपदा दे अंबार मनुख दे घर विच लग जांदे, हड़ दी तरह, मानो किसी दरिया दा वेग सरोवर दी तरफ हो गया है, मानो बरखा दे हड़ दा जल सरोवर दी तरफ हो गया है। किसी किसी घर विच, किसी किसी मनुखी जिंदगी ते धन ते संपदा दी बारिश ही हो जांदी है, जिवें सरोवर विच कोई दरिया पै गया है, इस तरह पदार्थ आ गए ने, इस तरह धन संपदा आ गई है, अचानक मिले हुए इस धन संपदा ते पदार्थां दे वेग नूं झल नहीं सकया, ठल नहीं सकया, डूब गया, पहले पदार्थां च डूबया, पहले कमल पानी च डूबया, फिर जिस चिक्कड़ दे चिस्तियां जड़ां सन, जिस चिक्कड़ चों पैदा होया, उसी चिक्कड़ दे फस के रह गया, फिर ते अत्यंत कामी हो गया। जद सुनदे आं किसे नवाब दियां 500 बेगमां, किसे राजे दियां 400 राणियां, किसे शेख दियां 100 बेगमां, हैरानगी, क्या जिंदगी इसे लई, चिक्कड़ तो जमया, चिक्कड़ दे च फस के रह गया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ने, पंकज फाते पंग महामद गुंफिया, अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया। ऐ कमल, तू अपनी महक भूल गया, अपना स्वप्न भूल गया, अपना खेड़ा भूल गया, चिक्कड़ दे च फस के रह गया। बड़िया बड़िया जिंदगियां खिड़िया हुई, गगन चुंबी इस चिक्कड़ विच गर्त होंदिया देखिया ने, फसिया हुई देखिया ने, इतिहास भरिया गया, और हैरानगी, क्या जीवन सिर्फ इसे लई है, नहीं संभाल सकया इस हड़ नूं, जितना धन वधिया, जितने पदार्थ वधे उतना ही कामी हुंदा गया, जितने दुनियावी सुख वधे उतना ही कामी हुंदा गया, इदी वाशना, इदी काम वाशना, इदी कामना बार बार जाके रुकी स्त्री ते। वैसे ते कामना एक सर्कल दिच दौड़ दी है, एक घेरे दिच, एक वर्तुल दिच, पुत्र दी कामना, मिल गया पुत्र, कामना अगे गई, मित्रां दी कामना, मिल गया मित्र, कामना अगे गई, धन संपदा दी कामना, कामना अगे गई, ये वक्ती तौर के आके रुकदी है स्त्री ते,
तो साहित्यकारा ने साडे देश दे धार्मिक पुरुषां ने स्त्री नूं इक नाम दिता है कामनी, कामना दी मणि, जिथे मनुख दी कामना आके रुक जांदी है वक्ती तौर ते, घुमदी है फिर आके स्त्री ते रुकदी है, घुमदी है फिर आके स्त्री ते रुकदी है, स्त्री बन गई कामनी। स्त्री दी कामना घुमदी है रुकदी आके पुरुष ते, तो पुरुष बन गया कामदेव, एक कामदेव एक कामनी। स्त्री ते पुरुष दा ए मिलन, कामना दी मणि ते कामदेव दा मिलन होके रह गया, जदके इते होना चाहिदा सी ज्ञान दा मिलन, भक्ति दा मिलन। स्त्री नू ज्ञान मिलदा, पुरुष नू भक्ति मिलदी, पर नहीं, पुरुष नू मिली कामनी, स्त्री नू मिलिया कामदेव। ज्ञान देव रह गया, भक्ति देवी रह गई, भक्ति दी मणि रह गई, पुरुष दी चमक दमक मत्थे ते उस दिन प्रगट होवेगी जिस दिन भक्ति दी मणि इसते मस्तक दे चमके, और स्त्री दा मस्तक उस दिन चमकेगा जिस दिन ज्ञान दा प्रकाश, ज्ञान दा सूरज उसके मकसद मस्तक पे जो है चमके। पर स्त्री पुरुष दा मेल, ये ज्ञान ते भक्ति दा मेल ना होके इते कामना दी मणि ते कामदेव दा मेल होके रह गया। परिवारक रिश्ते, ये ज्ञान ते भक्ति दे रिश्ते ना रह गए, इते काम देव ते कामना दी मणि। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते ऐसा भी प्रमाण कर देने, छले कनक कामनी, छले आ गया मनुख दे, धोखा खा गया मनुख कामनी तो, कनक तो जिंदगी बर्बाद हो गई, जीवन भ्रष्ट होके जह रह गया। भक्ति दी मणि चमकनी चाहिदी सी, काम मणि चमक रही है, काम मणि है। ज्ञान दा प्रकाश मस्तक ते होना चाहिदा सी, काम देव चमक रहे है। और ए मिलन अगर काम देव ते कामणी दा होया और जीवन भर ऐसा होया, तो इस तो जो औलाद पैदा होवेगी वो कोई ऋषि मुनि दार्शनिक संत भगत ज्ञानी नहीं होवेगी। वो औलाद कैसी होवेगी? धन गुरु नानक देव जी महाराज इन फरमान करते हैं,

इस दौर देच, इस काम ही युग देच हम कहियत कल युग के काम ही जो संतान पैदा हो रही है कली अंदर नान का जिन्ना दा अवतार जिन भूत पैदा हो रहे हैं पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदा पुत ते जिन भूत है तेवी जिन भूत है कोई मीरा नहीं पैदा हो रही माता भाग कोर नहीं लैला पैदा हो रही है कोई कबीर कोई रविदास कोई भाई मनी सिंह कोई भाई गुरदास नहीं पैदा हो रहे मजनू पैदा हो रहे क्यों मां बाप शरीरक तल तो उच्चे ही नहीं उठ सके दोहां दा मिलन पहले शरीरक होवे सहजे सहजे ए जद शरीरक तल तो उच्चे उठन उस समय ना दे घर औलाद आवे भगत आणगे दार्शनिक आणगे विज्ञानक आणगे संत आणगे पर जे जीवन भर शरीर तो उच्चे ही नहीं उठ सके वासना तो उच्चे ही नहीं उठ सके और इसे दल दल दे फसे रहे तो औलाद आएगी जिन ते भूत जिन्ना ते भूता नाल ए युग ए संसार भर गया है जिन भूत जो अदृश्य रूप देच पहले कर्म करदे सन दृश्यमान रूप देच ए मनुख आज कर रहे है जिन भूतानु काबू करना औखा सी अजो की अवलाद नु काबू करना औखा है बहुत औखा है कठिन है ए कॉलेज स्कूलां दियां कुर्सियां तोड़ रहे ने उस्तादां नु मार रहे ने तरह तरह दे कुकर्म कर रहे ने और किधरे भी सील नहीं संजम नहीं उसका मूल कारण है मां बाप दा जीवन प्रार्थना नहीं बन सकया वासना ही बनिया रहा मां बाप दा जीवन राममय नहीं हो सकया सिर्फ काममय होके रह गया बादशाह कहंदे ने रन्ना होइयां बोधियां पुरख होए सयाद सील संजम सुच भन्नी खाना खाज अखाज रन्ना होइयां बोधियां स्त्रियां बहुत चंचल दिन रात अपने रूप दी प्रदर्शनी करनी और अपने रूप नु देखना यही उना दी जिंदगी दा लक्ष्य बन गया भगत कबीर भी कहंदे ने वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए रूप देख देख नारी जिथे वेद पढ़दिया पढ़दिया पंडित इसे जी खप गए उथे अपना रूप वेखदी वेखदी ते विखांदी विखांदी बस नारी इसे जी खप के रह गई रूप पेख पेख नारी स्त्री प्रथम अपना रूप वेखदी है पर महसूस कर दी हां हुण ठीक है फिर विखाण लई निकलदी है रूप दी प्रदर्शनी शरीर दी प्रदर्शनी और यही चाव यही शौक वद्दा जाए तो जिस्म तो कपड़ा हटदा जाएगा मनुख एक सभ्य मनुख सोच भी नहीं सकदा कि स्त्री अर्ध नगन होके भी घूम सकती है बाजारां दे और नगन होके भी नच सकती है थिएटरां दे हां वासना चरम सीमा ते पहुंची हुई होवे रूप नु वेखना ते विखाना यही जिंदगी दा लक्ष्य होवे तो फिर शरीर तो कपड़ा हटदा जाएगा हटदा जाएगा हटदा जाएगा अर्ध नगन और फिर अल्फ नगन इस तरह उसकी प्रदर्शनी होवेगी पुरख होए सयाद सयाद शब्द फारसी दा है
ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਇਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਗਨ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਔਰ ਅਜੇ ਇਤਨੀ ਧਨਾੜਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਧ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਆਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਧ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੂਬ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੈਸ਼ ਨਾਵਲ, ਜਿਨਸੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਖੂਬ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੂਬ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਮਾਨੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬਿਮਾਰ। ਔਰ ਇਸਨੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁੱਖ। ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪਾਨੀ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਲਪ ਸੁਖ ਪਵਿੱਤ ਚੰਚਲ, ਉੱਚ ਨੀਚ ਸਮਾਵਣੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ, ਔਰ ਤੂੰ ਐਸਾ ਚੰਚਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤੁੱਛ, ਇਸੇ ਅਲਪ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਚਾਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ।

ज्ञान कर धर्म वधे नते रसना ते प्रभु दा नाम ले आइए उस सच नु सत्य नु रटन करिए उस विच मन जोड़िए धर्म पैदा हो जाता है। धर्म दा बूटा अंकुरित हो जाता है और परोपकार कीते हैं दान पुन कीते हैं धर्म दा ए बूटा सहजे सहजे वधदा है उठदा है। स्थित धर्म खिमा के संगा धर्म दा बूटा शमा दे आसरे दे टिके रहिंदा है। कोमल बूटे गिर ना जान ढह ना जान तूफानी हवावां उना दियां जड़ां ना पुट देन तो सहारा देना पैंदा है कोमल बूटियां नूं किसे सोटी दा किसे दीवार दा। तो शमा दी सोटी नाल शमा दे सहारे खिमा दे सहारे ए धर्म दा बूटा रोज रोज वधदा है उच्चा हुंदा है उच्चा हुंदा है। स्थिते धर्म खिमा के संगा धर्म क्रोध कर होत विभंगा छिन मात्र क्रोध कर दिया धर्म दा बूटा जल के खाक हो जाता है। क्रोध ऐसी अगन पता नहीं कितने दिना दी तपस्या नू जला के रख दें दी कितने दिना दी साधना कितने दिना दा परोपकार। वाकई अगर एक बूटा छे महीने साल सिंच के वड्डा कीता है बस एक चिंगारी उसनु भस्म कर सकती है। क्रोध दी छणक अगन छोटी जी अग्नि कीते किताए पैदा होए धर्म नु नष्ट करके रख देंदी। क्रोध वास्तविक मूर्खता दी बुनियाद ते खड़ा होंदा है। क्रोधी स्याणा नहीं हो सकता। क्रोध बारे कुछ होर जानकारियां इस तरह दिया ने। जर्मन दी गल है एक मां बच्चा ले आई है डॉक्टर को मुर्दा रोंदी हुई चीखदी हुई। डॉक्टर भी हैरान है जदे मर ही चुके है ते मेरे को ल्याण दा मतलब जदे खत्म ही हो गया है फिर ये रोंदी हुई इत्थे क्यों ले आई है। डॉक्टर कहिंदा इत्थे मुर्दा है रोंदी हुई बिलखदी हुई ममता दी मारी मांग कह रही है हां मर गया ये तो ठीक है पर मैं इस वास्ते ले आई है क्यों मरया है किवें मरया है मैनू कुछ कारण नहीं दिखाई देंदा। अच्छा तो इस वास्ते ले आई है। डॉक्टर उस बच्चे नू वेखदा है अपनी सियाणप नाल जांच पड़ताल करदा है मां नू पुछदा है ए दस किवें गुजरिया कदों गुजरिया। बस मेरी गोद देसी मेरा दूध पींदियां ही पींदियां ए सिर सुट बैठा है खत्म हो गया। तो मतलब होया तेरा दूध पींदियां पींदियां मर गया। क्या दसेंगी जिस वक्त तू इस बच्चे नू दूध पिला रही सी तेरी मनोदशा की सी तेरी मानसिक हालत की सी। ये मां कहंदी है मेरा ते पति नाल झगड़ा चल रहा सी बहुत उच्ची बोलचाल चल रही सी ये बच्चा विचकार रोन लग पया मैं इसनु दूध पिलाण लग पई
ਪਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਉਬਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਬੀਵੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਇਆ। ਜਦ ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਉਬਲੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੰਢਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਿਵਸਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਦਸ ਬੈਰਾਗਨ ਮੋਹੇ ਬਸ ਕੀਨੀ, ਪੰਚੋ ਕਾ ਮਿਟਨਾ, ਸੱਤਰ ਦੋਏ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੇ,

और चातर की मत दूर निवारो। अंधा कर देंगा जिन्हां दियां निगाहां बड़ियां लंबियां ने, जो दूर तक वेखदे ने अपने पैरां नूं भी नहीं देख सकणगे कित्थे खड़े आ, मैनूं भेज के ते देखो। अंधा कर देंगा जो पारदर्शी ने, पार तक देखदे ने और आर भी नहीं दिखाई देगा। जो लंबियां निगाहां रखदे ने, लंबी नजर रखदे ने, दूर दृष्टा रखदे ने, ए भी नहीं देख सकने कि किथे खड़े हैं, मैनू भेज के देखो। अंध करो दृगवंतन को, श्रुतवंतन को बदरो कर डारो। जिहड़े विचारक ने, सूझवान ने, पागल करके रख देंगा, हिला देंगा उन्हां दी सोचनी नूं, हिला देंगा उन्हां दी विचार शक्ति नूं। धृतवंतन को सो अधीर करो और चातर की मत दूर निवारो। धीरजवान नूं, सबरवान नूं मैं बेसबरा करके रख देंगा, जल्दबाज बना देंगा। क्रोधी बहुत जल्दबाज होता है, जल्दबाज बहुत क्रोधी होता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बड़े सुंदर वाक जफरनामे दे आपने औरंगजेब नूं इंज लिखे है, जे खुश गुफ्त तो फिर दो सीए खुशतर जवां के जूदी बवद कारे आहिर मना। ऐ औरंगजेब कितना सुंदर लिखे है तेरे हम दीन जनाब फिरदौसी ने, ईरान दा मायानाज शायर, महान सूझवान, दूरदृष्ट है। औरंगजेब चल तू मेरे बोलां तो कुछ नहीं सिखिया, ना सिखना चाहना है, कम से कम फिरदौसी नूं पढ़ लेंदा, फिरदौसी दे बोल सुन लेंदा। चे खुश गुफ्त फिरदौसी है खुशतर जबां के जूदी बवद कारे आहिर मना। कितना सोना उसने लिखा है कि जल्दबाजी करना शैताना दा कम है। तुम बहुत जल्दी की थी क्रोधी, बहुत जल्दबाज आंदा है तू, इसी जल्दबाजी दे प्यो नूं कैद कीता, भरावां नूं कतल कीता, भैन जहां आरा नूं भी जेल विच पाया। और ऐ औरंगजेब तेरी इस जल्दबाजी ते इस क्रोध ने पता नहीं कितने मासूमां दी जान ली, सरमद जैसे सूफी फकीर, फिर मेरे मासूम लाडले, फिर त्याग ते वैराग दी मूर्ति, धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी शहादत, सब तेरे क्रोध दा कारनामा, सब तेरी जल्दबाजी दा कारनामा। तू रंचक मात्र भी सोचिया नहीं, पंडित गुलाब सिंह जी ठीक रखते ने, क्रोध कह रहे है सोचेगा ही नहीं मनुख, उस दे धीरज ही नहीं रहेगा, दूरदृष्टा ही नहीं रहेगी, जितना सयाणा होवेगा मूर्ख हो जाएगा। धृतवंतन को सो अधीर करो और चातर की मत दूर निवारो। हित कारज नाए पिखे कबही, जिनके उर भीतर मैं पग धारूं।

करोत जथा मरकटे। हे क्रोध तेरा वासा हुंदा है विषयी मनुखां दे अंदर, जिन्हां दी वासना अतृप्त रह गई है, जिन्हां दी कामना अतृप्त रह गई है, जिन्हां दी तृष्णा अतृप्त रह गई है, जिन्हां दीआं इच्छावां अतृप्त रह गईआं ने, जिन्हां दीआं कामनावां अतृप्त रह गईआं ने, तेरा वासा उत्थे ही आउंदा है। अतृप्त वासना क्रोध बनदी है, अतृप्त वासना गिले बनदी है, अतृप्त वासना शिकवे बनदी है, अतृप्त वासना असंतुष्टि नूं जन्म देंदी है, और इह सब कुछ फिर क्रोध नूं बर्बाद करदा है। इह क्रोध तेरा वासा है विषयी जीवां दे अंदर। नरतं करोत जथा मरकटे। तू जिस दे अंदर वासा करदा है उसनू इस तरह नचांदा है जिवें मदारी बंदर नू नचांदा है। ऐ क्रोध तू बंदर दी तरह उस मनुख नू नचांदा है जिस दे अंदर तू प्रवेश कर जाना है। अनेक सासन अनेक सासन ताड़ंते जमदूते तव संगे अधमं नरे। जिस दे अंदर तेरा वासा हो जाता है उसनु जमजूता दी ताड़ना सारनी पैंदी है, बार बार जमना पैंदा है, मरना पैंदा है। हे क्रोध तव संगे अधमं नरे। अधम गति दे लोग तेरे नाल आउंदे ने, अधम मनुख नीच मनुख तेरे नाल आउंदे ने। क्रोधी महान नहीं हो सकदा, क्रोधी महानीच है, महानीच है। तो फिर इस तों बचाओ किस तरह करिए, इस क्रोध तो किवें बचिए। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ए महान वाक सानू इंज उपदेश करदा है। आखरी पंक्ति

लोभी स्वयं भ्रष्ट होता है, सब कुछ भ्रष्ट करके रख देता है। लोभी तीर्थां मंदिरां बाजार बना के रख देता है और बाजार देते ठगी चलती है। बाजार ते ठगी दा चोली दामन दा जो है साथ है। ये लोभ इस दे कारण करके जीव पता नहीं कितनी थावां ते भरमदा है, भटकदा है और उसका मन डोलदा है और हर जगह नूं भ्रष्ट करदा है। हर वक्त लैण दी बिरती, लैण दी बिरती, लैण दी बिरती। लोभी दे नाल हर वक्त बाजार चलदा है, बाजार विच मनुख कुछ लैण लई जांदा है। लेकिन लोभी नूं ऐसा बाजार चाहिदा है, लेना ते सब कुछ है और सब दे कोलो लेना है, बदले दिच देना कुछ भी नहीं, ऐसा बाजार चाहिदा है। इस तरह दा बाजार लोभी हर वक्त अपनी कल्पना दी दुनिया दिच बनाई रखता है। लिहाजा लोभी दे नाल ही बाजार जांदा है। लोभी जिथे बैठा है उथे ही बाजार है, चाहे वह हरी मंदिर बैठा है, चाहे गुरुद्वारे बैठा है, चाहे खाना काबा देच बैठा है, चाहे चर्च देच बैठा है। लोभी तो बाजार देच बैठा है, वो किधरे मंदिर देच नहीं बैठा, वो किधरे गुरुद्वारे नहीं बैठा, किधरे चर्च ते मस्जिद देच नहीं बैठा। लोभी जिथे भी बैठा है बाजार देच बैठा है। लोभी जिधर चलता है बाजार नाल चलता है, लोभी जिधर चलता है ठगियां उसके नाल ही जो है चल दिया ने। फिर सतगुरुदेव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक विच इन फरमान करते हैं।

0: है लोभ, हे लोभ, तैनु मित्र दिवी शर्म नहीं, तो मित्र नाल भी ठगी कर दें। तेनु इष्ट तो भी संकोच नहीं, तो इष्ट नाल भी ठगी कर दें। तू संबंधियां तो भी शर्म नहीं खांदा, तो उना नाल भी ठग गया कर दें, उनां नूं भी धोखा देना है। नच मात पिता तव लज्जया, तेनू मां बाप दी भी लज्जा नहीं, तू ते उनां नाल भी ठगी करदा है, तू ते उनां नाल भी धोखा करदा है। पातशाह दा फरमान, लोभी का वेसाना की जे जे का पार वसा है। लोभी ते भरोसा औखा है, और आज दे युग दे चूंकि लोभ प्रबल है, प्रधान है, भरोसा उड़दा जा रहा है, उड़ गया है, या किधरे कोई भरोसा करदा है, विश्वासघात होंदा है, उस दे भरोसे नूं बहुत वड्डी सट लगदी है। लोभी नूं मेरे पातशाह ने कुत्ते नाल कूकर नाल तशबीह दित्ती है।
1: ज्यों कूकर हर काया,

भख अभख सब खाए। लोभी ते कुत्ते दी तरह है, हर थां ते मुंह मारना, हर वक्त मुंह मारना, क्रंग दे च मुंह मारना, हड्डी दे जो है मुंह मारना, और दूजे ने मुंह मारना देना, दूजे ते भौंकना, ये लोभी दी मनोबिरती है। इसका एक सुंदर चित्रण धन गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री राग दे एक शब्द दे च बड़े सुंदर ढंग नाल कीता है। एक स्वान दोए स्वानी नाल भलके भौंके सदा।

कर्तार, हे कर्तार, धाणक हो गया। धाणक जो शमशान घाट पिच बैठ के उड़ीक कर देने कदों कोई लाश आवे, कफन मिले, भांडे मिलन, पैसे मिलन, कदों कोई लाश आवे, साड़ियां लकड़ियां बिकन, कदों लाश आवे, सानू मेहनताना मिले, साजो समिग्री मिले, जिसदी उपजीविका, जिसदी रोजी, जिसदी उड़ीक किसी दी मौत ते खड़ी है, और जो सवेरे तो लेके शाम तक, रात तक इसे उड़ीक च रवे, कोई मुर्दा आवे, कोई मुर्दा आवे, कोई मुर्दा आवे, ऐसे मनुख दी रूह भी मुर्दा हो जाती है, ऐसे मनुख दा इखलाक भी मुर्दा हो जाता है, ऐसे मनुख दा आचरण भी मुर्दा हो जाता है। शेख सादी ने एक बड़ी सुंदर कविता, शायरी गुलिस्तान विच कीती है। फरमान है उना दा, गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस्त, मैथो इंसाफ दी गल पुछो, बद बख्त कौन है, बद किस्मत कौन है, कि दर राह तश रंज दी गर कस अस्त, जिस दी राहत दूजियां दी रंज ते खड़ी है, जिस दियां खुशियां दूजियां दे रोने ते खड़ियां ने, जो दूजियां दी बर्बादी विचों आबादी लभदा है, जो दूजियां दी मौत विचों जिंदगी लभदा है, जो दूजियां दे नुकसान विचों नफा लभदा है, जो दूजियां दी बेइज्जती विचों इज्जत लभदा है, जो दूजियां दे रोने विचों हासे लभदा है, इते बड़ा बदबख्त, बड़ा बदबख्त, सारा दिन ए उड़ीक होवे, ए सोचनी होवे, मरे किसे घर विच कोई मनुख, मौत होवे किसे दी, खत्म होवे कोई, लाश आवे, मैनू कपड़े मिलन, मैनू साजो समिगरी मिले, मैनू धन मिले, इस तरह दी सोचनी इखलाक दा पतन कर देंदी है। ठीक है, अगर ये पेशा है, धंधा है किसे दा, पर सोचनी विच ना ले आवे, उपजीविका प्रभु ते सुटे, सेवा दे रूप विच करे, सोचे परमात्मा दी तरफों यही मेरी ड्यूटी लगी है, तो ये सारी सेवा करदे होया उदी उपजीविका ते चलेगी, पर उसका इखलाकी पतन नहीं होगा, उदी मनोवृत्ति थल्ले नहीं जाएगी। पर ओ ही सर्व धाणक नहीं जो शमशान घाट विच बैठ के सारा दिन मुर्दियां दी उड़ीक करदा है, ते किसे घर विच मौत होवे इसकी उड़ीक करदा है। नहीं, सारा संसार ही लोभियां ने शमशान घाट बना के रख दिता है, और खुद बैठा है धाणक दी तरह, कोई मरे मैनू कुछ मिले, कोई तबाह होवे मैनू कुछ मिले, मैनू कुछ मिलना चाहिदा है, हुंदा है दूजा तबाह ते होवे, मेरे पल्ले कुछ पैना चाहिदा है, खोया जांदा सब दा ते खोया जान दे। इस तरह हर मनुख धाणक बन गया, और हर मनुख ने संसार नूं शमशान घाट बना के रख दिता। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस नूं इस ढंग नाल भी बयान कीता है, एक स्वान दोए स्वानी नाल भलके भौंके सदा बयान। एक कुत्ता, दो कुतियां, मनुख जैसे सवेरे उठदा है एदे नाल उठ बैठदियां ने,
ਭੌਂਕਦਾ ਏ ਕੁੱਤਾ, ਭੌਂਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁੱਤੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਉੱਠ ਬੈਠਾ, ਕੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਉੱਠ ਬੈਠੀਆਂ, ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਭੌਂਕਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਭੌਂਕਣ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਇਤਨਾ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਜਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲੇ, ਰਾਮ ਨਿਕਲੇ, ਅੱਲਾ ਨਿਕਲੇ, ਮਜਾਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਲਵੇ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਕੁੱਤਾ? ਲੋਭ। ਕੌਣ ਨੇ ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ? ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਭ ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਆਸਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਤਨੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਭੌਂਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੋਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੌਂਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਭੌਂਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਲੋਭ ਐਸਾ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਭੌਂਕਣ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਕੂੜ ਛੋਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਝੂਠ ਦੇ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਮੁਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਦਾਰ ਔਰ ਝੂਠ ਦਾ ਛੁਰਾ, ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮੁਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੁਰਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ,

0: भैर हमाता भरे जामुरदार न खाए। पराया हक बस यही मुरदार है। अगर हिंदू है तो गऊ खा रहा है और मुर्दा गऊ, मुस्लिम है तो सुअर खा रहा है मुर्दा सुअर, मरिया होया सुअर। पराया हक इते सुअर खा रहा है मुसलमान, इते गऊ खा रहा है हिंदू। भारत दी मनाहत कि गऊ सब तो उत्तम है, ये मनुखी मां दी तरह सोचती है। इसका गर्भकाल का समा भी मनुखी मां दी तरह 10 महीने का है। जैसे डार्विन ने किस वक्त कहा कि मनुख की आखिरी कड़ी बंदर है, बंदर तो विकास करके मनुख इस शक्ल दे आया है। शरीर की खोज है, विज्ञान की खोज, बाहर की खोज है, पर भारत का ऋषि मन की खोज में संलग्न है। उसकी दिलचस्पी मन की खोज में है। उन्हें देखा मनुख का मन ते गऊ का मन बड़े निकटवर्ती ने। जैसे डार्विन ने देखा बंदर का शरीर ते मनुख का शरीर बड़ा मेल खाता है, भारत दे ऋषि ने देखा गऊ का मन ते मनुख का मन बड़े निकटवर्ती ने। हो ना होवे मनुख दी आखिरी कड़ी गऊ है, गऊ मरिए तो फिर मनुख बनिए। इस तरह मनुखी जिंदगी दी आखिरी कड़ी गऊ हो सकती है, बकौले डार्विन बंदर हो सकती है। अफजल हो गई गऊ, महान हो गई गऊ भारत दे चिंतन देच, देशवासियों दे चिंतन देच, क्योंकि मनुख दी तरह सोचती है, मनुख दी तरह ममता रखती है, मनुख दी तरह दुख सुख महसूस करती है। इसनु मारना ऐसा है जैसे मनुख नु मारना, और इसका मांस खाना ऐसा है जैसे बंदे का मांस खाना। त्रिगत जून है, सुअर बिष्टा खांदा है, गंदगी खांदा है। तो इस्लाम दीवानी मोहम्मद साहब ने हराम करार देता नहीं खाना, ये सुअर नहीं खाना। कि दिन भर बिष्टा खांदा है, गंदगी खांदा है, और फिर इसकी गर्दन की हड्डी इतनी मजबूत इतनी सख्त, ये हलाल नहीं हो सकता, जबा नहीं हो सकता। बहुत तड़पेगा, बहुत तड़पेगा, खाना हराम। पर महाराज कह रहे ने खा रहा है वो सुअर, अगर वो मुसलमान है, खा रहा है वो सुअर अगर वो बेगाना हक खा रहे है, अगर भारत का वासी है हिंदू बौद्ध जैन सिख है, पराया हक खा रहे है गऊ खा रहे है। धन गुरु नानक देव जी महाराज देवाक, हक पराया नानका उस सुवर उस गाय, गुरु पीर हमाता भरे जामुरदार न खाए। पर जब लोभ कुत्ता भौंकदा है, आशा ते तृष्णा दो कुतियां भौंकदियां ने, इस भौंकण विच मनुख ऐसा निढाल आउंदा है, बेहाल आउंदा है, कूड़ छुरा मुठा मुर्दा भलके भौंके सदा बया। ये आसा तृष्णा भौंकदियां ने, बेहाल कर देंदियां ने। ये लोभ कुत्ता भौंकदा है, निढाल करके रख देंदा है। एक स्वान दोए स्वानी नाल भलके भौंके सदाबैल कूड़ छुरा मुठा मुरधार तानक रूप रहा करतार। फिर ये बेहाल होया मनुख झूठ बोल के प्राय हक नू अपना साबित करने की कोशिश करता है, मेरा है, झूठ बोलता है जब उसका नहीं है। ये जमीन मेरी है जबकि उसकी नहीं है, ये घर मेरा है जबकि उसका नहीं है, ये धन मेरा है, ये संपदा मेरी है, ये मलकियत मेरी है। इस तरह दूजियां का खुंदा है, दूजियां दी चीज देते वस्तु देते अपनी मोर लांदा है। बेहाल होया ते बेहाल कीता है लोभ ने, बेहाल कीता है आसा ते तृष्णा ने। इस वास्ते मेरे पातशाह कहंदे ने लोभी दा कोई भरोसा नहीं, क्योंकि लोभी पापी हुंदा है। लोभी तो हर वक्त खतरा है, धन नूं संपदा नूं जमीन जायदाद नूं। और चूंकि व्यापक पद्धर ते लोग प्रधान हो गया है, हलकत लोभी हो गई है, तो एक दूजे तो खतरे वध गए ने, छीना झपटियां वध गई ने। लोभ प्रधान धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ते बड़ा सुंदर आसा दीवार देच भी फरमान कीता है। जैसे राजनैतिक दुनिया देच क्रांतियां होंदियां ने, राज पाठ ते बदलदे आ, नीतियां बदलदियां ने, विधान बदलदे ने, कई दफा करंसी बदलदी है, धन दा प्रचलन बदलदा है, रूप रंग बदलदा है। बाहर दा ए पलटा राज पलटे नाल हुंदा है, लेकिन मनुख ते अंतिशकरण दी दुनिया है, मन दी दुनिया, उस दे उते अगर अहंकार राज करे तो नीति देच व्यवहार देच जुलम बर्पा हो जाता है। अहंकार दा मतलब मैं हां तू नहीं है, अहं अहंकारी किसे नू भी बराबरी नहीं देगा, अहंकारी हर एक नू पैरां दे थले रखेगा। तो जो पैरां दे थले आन नू राजी नहीं, उसकी गर्दन कुचली जाएगी, लिताड़ी जाएगी, आखिर पैरां दे थले लियांदी जाएगी। और जब बहुगिणती देच मनुखता अहंकारी हो जाए, जोरावर हो जाए, तो कमजोर दा सिर शक्तिशाली दे पैरां दे थले हुंदा है, अहंकारी दे पैरां दे थले हुंदा है। चारों पासे जुलम छा जांदा है। ऐसे दौर कई दफा लंघे ने जद सदा हंकारियां कोल ते हंकारी दा पैर गरीबां मजलूमां कमजोरां दे सिर ते उड़ाइयां गईयां गर्दना, लिताड़ियां गईयां गर्दना। जद मन दी सेजा दुते काम दा राज होवे, वासना दा राज होवे, और बहुगिणती दिच मनुखता इस तरह दी हो जाए, तो दुराचार आम हो जाता है, सरे आम हो जाता है। किसी मुल्क दिच अहंकार प्रधान होवेगा, जुलम ही जुलम होवेगा। किसी मुल्क दिच वासना एकाम प्रधान होवेगा, तो दुराचार आम होवेगा सड़कां ते, और सरेआम बाग बगीचियां। किसे वक्त भारत देच काम प्रधान मनुखता हो गई सी, रहिंदे ते पंजे विषय मनुख दे कोल हर वक्त ने, पर एक हर वक्त प्रधान होंदा है, वो कोई भी हो सकता है, अहंकार हो सकता है, लोभ हो सकता है, काम हो सकता है। और जब काम प्रधान मनुखता हो जाती है तो बाजारां च दुराचार और दुराचार दे बाजार, परिवार दे च दुराचार, उत्थे भी कोई शर्म हया नहीं रह जाएगी। और धार्मिक ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਾਚਾਰ, ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਨਾਰਕ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣੇ, ਖਜੁਰਾਹੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਦਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਰਾਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਨਗਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਔਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਏ ਕੋਨਾਰਕ ਖਜੁਰਾਹਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰੇਆਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕੀ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰ ਹੀ ਕਾਮ ਦੇ ਬਣੇ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਜਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਛਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਐਸੀ ਐਸੀ ਕ੍ਰੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਲੋਭ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਾਪ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ। ਬਕੌਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਭ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮੈਤਾ, ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ। ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ, ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਲੱਭ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਾਪ ਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਲੋਭ ਤਹਾਂ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਭ ਪਾਪ, ਲੋਭ ਪਾਪ, ਲੋਭ ਪਾਪ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿੱਖਦਾਰ। ਚੌਧਰੀ ਕੌਣ? ਝੂਠ, ਕੂੜ। ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਦੇਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਝੂਠ, ਝੂਠੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਝੂਠੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੋਲ, ਔਰ ਝੂਠ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਬੋਲ। ਸੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮਨ ਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਾ ਦੋ ਦੋ ਗਲ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਨੁਮਾਇਸ਼, ਝੂਠ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਝੂਠ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਹੈ।
1: ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ,
0: ਜਦ ਕਦੀ ਲੋਭ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਪਾਪ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੂੜ ਚੌਧਰੀ ਕਿਧਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ,
1: ਤਾਂ ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ,
0: ਇਸ ਨਾਇਬ ਕਾਮ ਨੂੰ, ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1: ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ,
0: ਲੋਭ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਨਾਲ, ਕੂੜ ਨਾਲ, ਕਾਮ ਨਾਲ। ਔਰ ਕਾਮ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਭੜਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2: अंधीरयते ज्ञान विहूणी भाए भरे मुर्दार।
0: अज्ञानता दा अंधकार है, मनुख नु कुछ भी नहीं पता कौन मेरे ते राज कर रहे है और लोभ मुर्दार खान ते मजबूर कर रहे है। लोभी दी तर्ज जिंदगी इस तरह है। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, अकरण करोत अखादं खादं असाजं साज समझ्या। लोभी वह कुछ करदा जो नहीं करना चाहिदा, वह खांदा है जो नहीं खाना चाहिदा, और लोभी दा सारा साजो समान मलीन है।

राजित सूर संग्राम अत बल नाम बहुमर्दने गण गंधर्वे देव मानुखं पशुपंखी विमोहने हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वरे ज्ञान दे अथा सागर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिस विच परमात्मा दे गुण ते उस दिया शक्तियां दा बड़े सोहने ढंग नाल वर्णन है लेकिन नाल नाल मनुख दिया कमजोरियां मनुख दे अवगुण इन्हां दा भी निखेड़ा कीता गया है ताकि मनुख नूं अपनियां कमजोरियां दा पता चल सके। आखिर ऐसा की है जिस करके परमात्मा नहीं मिल रहा, वो गुणां दा सागर है, मनुख औगुणां दा सागर है। परमात्मा दे गुण नहीं गिने जांदे, मनुख दे औगुण भी गिणने औखे ही ने। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगुण हमारे। उंज ते अनंत औगुण ने अनंत औगुण ने, पर मूल कमजोरियां मूल औगुण मनुख दे पंज ने, जिन्हां नूं इस तरह गणित दे च लिया जांदा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी संस्कृति श्लोक इन्हां पंज कमजोरियां नूं बड़े सोहणे ढंग नाल उजागर करके मनुख नूं दर्शाउंदियां ने कि तुम इन्हां औगुणां नूं गुणा दे जमना है। सतगुर मोह तो आरंभ करते ने, मोह मेरा मोह मेरा, जो मेरा है उस नाल पकड़ हो जाती है, उसे पकड़ नूं कहिंदे ने मोह। जो मेरा नहीं उस नाल मोह भी नहीं, उस नाल पकड़ भी नहीं। जो मेरा है उसनू थोड़ी जी भी चोट लग जाए, खराश लग जाए, टूट भज जाए, तड़प उठती है आत्मा, चीख उठता है मनुख। लेकिन जो मेरा नहीं, जिस विच पकड़ नहीं, जिसका मोह नहीं, चाहे कल बर्बाद होंदा अज हो जाए, कल मिटदा अज मिट जाए, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। घर विच एक बच्चा मासूम बच्चा बीमार पै गया है, सारा घर उदास हो गया है। मोह है, पकड़ है, मेरा है। लेकिन किसी देश विच किसी शहर विच महामारी करके सारा शहर बीमार पे है, कोई आ नहीं निकलती। क्यों? उस नाल मोह नहीं, वो मेरा नहीं, उस विच पकड़ नहीं। रत्ती जी वस्तु टूट भज जाए, नुकसान हो जाए, आ निकल जाती है। लेकिन बहुत बड़िया किधरे बर्बादियां हो जान अगर उस विच मोह नहीं, वो मेरा नहीं, तो कोई आह नहीं निकलती, कोई चीख नहीं निकलती,
कोई अफसोस नहीं आता। जो मेरा है, जिस विच मोह है, आज नहीं तो कल संबंध टूटेगा। मेरे खत्म होने नाल संबंध टूटेगा, या जो मेरा है उसके खत्म होने नाल संबंध टूटेगा, संबंध तो टूटेगा। चाहे जो मेरा है वो टूटे या मैं टूट जावा, जिस विच मोह है वो खत्म हो जाए या मैं खत्म हो जावा, रिश्ता तो टूटेगा, संबंध तो टूटेगा। बस इसी टूटण का दुख है, इसी टूटण का गम है। जो मेरा है उस विच मोह है, और जिस विच मोह है उस विच बड़ी भारी पकड़ है, बड़ी भारी पकड़ है। पर कितनी भी पकड़ क्यों ना होवे, हथों ते छुटेगी ये वस्तु, ये हस्ती, जो कुछ भी है, आखिर एक ना एक दिन ते हथों दी पकड़ ढिली होवेगी। जे पकड़ ढिली ना हुई तो जिसनू पकड़े है शायद वही मुर्दा हो जाए, वही ढिला हो जाए। आखिर ते संबंध टूटना है। दुख सारा मनुख दे कोल मोह दा है, मेरे दा है। और जितना मनुख मेरा मेरा करता है उतना ही मोह बच जाता है, और जितना मोह बच जाता है उतना ही दुखी हो जाता है, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। ये मोह व्यापक है, किधरे थोड़ा, किधरे बहुत, किधरे बहुत ज्यादा है। प्रथम मोह परिवार का, सहजे सहजे जैसे जैसे पता चलता है ये मेरा पिता, बच्चे नू जैसे पता चलता है ये मेरी मां, ये मेरी बहन, ये मेरा भरा, और जितना प्रतीत आता है मेरा है, मेरा है, मेरा है, उतना ही मोह बच जाता है, उतनी ही पकड़ बच जाती है। अगां चल के मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी धन संपदा, मेरी कुल, मेरी मान मर्यादा, मेरी शक्ति, मेरी ताकत, मेरा स्वप्न, मेरी जिंदगी, मेरे दा पसारा बहुत ज्यादा हो जाता है। मोह दा फैलाओ जितना वद्दा है, बस मनुख का दुख भी उतना ही वद्दा जा रहा है, उतना ही वद्दा जा रहा है, उतना ही वद्दा जा रहा है। मोहग्रसा प्राणी चैन दी नींद सो नहीं सकता, कारण जिस नाल मोह है, जिस देते मेरे दी मोर लाई है, आखरे मोर मिटती है, जिस ते मोर लाई है वो भी मिटता है। बस इतों ही दुख है, इतों बेचैनी, इतों ही संताप शुरू हो जाते हैं। दो चार उदाहरण राही मैं स्पष्ट करने की कोशिश करा। मां बाप का इकलौता बच्चा गालवन पांच छह वरिया का गुम हो गया है, नहीं लभ रहा। मां दियां अखां हर पासे लभ दियां ने, पिता दे पैर हर पासे दौड़ रहे ने, दिल हर वक्त याद कर रहा है, अखां छम छम हंजू पियां वगन दियां ने। जीवन बहुत पीड़ा दे बतीत हो रहा है। जो मेरा सी, जिस च मोह सी, बिछड़ गए। सहजे सहजे विछोड़े दा दुख
धीमा पैदा गया। क्यों? कहते हैं समा सब कुछ नु पाट देंदा है, समा जख्मा नु भर देंदा है। बहुत समा लंग गया, आज 5 साल हो गए उस बच्चे नु गुम होया। अचानक आज किसे ने दर पे दस्तक दिती और उसने आके आख्या, थोड़ा जो बच्चा जो बहुत पहले किधरे गुम होया सी उसनु मैं देखे। जिस हार दी तुसी गल कहंदे सी वो हार उसदे गल दे च है, आके देखो। खैर कुछ हो लिया, हार रंग रूप मेल खांदा वेख के प्यो ने सीने नाल लाया, मां ने अखां विच बिठाया। विछोड़ा मिलाप दे सुख दे च बदलिया, हंजू हासियां दे च बदले, मुरझाना खेड़े दे च बदलिया, दुख सुख दे च तब्दील होया। 5 साल दा विछोड़ा मां ने ममता डुल डुल के डोली, प्यो ने प्यार दे मानो सागर उमड़ा देते। वेख वेख के मां दियां अखां रजदियां नहीं, प्यो दा दिल भरदा नहीं। पालन पोषण इस तरह चल रहा है, दिन लंघदे गए। बच्चा बहुत खुश, उसनु इतनी ममता मिल रही है, इतना प्यार मिल रहा है। ओ भी खेड़े च, ओ भी खुशी च, मानो बच्चा मिल गया है, प्यो नु पुत्र मिल गया है, उन्हां दी भी प्रसन्नता। पर अज किसे होर ने आके द्वार ते दस्तक दित्ती, आख्या जिस बच्चे नु तुसी ले आए हो ये थोड़ा नहीं, थोड़ा बच्चा ते मैं वेखे है, वो हो रहा है। इस बच्चे ने उसी बच्चे दे गल चो हार उतार के आप पाया है, आओ थानु दिखाइए। जद जाके मां ने वेखया, प्यो ने वेखया, हुलिया बहुत नेड़े मेल खांदा सी, आवाज मेल खांदी सी, चाल ढाल मेल खांदी सी। मां ने सीने चलाया, प्यो ने उंगल पकड़ी उस बच्चे दी, कर ले आए। नजरां जिस हुण लैंदे बच्चे ते टिकियां, पहले लैंदे तो नजरां फिर गईयां। हुण अखां विच ते उस लई था नहीं सी, घर विच भी उस लई मानो था नहीं सी। धारा मोह दी बदल गई, दूसरे बच्चे ते टिक गई। सारा प्रेम सारी ममता मां ते पिता दी इस नवे लैंदे बच्चे देते डुलन लग पई। पहला मायूस रहन लग पया, दुखी रहन लग पया। जैसे बूटे नु पानी ना दियो कुमलाण लग पैंदा है, मासूम बच्चा ममता तो वांझा रह गया, प्यार तो वांझा रह गया, सत्कार तो वांझा रह गया, कुमलाण लग पया। दूजा खिड़न लग पया, वधन लग पया, प्रफुल्लित होण लग पया। पहला लेंदा हुआ बच्चा इतना कुमला गया, इतना मुरझा गया, मुरझा के टूट गया, मिट गया, सुत्ता सुत्ता अबदी नींद सौं गया, हमेशा दी नींद सौं गया।
اس بچے نو مردہ ویخ کے نہ ماں دی اکھاں چ ہنجو نہ پتا دے منہ چ ہوکے بس سسکار کرائے کوئی غم نہیں کوئی دکھ نہیں کوئی سنتاپ نہیں کیوں اس نال مو نہیں مو کیوں نہیں میرا نہیں میرے نال مو ہوندا ہے جو میرا نہیں اس نال کادا مو لیکن داس سسکار کر کے گھر واپس ہی آئے نے ایک سجن نے آ کے دسیا مترو جس کا داس سسکار کر کے آئے ہو وہی تھوڑا بچہ سی جس نو لے کے آئے ہو یہ نہیں ہے تھوڑا ثبوت مہیا کر دیتے تہائیاں مار کے رو اٹھی ماں چیخاں نکل گئیاں پتا دیاں سارا گھر غماں دا ساگر بن گیا مرگڑ گھاٹ بن گیا ہن جس گھر دے خوشیاں دے پھل کھڑے ہوئے سن ہن دکھاں دے کنڈیاں تو علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہن جتھے خوشی دی روشنی سی ہن دکھاں دے ہنیریاں تو علاوہ اور کچھ بھی نہیں ماں اپنے کیس پٹ دیے پتا اپنا سر دیوار نال ماردا ہے سڈے بگیچے دا پھل مرجھا گیا اتے میرا سی مرجھا گیا اتے میرا سی ٹوٹ گیا اتے میرا سی جاندا رہا تو دکھ میرے دا ہے ورنہ لڑکا تک سامنے کھڑا ہے یہ میرا نہیں اس نال مو بھی ٹوٹ گیا اس ادارن نال سپشٹ ہو گیا جو میرا ہے اس وچ مو ہے اور جس وچ مو ہے چھوٹی جی خراش بھی برداشت نہیں ہوئے گی پر جس وچ مو نہیں جو میرا نہیں ریزا ریزا ہو جائے ٹوٹ کے تاں بھی کوئی دکھ نہیں تاں بھی کوئی سنتاپ نہیں سنتاپ مو دکھ یہ سارے اتے کٹھے ہو جاندے نے جتھے میرے بھی مور لگتی ہے میرا گھر میری کل میری عزت میری مان مریادا میری دھن سمپدا تو جو میرا نہیں اس نال مو نہیں دراصل منک نے میرے بھی مور متھیا تے لائی ہے میرے دی مور سچ تے نہیں لا سکیا واقعی جس نو کہہ سکدا ہے یہ پربھو میرا ہے یہ پرماتما میرا ہے اور وہ میرا ایسا ہے کہ ساری کائنات بھی اس نو آکھے میرا ہے میرا ہے تاں وی وہ بددا نہیں گھٹدا نہیں سب دے حصے یکساں آندا ہے اکو جہا آندا ہے لیکن مو ایک ایسا پردہ میرا ایک ایسا اگیان جس کارن کر کے یہ متھیا نو تے گل نال لاندا ہے سچ تو کوسوں دور بھجدا ہے اور اس طرح زندگی مو دے دلدل وچ پھس کے رہ جاندی ہے مو دے خو دے وچ ڈب کے رہ جاندی ہے اور اے میرے دا وستار صرف منکھاں تک ہی نہیں کہ میرا بھرا میری ماں میرا پتا میری پتنی میرے بچے اگاں چل کے اے مو سمپتا تے ہو جاندا ہے دھن تے ہو جاندا ہے موجودہ دور دے کچھ منکھاں تے وشواس گھٹدا جا رہا ہے منکھ دی منک نال پکڑ کٹتی جا رہی ہے منک سیاح ہوں جا رہا ہے چنچل ہوں جا رہا ہے بودھک ہوں جا رہا ہے اور جتنا بودھک ہوں جا رہا ہے
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਕੜ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਕੜ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਨ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੈਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਏ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀਏ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੰਨਣ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੋਹ ਧਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਰਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਛੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਖਲੀਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਦੇਖੋ, ਦੀਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਦੂਰੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਨ ਦੀ ਪਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਧਨ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਨ, ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਤਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਤੋ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਧਨ ਨੂੰ ਜੈਸਾ ਵਰਤੀਏ ਧਨ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਜੋ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਧਨ ਕੋਈ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਗੜ ਸ਼ਿਖਰਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਕੜ, ਕੁਲ ਦੀ ਪਕੜ, ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਕੜ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਪਕੜ, ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੀ ਪਕੜ, ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਦੀ ਪਕੜ। ਮੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਪਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਦੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੋਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਹੇ ਮੋਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੋਹ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਗੇੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉੱਥੇ ਖੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਉਸ ਖੱਡੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ। ਸਿਆਣੇ ਤੈਰਾਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀਵ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਸ ਘੇਰੀ ਚ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਤਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
और जब सारे निकल जाते ने प्राण तो यह भी घूमन के रिचा निकलता है। परिवार का मोह, धन का मोह, संपदा का मोह, जीवन का मोह, मान मर्यादा का मोह, ऐसी घूमन घेरी है। एक दफा जन्म दे लेके जद मनुख फसदा है तो मरण तो बाद ही उस घूमन घेरी चो निकलता है। और एक गल वखरी है, एक घूमन घेरी चो निकले है फिर जन्म आना है, फिर घूमन घेरी, फिर जन्म आना है, फिर घूमन घेरी। इस तरह अनंत जन्म घूमन घेरी च फसदा है, मरदा है, फिर घूमन घेरी च फसदा है, मरदा है, फिर घूमन घेरी च फसदा है और मरदा है। इस तरह अनंत जन्म दुखां दे बतीत होंदे ने। अनंत जन्मां दा संताप मनुख दे कोल जमा होंदा जा रहा है, जमा होंदा जा रहा है, जमा होंदा जा रहा है। ठीक आखे है, मोह घूमण घेरी है, मोह चक्र वांको नीर जारे वांको सीर है। भर्तरी ने ठीक आख है, मोह ऐसी घूमण घेरी है, इसी ची मनुख फस के रह जाता है, इसी ची मनुख तड़प के रह जाता है। और निकलना जींदे जी उस लई औखा हो जाता है, कठिन हो जाता है। लिहाजा धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मोह नू जो पहल दिती है, इथों ही मनुख दिया मूल कमजोरिया का जिक्र करना आरंभ कर देने हैं। ये ठीक ही है, वाकई यही एक ऐसा चक्कर है, यही एक ऐसा घेरा है जिस विच फसदा है मनुख, निकलना कठिन हो जाता है। 80-90 साल का भी मनुख हो जाए, 100 साल का भी मनुख हो जाए, जीवन का मोह, संबंधियां का मोह, धन संपदा का मोह छोड़दा नहीं, मनुख होर जो है फसदा है। जद कदी ऐसी विचार चले तो मैंने एक और बिरध माता चेते आउंदी है, गालबन 90 साल दी, कुबड़ा शरीर, हड्डियां दा ढांचा, बड़ी मुश्किल नाल मेरे कोल चल के आई, हाथ जोड़ के कहन लगी, ज्ञानी जी मेरे लिए अरदास करो। तो मैं सोची पै गया, भया पुराना चोला, चोला पुराना हो गया जिंदगी दा, यही आखती होवेगी परमात्मा संभाल लवे। तो मैं आख्या दसो मां की अरदास करनी है। कहन लगी ओ सामने मेरा पड़पोता खेड रहा है, बस इसका व्याह वेख के मरा, अरदास करो। मैं आख्या नहीं मां, ये अरदास नहीं हो सकती, तू अपना व्याह वेखिया नहीं रजी, पुत्रां दा व्याह वेखिया नहीं रजी, पोतरियां दा व्याह वेखिया नहीं तृप्त होई, तू याद रख पड़पोतरे दा व्याह वेख के भी नहीं रजेंगी। ये मोह दा घेरा होर वड्डा हुंदा जाएगा, होर वड्डा हुंदा जाएगा, और मरण तो पहले ये घेरा टुटदा ही नहीं। धन ने और मनुख जो मौत तो पहले, प्राणा दे निकलन तो पहले मोह दे घेरे विचों निकल जाते ने, बड़े सूरबीर ने, मोह नू जित लिया, मेरे नू जित लिया, और जो मेरे नू जित लैंदा है, मोह नू जित लैंदा है, प्रभु उसनू गलवकड़ी चलांदा है, और वो जीवन की बाजी वाकई जित लैंदा है, अपनी जिंदगी वाकई सफल कर लैंदा है।

अत बलना बहु मर्दने। हे अजित, हे संग्राम दे सूरमे, हे अति बल रखण वाले, तू बड़िया बड़िया नू मर्दन करके रख दिता है, मल के रख दिता है। कीड़िया कीड़िया नू धन गुरु अर्जन देव जी महाराज गिनती करते हैं। गण गंधर्व देव मानखं पस पंखी विमोहने। बड़े बड़े गण गंधर्व चोटी दे संगीतकार, चोटी दे दार्शनिक फिलोसफर विचारक देवते मानुक चंगे चंगे मनुख स्याणे मनुख गण गंधर्व देव मानुखं पस पंखी विमोहने। फिर ऐ मो तेरी लपेट देच पशु भी आ गए, पंछी भी आ गए।

बच्चा नहीं आता, नहीं छोड़ती, इतना मो, इतना प्रबल मो, मेरा है, मेरा है। तो सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, दिव्य शक्ति रखने वाले देवते, बड़े बड़े दार्शनिक, फिलोसोफर, गण, गंधर्व, संगीतकार, सारे स्त्री लपेट दे चले, सारे का मर्दन करके रख देता है। बचाओ किस तरह करिए? फिर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस श्लोक दी अखीरली पंक्ति इंज फरमान कर देने,

असीते काफी समय तो समझी बैठे हैं सरां है, एक आउंदा है एक जाउंदा है, एक फूल खिड़दा है एक मुरझा रहा है, एक फल फूल चो निकल रहा है एक फल डिग रहा है, एक तारा उभर रहा है एक टूट रहा है। ये एक प्रभु की लीला समुची सरां देच आवागमन बने होया है और इत्थे सारे मुसाफिर ने, असी भी मुसाफिर, असी भी एक दिन रुखसत हो जावांगे। ये कोई नवी गलती नहीं, पर मैनू दुख है अफसोस है, ऐ ऋषि तू महान कार्य जो तप कर रहा सी तप क्यों छोड़िया, इस फोके संदेशे लई तू अपनी तपस्या क्यों छोड़ी, तपिया तप क्यों छाड़ियो, यहां हरख नहीं सो, ऐ तपीश्वर तू तपस्या क्यों छोड़ी। जितने सौखे ढंग नाल एक गल राजे निर्मव दी बयान कीती जा सकती है, जीवन विच धारना उतना ही कठिन। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लखते जिगर अजीत सिंह जुजार सिंह कोल बैठे ने, गड़ी नू चारों पासे दुश्मना ने घेरे है, सतगुरु अजीत सिंह नू तैयार कर दें, और सिखा नू नहीं कहंदे किधरे इतिहास ए इल्जाम ना ला देवे अपने बच्चे बचा ले सिख मरवा ले, नहीं अजीत सिंह नू तैयार कीता और सतगुरु उसनू जो कुछ कहंदे ने अला यार खां जोगी ने इंज कलम बंद कीता है। ऐ मेरे बच्चे एक ख्वाहिश है मेरी तू पूरी कर, अजीत सिंह हथ जोड़ के कहंदा है गुरुदेव पिता तुसी सारियां दी ख्वाहिशां पूरी करन वाले, असी की थोड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, नहीं तू ही पूरी कर सकता है, हुक्म गुरुदेव पिता ताबेदार। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमान कर देने ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, बस इतना ही नहीं पूरी गल सुन, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें, होनहार साहिबजादा अजीत सिंह हाथ जोड़ के कहंदा है नाम का अजीत हूं जीता न जाऊंगा, जीता गया तो हार के जीता न आऊंगा, स्वयं श्रृंगार के शस्त्र पहना के सतगुरु भेजते ने अपनी अखां दे सामने शहादत दा जाम पींदे आया, दोवें लख ते जिगरां नू देखदे ने, शुक्र करते हैं परमात्मा का ईश्वर का अकाल पुरख का असीम प्रेम की दुनिया च जीण वाले धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ना ताज का मो ना तहत का मो ना परिवार का मो ना संसार का मो, केवल प्रेम अकाल पुरख का
प्रभु चिंतन दे नाल उसकी याद दे नाल मोह प्रेम बन जाता है और प्रेम ईश्वर का रूप है। जत्र तत्र दिशा विसा होए फैलियो अनुराग। पर साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्रेम दी मूर्ति और आपका मूल फरमान साच कहो सुन ले हो सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। मोह सीमित है प्रेम असीम है। संसार दी सीमा है मोह ग्रसे दी भी सीमा है। निरंकार असीम है प्रेमी असीम है। जैसे कोई त्रह त्रह प्रभु दी शरण विच जांदा है आसरा पकड़दा है अरजोई करदा है अरदास करदा है और उसकी याद विच डुबदा है मोह प्रेम बन जांदा है। फिर कुछ भी चला जाए कुछ भी आ गया ना हरक ना सोग प्रेम ही प्रेम प्रेम ही प्रेम।

하르 하르 하레. मनुखदिया बुनियादी मूल कमजोरियां देचो परबल कमजोरी अहंकार अहं मैं हां मैं हां मैं हां जिन्ने चिर तक ए मैं रहंदी है ए अहं भाव रहंदा है उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलदा रहंदा है चलदा रहंदा है। ये जन्म ते मरण दा मूल है, ये जन्म ते मरण दा कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, होमे एहा जात है, होमे कर्म कमाए, होमे एही बंदना फिर फिर जौनी पाए। होमे दा स्वभाव है, मनुख जितने भी कर्म करदा है अहंकार आशत, चाहे वो कर्म धार्मिक ने, चाहे वो कर्म सामाजिक ने, चाहे वो कर्म राजनैतिक ने, अहं मूल है, अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म विच। और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है, जन्म मरण का कारण बनता है, और वो अहं का बंधन फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण, इस तरह अहं जन्म ते मरण की बहुत ही लंबी यात्रा दे पा देता है, बहुत लंबे गेट दे पा देता है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पाप आत्मा अहंकार, तू जन्म ते मरण दा मूल है। वख वख जीवां विच अपने अपने दोष पाए जाते हैं, जैसे असी वेखते हाँ हाथी विच काम रोग प्रधान है और पतंगे विच दृष्टि रोग, मच्छी विच रसना दा रोग और इसे तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग, होमे रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस कीना, दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गह कुरंगा, हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग, जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ए रोग बंधन दा कारण बनदे ने, ए रोग दुख दा कारण बनदे ने, और मनुख दे सारे दुखां दा मूल कारण अहं अहंकार। अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करदा है, किधरे सूक्ष्म रूप, किधरे पदार्थां दा अहंकार, किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा दे प्रति कीते गए ने उस दा अहंकार, किधरे इस जीवन दा अहंकार, किधरे उस परम जीवन दी प्राप्ति दे जो साधन ने उना दा अहंकार। मूल रूप विच ए अस्थूल अहंकार धन आश्रित होंदा है, जोवन जवानी स्वप्न दे आधार ते खड़ा होंदा है, और शक्ति सता ताकत इस दे आधार ते खड़ा होंदा है। जोवन धन प्रभता के मद में अहनिश रहे
दीवाना दिन रात पागल दी तरह घूम रहा है। जोबन दी मस्ती विच धन दी मस्ती विच और सता दी मस्ती विच धन जेब दे चोवे या मन दी सोचनी दे चोवे जोबन वंत होवे या जोबन दी चाह मन दे चोवे सताधारी होवे या सता दा चिंतन अंदर चलदा होवे दोहां हालतां च पागल हो जांदा है। सता पागल कर देंदी है सता दा चिंतन भी पगला देंदा है। जोबन पागल पंदी सीमा तक ले जांदा है पर जोबन दा चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन धन जेब देच है धन घर देच है या धन सोचा देच है विचारा देच है मनुख ते पागल होवेगा। इसका बहुत वड्डा पागलपन धन आश्रित है जोबन आश्रित है और सता आश्रित है। तदि पातशाह फरमान कर रहे ने जोबन धन प्रभुता कै मद में अहनिस रहे दीवाना दिन रात पागल होया फिरदा है। इसे विच अहंकारी अपने आपनू महान समझदा है दूसरे नू तुच्छ समझदा है। आपस को दी रग कर माने औरन को लग मात मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दोजक जात। हर एक नू छोटा समझदा है चाहे अगला महान होवे चाहे स्वयं तुच्छ होवे अपने आप नू महान समझदा है उच्चा समझदा है सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान कर देने दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त जिस दी महफिल देच खुर्शीद ए सूरज एक जर्रा है एक निक्का जिया रेत दा जर्रा है। दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त खुदरा बजुर्ग दीदम शर्ते अदब नवाशद। उस महफिल देच तू अपने आप नू आखे मैं वड्डा मैं महान हां जिथे सूरज भी एक निक्के जिया जर्रे वर्गा है इसकी भी कोई औकात नहीं। पर मनुख दी भुल मनुख दा अज्ञान और जितना प्रबल अज्ञानी होवेगा उतना अहंकारी होवेगा। एक उर्दू दा महान शायर इसनू एक होर ढंग नाल भी बयान कर देने इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म मैंने ये दर्श पाया अपनी बसीरत से। ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान। इलम दी जहालत नालों चंगा है जहालत दा इलम। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे है आलम होया है विद्वान होया है और कई गुणा उस तो वद अहंकार नाल भर गया है तो अहंकार इस गल दा सबूत है जो इलम है वो अमल देच नहीं और ए अहंकार मूर्खता दे खड़ा है। इलम के जहूल से बेहतर है जहूल का इलम ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान। अहंकार अज्ञान ते खड़ा होता है ज्ञानी भी अज्ञानी समझो अगर अहंकारी है।
भगत शर्मौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं। हम बड़े कव कुनीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कभे ननासी कह रविदास सभे नहीं समझसे भूल परे जैसे बोरे। इति सारे भूल के पागल होए फिर देने कौन हम बड़ कव, मैं बहुत वड्डा कवि, मैं बहुत वड्डा कवि, मेरी कविता महान, बस यही जहालत ले फिर दिए। कुलीन हम पंडित, मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा, मैं पंडित इस वास्ते मैं महान। हम बड कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कवे नानासी, मैं बहुत वड्डा सूरवीर, मैं बहुत वड्डा दानी। कहिंदे ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा होंदा है और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होंदा है, क्योंकि अवगुणा दे आसरे ते अहंकार नूं अस्थूल रूप धारण दा मौका नहीं मिलदा। एक गल वखरी है कि मूरख गुण ना होंदे आया भी अहंकार विच जलदा है, पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं आंदा, उसनूं इतना बोझल नहीं करदा। एक गल वखरी है कि वो अहंकार मूर्खता ते खड़ा है, अवगुणा ते खड़ा है। नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करंद, इक ना नाद ना वेद। इक अदनू न किसी प्रकार दी विद्या, न संगीत दा ज्ञान, गे रस रस कस ना जानंद, इक ना सुरत ना सिद्ध, अक्कल सिर अक्षर का भयो ना लहंत। अक्षर दा कोई बोध नहीं, अकल दे तल ते जी नहीं रहा, संगीत दा कोई बोध नहीं, किसे धर्म ग्रंथ दा कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करंद, असली खोते ने अहंकार भी पंड चुकी फिर देने। पर बड़ा परबल अस्थूल अहंकार, प्रगट अहंकार ते गुणा ते ही खड़ा होंदा है, और अहंकारी दियां अखां, अहंकारी दा मस्तक, अहंकारी दी चाल स्पष्ट रूप विच अहंकार दी प्रदर्शनी कर दी है। भगत कबीर कहंदे ने चलत कत टेडे टेडे, अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता, अगर सीधा चले तो उसकी चाल का पता नहीं चलता, टेढ़ा चलता है ताकि लोगों दियां निगाहां मेरे ते आवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा दी निगाह थले आ जावा, अहंकारी चाहता है सारियां दियां निगाहां मेरे ते आवन, सब मैनू ही देखन। चलत कत टेढ़े टेढ़े, अस्त चरम बिस्टा के मुंदे, दुर्गंध ही के बेड़े, तू है कि हड्डियां हड्डियां दे चढ़े होया मांस, मांस दे चढ़ी हुई चर्बी, और चर्बी दे लिपटी हुई खलड़ी, और की है तू हड्डियां दा माण,
जोबन जवानी दा माण, हड्डियां दा माण, मांस दा माण, मिंज दा माण और खलड़ी दा माण। इस तो इलावा और है कि एक आया ते इतनी नापाक है, कोई भी पवित्र चीज इस नल छू जाए मैली हो जाती है। और इस काया दा अहंकार धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, कर्पूर पहुप सुगंधा परस मानक देहं मलीनं मजारुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो। कपूर ते चंदन जैसिया फुल्ला जैसिया पवित्र वस्तुआ मनुखी तन नाल छूंदिया स्पर्श करदिया मैलियां हो जांदियां ने। मजार उदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो, है कि दुर्गंध खून मिंज मांस खलड़ी अज्ञानी एवें तन दा अहंकार करदा है, जो बंदा अहंकार करदा है। फिर धन दा अहंकार, धनवंता होए क्या को गर्वे, जा सब किछ तिसका दिया दरबे। पुरखा ईश्वर वसीला ना बने, धन किथे उस दे वसाहल नाली सब कुछ प्राप्त होंदा है। और सब तो वड्डा वसीला है ए तन, और तन उस दी देन है, ये दिमाग उस दी देन है, और ये तन ते मन दे आसरे ते तू धन कठा कर लिया तो वसीला ते प्रभु है, वसीला ते परमात्मा है। पर धन दा अहंकार सता प्रभता, इसका अहंकार अगां चलिए ता अहंकार नू बैठन वास्ते कोई गुणा दा सिंघासन चाहिदा है। दान दा अहंकार, ज्ञान दा अहंकार, सेवा दा अहंकार, बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठन लई बनाईदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है। और गुणा दे आसरे ते बैठ के ये प्रसन्न बड़ा होंदा है, क्योंकि जगत तो जस मिलदा है, जगत तो मान मिलदा है, वो मान इस दे अहंकार नू होर वधांदा है, होर वधांदा है। देखने दे चाया है धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया है, फिर धन दा त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया है। हुण त्याग दा अहंकार सता कोल है, सता दा अहंकार सता दा त्याग कर देता है, हुण त्याग दा अहंकार। ऐसा अक्सर देखण नूं मिलदा है, पहले जो कोल है उसका अहंकार, फिर जो कोल है उसका त्याग कीता है, उस त्याग दा अहंकार, अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है। और अहंकार तो बचना औखा, जेड़ा सिंघासन भी असी निरंकार नू बिठाण लई बनाने हां अहंकार बैठ जांदा है। दान दा सिंघासन बड़ा सोहना बनाया सी, भगवान आके बैठे, निरंकार आके बैठे, अहंकार आके बैठ जांदा है। सेवा कर रहे सी ताकि सेवा दे सिंघासन ते प्रभु आके बैठे, नहीं अहंकार आके बैठ गया। सिमरन माला दे राही, रसना दे नाल जप दे राही आरंभ कीता, ताकि ए जप ए माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए, पर इसते भी अहंकार खड़ा हो गया। अहंकारी नूं दूसरे तुच्छ प्रतीत आउंदे ने, अहंकारी अपने आप नूं महान समझदा है, और कई दफा
अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचता है उदी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं, वो स्वयं दावा कर उठता है मैं ही निरंकार मैं ही निरंकार। दावा कीता सी हरनाकश ने मैं परमात्मा, कौन होंदा है परमात्मा। दावा कीता सी नमरूद ने मैं हां खुदा, कौन होंदा है खुदा। अहंकारी अपने तो वड्डा किसी नु भी मनन नु तैयार नहीं। इस वास्ते अहंकारी दा सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर। और उसके सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं। सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है और वड्डा होके दिखाण दी कोशिश करता है। सारी भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दियां निगाहां दा मरकज बन जावां, केंद्र बन जावां, हर एक दी निगाह मेरे ते टिके और हर एक दा माण मैं हो जावां, मेरे ते माण करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे। सारी भज दौड़ अहंकार दी है। इंज कह लईए यात्रावां ते दो ही ने, अहंकार दी यात्रा निरंकार दी यात्रा। निरंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है तू है तू है तू है तू है। अहंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां। ये जन्म मरण का कारण बन जाती है। तू है तू है तू है। ये जन्म मरण नू मिटा के प्रभु का रूप बना देंदी है। बूंद सागर दे चलीन हो जाती है, ईश्वर का रूप हो जाता है मनुख। भगत कबीर कहते ने तू तू करता तू भया मुझ में रहा न हूं जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू तू है तू है तू है। इस बिरती ने इस जप ने तेरा ही रूप बना दिता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी राम कबीरा एक भय है कोई न सके पछानी। तू है तू है तू है। इसने भगवान का रूप बना दिता। मैं हां मैं हां मैं हां। ये शैतान का रूप बना देता है। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान का रूप है जिसते रोम रोम देच जिस दिया सारिया क्रियावां देच भगवत दी प्रदर्शित भगवत दी नुमाइश हो रही है, परमात्मा ही प्रगट हो रहे है। श्री रविदास सही कह रहे ने जब हम होते तब तू ना ही अब तू ही मैं ना ही। जद मैं सी तू नहीं सी हुण तू है मैं नहीं। ये तू ते मैं दोवें इको सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज दी बाणी दा फरमान हौ में नावें नाल विरोध है दोए न वसे इक ठाए। ये मैं ते तू दोवें कठे नहीं रह सकते। या तू है या मैं हां। अहंकारी दी सारी साधना है मैं हां मैं हां। उदी सारी भज दौड़ उदी सारी क्रिया उदी सारी तपस्या उदी सारी मेहनत ये किस कारण हो रही है। मैं पर विनम्र मनुख दा संत दा सब कुछ तू आश्रित है तू ही है तू ही है तू ही है।
ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ। ਇੱਕ ਆਲਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਜ ਰਾਹ ਚੋਨਾਰ ਕਿ ਸਲਾਮਤ ਨਾ ਕੁਨਤ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਨਾ ਝੁਕੇ, ਇਤਨਾ ਆਕੜ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲ। ਬਾ ਖਲਕ ਚੁਨਾ ਜ਼ੀ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਨਾ ਕੁਨਦ। ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗਰ ਰਵੀ ਕੇ ਚੁਨਾ ਜਾਓ ਕੇ ਤੋਰਾ, ਦਰਪੇਸ਼ ਨਾ ਖੁਆਨੰਦ ਓ ਇਮਾਮਦ ਨਾ ਕੁਨਦ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਤੋ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਧਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਮ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਉੱਠੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਅਕਸਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਅਹੰਕਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਂਕਾ ਮਿਟੇ ਅਭਮਾਨ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਤਕ ਦਾ ਤਿਲਕ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਅਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸਣ ਸਿੰਘਾਸਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਰੀ ਸਤਾ ਅਹੰਕਾਰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਸਿਰ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਗਿੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੂਰ ਕਾ ਸਰ ਨੀਚਾ। ਆਖਿਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

तपते ज्यों कुंचर इसनान। सारी धार्मिक साधना हाथी दा इशनान बन के रह जांदी है। हे जनम मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजन्त सतरं दृणन्त अनेक माया विस्थिरने। एह अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाने दी तेनू जाच नहीं। अहंकारी दे मुंहों ना निकलदा, अहंकारी हां नहीं कर सकदा। जित सारा माहौल ही ऐसा होवे और हां कहण दी सहूलियत भी होवे, कुछ बिगड़दा भी ना होवे, तां भी हां नहीं कहेगा, ना ना। जितनी ताकत ज्यादा होवे उतना ही जबान ते आ जांदा है, ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है ताकत है उस हिसाब नाल ही वो ना करता है, ना करके दसना चाहता है मैं तैनू रोक सकदा, मैं तेरे कम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच ते भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है। ना ना ना, हां कहना ही भुल गए। हां कहने विच इनू अपना छोटापन प्रतीत होंदा है। जायज गल भी नौकर ने कह दित्ती है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, तां भी मालक कहिंदा है ना। नौकर दी हां च हां मिला दईए, ना। अहंकारी ना करदा है, सब नू ना करदा है, और जिथे तक इसकी सता है उथे तक ना करदा है, और जितना ना ना करी जांदा है उतनी दुश्मनी बनती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रं तजंत सतरं दृणंत अनेक माया विस्थिर ने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्थार होंदा है, इसदे दुश्मन ही वधदे ने। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहंदे ने, दरख्ते दोस्ती बानिशां के कामे दिल बबारा रद निहाले दुश्मनी बरकुन के रंजो बेशुमारा रद। दोस्ती दा बूटा ला, मिलाप दा बूटा ला, जितो खुदा दा मिलाप चाहना है। जे किधरे भुलेखे नाल तो दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है, इसनों आज ही जड़ों पुट दे। सिवाय दुखां दे सोल तो इस बूटे नूं होर कुछ भी नहीं लगता।

उस आंत बेचो सोटे दी जरब नाल निकल रहा है तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। कोई इतनी कुर्बानी करे साधना करे ते साधना विच लीन मनुखां दी कदमां नू खाक दे अपने मस्तक नू रगड़े श्वास श्वास वाहिगुरु वाहिगुरु जपे ताई ये मैं तों देच बदल दिए जीवन धन धन हो जांदा है महान हो जांदा है। अहंकारी उस्तत अपनी करेगा निंदा दूसरे दी करेगा। अगर दूसरा वड्डा है तो अहंकारी लाजमी निंदा करेगा। अहंकारी निंदक हो ही जाएगा। उते प्रसन्न होता है अपनी उपमा सुन के उपमा होने लग पई है दूजियां दी तीसरे दी मित्र दी तो हुण इस कोल होंदी है निंदा। निंदा दा मतलब की है गल नू छुटियाना और अक्सर मनुख उसे दी ही निंदा करदा है जो किसे गल देच उस नालों अग्गे होवे गुण देच कला देच ज्ञान देच शील संजम देच या फिर प्रभु दी बंदगी देच या संसारी तल ते ले लो सता देच धन देच स्वप्न देच किसे भी पक्ष तो जो अग्गे है अहंकारी उसकी तारीफ नहीं कर सकता। अहंकारी सच नो सच नहीं कहेगा। अहंकारी निंदा करेगा और अहंकारी बड़ा प्रबल निंदक होता है। छुटियाण की कोशिश करता है घटाण की कोशिश करता है। भगत नामदेव जी उन्होंने तपस्या इतनी इतनी परमात्मा उन्होंने सन्मुख होया है प्रभु सामने होया है लेकिन हंकारी ब्राह्मणा ने मार मार के मंदिर चो कढ़िया है और मंदिर दे पिछवाड़े बिठा देता है। मारे है कढ़े है ये बेचारा मंदिर दे पिछे बैठ गया। पहले थे मूर्ति दे सन्मुख सी मूर्ति नामदेव दे सन्मुख सी पर हुण पिछे। पातशाह दी बाणी कहंदी है अहंकारियां निंदकां पिठ दे नामदेव मुख लाया। अहंकारी निंदक होंदा है और निंदक ते अहंकारी दी तरफ परमात्मा दी हमेशा पिठ होंदी है। जो गुणां दी सिफतों सलाह करदा है वो ते परमात्मा दी सिफतों सलाह करदा है। गुण किसे मनुख दे च भी प्रगट होए ने तो गुण ते सारे परमात्मा दे ने। गुणा दी तारीफ परमात्मा दी तारीफ है पर वो ते निंदा करदा है गुणा दी निंदा करदा है क्योंकि अहंकारी है तो परमात्मा दी पिठ हो जांदी उसकी तरफ। और जिस मनुख दी तरफ परमात्मा दी पिठ हो गई है सब दी पिठ हो जांदी है। और अहंकारी बहुत दुखां दे दलदल दे जाके फसदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान करदे ने आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगणे ऐ अहंकार तेरे करके ए जीव जमदे ने मरदे ने आउंदे ने जांदे ने दुख भोगदे ने सुख भोगदे ने थक जांदे ने टुट जांदे ने। ऐ अहंकार तू ते तोड़ के रख देना कईयां नूं

ये बड़ा असाध रोग है। अहंकारी उसके हालात ऐसे बन जाते ने जैसे भयानक जंगल उद्यान देच कोई रमण कर रहा हो, भ्रमण कर रहा हो, क्योंकि अहंकारी दे गूढ़े मित्र नहीं रह जाते, उस तो सब दूर हो जाते ने और अहंकारी कल्ला रह जाता है। और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान देच भयानक जंगल देच मनुख तनहा रह गया हो। असाध रोग है, किसे वैद को इसकी दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक की अखीरली पंक्ति विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान करते ने, वैदं पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनानक हर हर हरे। है वेद, है हकीम, कौन परमात्मा, केड़ी दवाई है उसके कोल, बस परमात्मा का नाम ही दवाई है। और ये दवाई किधरों बारों नहीं लानी, किधरों बारों नहीं लबनी, ये दवाई भी अंदर पई है। इस तरह जैसे के अहंकार रोग अंदर पे है, होमे दीर्घ रोग है, दारू भी इसे मां है। पर इसका यह मतलब नहीं दारू नहीं है, अहंकार अंदर है, औषधि भी अंदरों है। मैं अंदरों निकल रहे है, हूं जे किधरे अंदरों निकले तू इत औषधि हो गई। मैं इत रोग हो गया। ये रोग ते औषधि दोवें मनुख दे अंदर ने, इसकी मर्जी है रोग नू वधाना है कि औषधि नाल इस रोग नू घटाना है ते मिटाना है। मैं अंदरों निकलेगा, मेरा धन, मेरी कुल, मेरा रूप, मेरी प्रभुता, मेरी जात, मेरा कुल अंदरों ही निकलेगा। तू है कुछ भी नहीं मेरा, मैं ना ही, प्रभ सब किछ तेरा। ईघे निर्गुण उगे सरगुण, केल करत विच स्वामी मेरा। ये जो तेरा तेरा है ये भी अंदरों निकलेगा, और ये जो मेरा मेरा है ये भी अंदरों निकलेगा। इस वास्ते रोग भी अंदर है, दवाई भी अंदर है। सत्संग इस वास्ते है, और गुरु अर्जन देव जी महाराज का यह फरमान, ये वाक प्रेरणा दे रहा है, जे रोग अंदर है तो वैद भी अंदर बैठा है, औषधि भी अंदर है, तो उस औषधि का सेवन कर

अगर सच दे छोरे नाल जवा करिए और सच दा छोरा ए चुभे दो दारा तो झूठ ते निकलेगा। झूठ दा ही खून मनुख दे अंदर है, खून नहीं है झूठ है मनुख दे अंदर। बाहर दे छुरे नाल शरीर चो खून निकलदा है, सच दे छुरे नाल कोई जवा होवे अंदरों झूठ निकलदा है। सच की काती सच सब सार, घाड़ तिसकी अपर अपार। ये जो सच दा छुरा है इदा लोहा सच है, इसकी जो धारा है घाड़त है वो भी सच है। किसका कुठा होवे सेख, लहू लब निखथा वेख। अगर इस छुरे नाल जे किधरे कुठा करें, दो तरीके ने, कुठा झटका, एक झटके नाल गर्दन अलग की थी झटका, आहिस्ता आहिस्ता रेत के गर्दन अलग की थी, इनू कुठा कहंदे ने, कोणा आहिस्ता आहिस्ता। जे तू इस ढंग नाल आहिस्ता आहिस्ता कोवे, सच नू सहजे उचारण करना पैंदा है। और सच की है परमात्मा दा नाम, ये पहले जबान ते आवे तो जबान दे चो हड्डी निकलेगी, जबान दे चो सख्ती निकलेगी। ये हो नहीं सकदा जिस जबान ते राम है उस जबान दे सख्ती होए, जिस जबान ते वाहेगुरु है उस जबान ते क्रोध होवे, ये हो ही नहीं सकदा। जहर इस गल दा सबूत है, अजे जबान ने अमृत दा रस नहीं माने। सख्ती इस गल दा सबूत है, ये जबान जबान नहीं रह गई, क्योंकि जबान दे हड्डी नहीं आउंदी, जबान दे सख्ती नहीं आउंदी, जबान दे हड्डी आ गई है, ये मांस दा टुकड़ा ते बन के रह गई, जबान नहीं है। किसका कुठा होवे सेख, लहू लब निखथा वेक। परमात्मा दे नाम नु छोरा कह देता है गुरु नानक ने, ऐसा छोरा है को के रख देगा। छोरे ने कोना है तो निकलेगा कि निकलेगा काम, निकलेगा लोभ। एक कसाई छुरा फेरदा है बकरे थे, निकलदा है खून। बाद देच आंदरा ओजरी कड़ के परे सुटदा है। पर सच दे छुरे नाल जद किसे दा मन जबा आउंदा है, लोभ निकल जांदा है, वासना निकल जांदी है, शुद्ध मास रह जांदा है, शुद्ध मन रह जांदा है। उसे नू कहंदे ने मन शुद्ध हो गया, मन पावन हो गया। सच की काती सच सब सार, गाड़त तिसकी अपर अपार। तिसका कुठा होवे सेख, लहू लब निखता वेख। ए शेख जी, इस छुरे दा किधरे तू जवा कीता होया, मास खा लवे, परमात्मा ने कबूल कर लेना है, ईश्वर ने कबूल कर लेना है। खा मांस जरूर खा, पी शराब जरूर पी, पर केड़ी शराब? धन गुरु नानक देव जी महाराज की जिंदगी दे नाल बोल जुड़े ने, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम दी शराब पी, तो नाम शराब है। हां, नाम एक ऐसी शराब है और ऐसा सरूर तारी हो जाता है, सारे दुख मिट जाते हैं, सारे विकार निकल जाते हैं। बाहर दी शराब जितने जितने घुट अंदर जाएगी, वो शराब ही अंदर नहीं जा रही, विकार भी अंदर जा रहे हैं। शराबी कामी होवेगा, शराबी क्रोधी होवेगा, शराबी भोगी होवेगा, सारा अनर्थ शराब नाल जुड़ गया। बेशतर मुल्कां दे शराब पानी दी तरह पीती जा रही है, दुराचार आम हो गया, या इंज कह लो दुराचार दे बाजार, बाजार ही दुराचार दा रूप धारण कर गए। बिकदियां सन जिनसां किसे वक्त बाजार दे,

ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੜੀਵਾਰ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ। ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਤੇ ਲੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਪ ਜਾਪ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੂਲ ਬਾਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਜੇ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾ ਕੇ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 8 ਜਾਂ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਗਾਲਬਨ ਸਨ 58-59 ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਪ ਮੂਲ ਹੈ, ਜਪ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਪ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਪ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਸਾਰੀ ਜਪ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਪ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ, ਇਹੀ ਜਪ ਜਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਜਦੇ ਅਨੰਤ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ। ਇਹ ਜਪ ਜਾਪ ਜਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਪ ਬੈਰਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਜੋ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਾਪ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਬੈਰਾਗ, ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹਿੰਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਗਤ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਨਾਰੀਅਲ ਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਅਜੇ ਗਿਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲ ਨਾਲ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਬੈਰਾਗ ਜੈਸੇ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖੋਲ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੋਲ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੋਲ ਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਿਰਲੇ, ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਹੈ ਨਿਰਲੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਹੈ ਨਿਰਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਕਤ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਸਨੂੰ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਜੀ ਸਕਾਂ, ਬੈਰਾਗ। ਔਰ ਇਸੇ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਨਿਆਸ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਕੱਲ ਦਾਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਮਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਬਹਿ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਜੋ ਮਨ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਹੈ 3-4 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੋਟ ਕਰ ਗਈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਤਾਰਕਿਕ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਤੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੋਚਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਬਲ, ਇਤਨੀ ਸੋਚਣੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੁੱਛ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਚਿੰਤਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਉਦਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜਿਤਨੇ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਤੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਤਨਾ ਸੰਸਾਰ ਆਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸ ਤੇ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
जो पदार्थां तो उदास नहीं वो परमात्मा की तलाश नहीं करेगा। या इंज कह लो परमात्मा की तलाश कौन कर रहा है जो पदार्थ तो उदास हो गया। परम जीवन की खोज कौन कर रहा है जो इस जीवन तो उदास हो गया। निरंकार की तलाश कौन कर रहा है जो संसार तो उदास हो गया। संसार तो उदासी कुछ कारना करके होंगी है, प्रथम ज्ञान करके, दूसरी अपनी निजी सोचनी करके, तीसरा कोई चोट लग जाए बड़ी गहरी संसार तो उदास हो जाता है, चौथा इस संसार दिश जो कुछ प्राप्त करना चाहता है नहीं होया, उदास हो जाता है। लेकिन फिर भी इस तरह के उदास बंदे की जिसकी संसार दे चजे पूर्ति नहीं हुई, एक निक्की जी आसा बनी रहती है, चलो अज पूर्ति नहीं हुई कल हो जाएगी, ये पूर्ण तौर पर निराश नहीं होता। पर जो निजी सोचनी करके है वो तो पूरा उदास हो जाता है। मैं पढ़ रहा एक दिन दीवाने गालिब, हालांकि संसारी पद्धर का शायर है इश्क मिजाजी, अजे हकीकी दे नेड़े नहीं गया, लेकिन कहिंदा है इस दुनिया च मैं जी के की करा, बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे। कहिंदा सारा संसार बच्चियां दा तमाशा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, नादान लोग, इन्हां नाल मैं किस तरह जीवां, सवेरे खा लेना शामी खा लेना कल फिर खाना, ए इसे तरीके नाल जिंदगी बतीत करी जाना। गालिब कहिंदे ने ते मैनू इंज लगदी है जिवें मशीनी जिंदगी है, मैं इस नाल जीवन नू राजी नहीं, ए ते बचकानी खेल है। बाजी चाहे इतफाल, इतफाल कहिंदे ने बच्चे, तिफल कहिंदे ने बच्चे नू, इतफाल बच्चियां दी जमा। बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आ गए, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आ गए। कहिंदा दिन रात ए बच्चियां दा खेल हो रहा है, एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक। औरंग कहिंदे ने तख्त जिदे उते बादशाह बैठता है, तख्त सुलेमानी बच्चियां दा खेल प्रतीत होंदा है। जिस तख्त लई दुनिया इतना संघर्ष कर दी है, इतना लड़ दी है, गालिब कहिंदे ने इसते बैठ के मैं खुश नहीं हो सकता, इते बच्चियां दा खेल कुछ भी नहीं है। एक बात है अजाज मसीहा मेरे आ गए। गालिब कहिंदा हजरत ईसा दे मौजे भी बच्चियां दा तमाशा है, कुछ भी नहीं है। वो किसे अंधे दे सिर ते हथ रखदा है, उनू सुजाखा कर देंदा है, किसे बीमार दे सिर ते हथ रखदा है तंदुरुस्त कर देंदा है, किसे मुर्दे दे सिर ते हथ रख देंदा है तो जिवा देंदा है। गालिब कहिंदा है जिसनू जिवा दिता है क्या वह फिर नहीं मरिया, जे फिर मरिया तो बच्चियां दा तमाशा करदा रहा और की। कहिंदा मैं ईसा दे नाल भी जी नहीं सकदा, यह भी बचपना है, मैं तख्त सुलेमानी ते भी बैठ के जी नहीं सकता, ए भी बच्चियां दा खेल है, और मैं संसारी मनुखां दे नाल भी जी नहीं सकता, सब बच्चे ने। जद मनुख दी सोचनी बड़ी बुलंद हो जाए, यकीन जानो आम मनुख उस नूं बच्चे प्रतीत होण लग पैंदे, बिल्कुल बच्चे। गालिब कहिंदा मैं जीवां ते किस तरह जीवां, मेरे लिए जीवना बड़ा औखा है। हुण इस तरह का मनुख या तो जीवन शैली नूं बदले या इस जीवन नूं भुलाण की कोशिश करे या मिटाण की कोशिश करे, तीन तरीके ने, या तो जिंदगी नूं बदले या जिंदगी नूं मिटावे या जीवन नूं भुलाण की कोशिश करे। इसने तीसरा तरीका चुन लिया, शराब पी के अपने आप नूं भुलाण की कोशिश करता रहा, सवेरे पींदा दोपहरे पींदा, नशा टुटन ही नहीं देंदा। इतना अजीम चिंतक,
इतना गहरा दार्शनिक हर वक्त नशे च रहिंदा है और हालात इत्थे तक पहुंच गए, बाल बाल करजाई हो गया, अंग्रेजां दी हकूमत हो चुकी सी, बहादुर शाह नूं रंगून दी जेल विच कैद कर दिता सी, इह दरबारी शायर भी सी बहादुर शाह दा, तो अंग्रेजां ने इस नूं सियाणा चिंतक दार्शनिक जान के उस जमाने च 84 रुपए इसकी माहवार पेंशन बन दी, और बहुत सन 84 रुपए उस जमाने दे, पर इस सारे दी शराब पी जांदा सी, सारा दिन पीनी, नशा टुटनी ना देना, पीनी पिलानी बस इसे चीज जो है हर वक्त गायब रहन लग पाया। हालात इत्थे तक पहुंचे है, मुफलसी, बाल बाल करजाई हो गया, अज बेगम आके अगों रोई भी अज मैं थोड़े लिए खाना भी नहीं बना सकती, घर विच कुछ भी नहीं है, और कोई बाणिया कोई दुकानदार मैनू उधार देण नू तैयार नहीं, ते थानू जो कुछ मिलता है पी लेंदे हो। अद्धा हिसाब किताब मेरे हवाले करो, अद्धी रकम ते मैं कम से कम घर ते चला सका, थोड़े लिए रोटी दी दिक्कत ते ना होए। वक्त दा इतना अजीम मनुख रोटी तो भी आतर हो गया सी, घरवाली नूं रोंदे होया ते मजबूर हालत विच देख के गालिब कहिंदा, अच्छा खुदा दी कसम हुण जद पहली तरीक आवेगी 84 रुपए मिलणगे अद्धे तैनू दे दें, अद्धे तेरे। खुश हो गई बेगम, उसने कह दिता फिर मैं 2-3 महीने च सारा उधार भी ला देंगी, घर भी ठीक चलेगा, तुसी अद्धे मैनू दे दिता। खैर ज्यों द्यों करके इसने दिन टपाए, पहली तरीक आई, घरों बड़े सोहने ढंग नाल बेगम ने विदा कीता, और उड़ीक देच घर दी चौखट ते ही बैठ गई, हुणे गालिब आएगा। दोपहर हो गई नहीं आया, दोपहर ढल गई नहीं आया, शाम पै गई नहीं आया, दुखत होई मायूस होई बेगम। ज्यों सूरज टलिया थोड़ा जिहा हल्का हनेरा पैण लगा, लड़खड़ांदा होया गालिब आंदा होया दिखाई दिता है, 10 खचरां दे उत्ते शराब दियां बोतलां लदियां होईयां, इस तरह ही करदा हुंदा सी, फिर दिन रात पींदा रहिंदा सी घर दे। खचरां बूए ते आ गईयां, शराब दियां लदियां होईयां, आप भी लड़खड़ांदा होया जारो जार फुट के रो पई बेगम, और ए बेगम ने आख्या, तुसी खुदा दी कसम चुकी सी कि अद्धी माया दे देंगा, कि तुसी सारे दी शराब ले आए, और मैं महीना किस तरह लगाऊंगी, तुसी खुदा दी कसम चुकी सी। गालिब कहिंदा है, उसे खुदा ने मेरी कसम तोड़ दित्ती। किस तरह? कहिंदा जद मैनू 84 रुपए मिले ना, मैं बिल्कुल घर दी तरफ आ रहा सी, कि 84 दे 84 तैनू देने सन, पर करां की, रस्ते च खुदा दा घर पै गया, मस्जिद पै गई, मौलवी वाज दे रहा सी, असी कहिंदे आ कथा करनी हो, कहिंदे ने वाज देने, मौलवी वाज दे रहा सी, तो मैं सोचिया चलो खुदा दी गल भी अज सुन ली है, की कहिंदा है। मौलवी सारे स्रोतियां नूं निमाजियां नूं मुतासर होके कह रहा सी, सारियां नूं मुखातब करके, कि रोजी दहिन खुदा है,
ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਿੰਦ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਹਿੰਦ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਿੰਦ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਰਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖੁਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਗਾਲਬ ਵੀ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਤਨੀ ਉਦਾਸੀ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਬੋਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਇਤਨਾ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ, ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਜਿਤਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਤਨੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੂੜ ਬੰਦੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ। ਜਿਤਨੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਬਿਰਤੀ ਸਿਆਣੇਪਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇਸ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾ, ਹਕੀਮ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਮੋਮਨ ਜੈਸਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮਰਨ ਦਾ, ਅਬ ਤੋ ਘਬਰਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਜਾਏਂਗੇ, ਪਰ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੋ ਕਿਧਰ ਜਾਏਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਇਤਨੀ ਉਦਾਸੀ ਚ ਕੀ ਜੀਵਣਾ, ਇਤਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀ ਜੀਣਾ। ਪਰ ਇਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹੀ ਉਦਾਸੀ ਪੱਲੇ ਪਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਦਾਸ ਬੰਦਾ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਜਾਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਹੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਰਵੇ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਅਕਾਰਬ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵੇ। ਤੋ ਉਦਾਸ ਬੰਦਾ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ, ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ, ਔਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਪ ਤੇ ਜਾਪ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਜਪ ਜਾਪ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਜਪ ਜਾਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਜੇ ਮੂੜ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਤਨੀ ਮਰਜ਼ ਕਰ, ਅਜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ। ਜੈਸੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਗਾਲਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਜੈਸੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗਾਲਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਧੌਂਕਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਵਾਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਔਰ ਕੱਢੀ ਜਾਣੇ, ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ,
कि मैं नहीं जीवना चाहता, उदास हो गया सी। खुद नू खत्म भी ना कर सकया, खुद नू बदल भी ना सकया, खुद नू भुलाने की कोशिश करने लग पे पी गए। ये सदी बहुत सियानी सदी है, ज्ञान विज्ञान ने बड़ी तरक्की की है और बड़ी तेजी नाल ज्ञान चले है। कदम कदम ते स्कूल कॉलेज, और जितनी सियाणप बद गई उतनी उदासी बन जो है बद गई, और जितनी उदासी बद गई है उतनी शराब बद गई, उतनी लोकी पानी दी तरह पीण लगता है, लोकी बेहोश होना चाहते, अकल तो थल्ले जीवना चाहते, ना सोचिए क्योंकि सोचदे ते बेचैन, सोचदे ते दुख, सोचदे ते तकलीफ। उदास होण दे ए तीन कारण ने, या ते दिमागी तल ते जीवे बहुत सियाणा होए, या उसनू कथा कीर्तन चोट कर गई है, या संसार तो कोई चोट लग गई है, परिवार तो कोई चोट लग गई है, उदास हो जाएगा। लेकिन एक खतरा है, जड़ी संसार तो चोट लगे है, लाजमी नहीं है यह जिंदगी नू बदलन की कोशिश करे, बल्कि अक्सर मौका तो यह होंदा है जिंदगी नू खत्म करन की सोचदा है। सारी दुनिया च लोकी सुसाइड कर देने, आत्महत्या होंदी है, और संपन्न अमीर देशां च ज्यादा है बनिस्पत गरीब देशां दे, क्योंकि गरीब इतना उदास ते निराश नहीं आउंदा, वो कल दी आसा बनाई रखता है, चलो अज मेरे कोल कुछ नहीं ते कल हो जाएगा। ये जिहड़ी कल दी आसा है उन्हूं निराश नहीं होण देंदी। जिस मनुख की जिंदगी च कल रहा ही नहीं, जो कुछ चाहिए अज प्राप्त है तो उहदे नाल तृप्ति नहीं हुई, उहदे नाल सुकून नहीं मिलिया, तो उदास ते हो जाएगा। तो हुण इह किस तरह जीवे, किवें जीवे, इह ते खुदकशी करेगा, सुसाइड करेगा, सारी दुनिया च है, या ते कोई संसार तो चोट लग गई है, या अपनी सोचनी बड़ी प्रबल है, या सतगुरु दे शब्द ने चोट कर दिती है, परमात्मा दे नाम ने चोट कर दिती है। ये अलग अलग चोटां दे नतीजे अलग अलग होणगे। अगर शब्द ने चोट कीती है ये सुसाइड नहीं करेगा, आत्महत्या नहीं करेगा, ये खुद नू बदलेगा। जिस ढंग नाल मैं जी रहा इस तरह नहीं जीवना, जिंदगी बदलनी है, जीवन नू बदलना है। पर संसार तो चोट लग गई है, लाजमी नहीं कि जीवन नू बदले, हो सकता जीवन नू खत्म करन दी कोशिश करे। ते सोच सोच के इस नू चोट लग गई है, जगत कुछ भी नहीं है, लाजमी नहीं है जगत जो है जीवन नू बदले, हो सकता जीवन नू भुलाने दी कोशिश करे, शराब पी के कोई भी नशा करके, नशे दुनिया च इस सदी तो नवे प्रचलित होए ने, क्योंकि सदी बड़ी सियाणी सदी है और बड़ी उदास सदी है। किस तरह जी है, जिहड़े मनोरंजन दे साधन अज मौजूद ने पहले नहीं सन, और जितना उदास अज दा मनुख है पहले कदा ही नहीं सी, क्योंकि अजोका मनुख सोचदा बहुत है, विचारदा बहुत है। मैं फिर दोहरा दें, आप सारे सियाणे बैठे हो, उदास बिरती तीन कारणा करके पैदा हो सकती है, या तो खुद हर वक्त सोच विचार दे तल ते जीवे और बड़ी गहरी उसकी सोचनी होवे, इस जीवन नाल सहमत नहीं होएगा वो, ना संसार नाल, इत कुछ भी नहीं है, किस तरह जीवी है, जैसे गालिब ने कह दिता किस तरह मैं जीवा, इन्हां बच्चियां विच मैं किस तरह जीवा, इस बचकानी जिंदगी नूं मैं किस तरह जीवा। एक ते अपनी सोचनी तो उदास बिरती का जन्म हो सकता है, दूसरा कोई चोट लग गई है, बहुत वड्डी बेइज्जती हो गई है, बहुत गहरी चोट लग गई है, और ऐसा प्रतीत हो गया है कि कुछ भी नहीं जगत, ये जीवन कुछ भी नहीं, उदास हो गया। या जपद्या जपद्या परमात्मा ने नाम नहीं चोट कर दिती है, गुरु दे शब्द नहीं चोट कर दिती है, कथा कीर्तन तो ही चोट खा गया है, उदास हो जाएगा।
कथा कीर्तन ने अजे चोट नहीं की थी। दरअसल कथा कीर्तन तो इसने अपने मन नु बचाया, एक पासे कीता है, इस वास्ते चोट नहीं की थी। ये उदास नहीं होया, अजे सोचदा समझदा नहीं पिया, अजे सोच विचार दे तल ते नहीं जी रहा, अजे जिवें पशु जी रहे ने इस तरह ही जी रहा है, शरीर दे तल ते, दिमागी तल ते नहीं जी रहा। या अजे इस नु कोई बहुत वड्डी चोट नहीं लगी, इस वास्ते उदास नहीं। जो भी थानू उदास ना दिखाई देवे, इना तिना च कुछ ना कुछ ते गल होवेगी, या ते बिल्कुल पशु की तरह होवेगा, दिमाग तो थले जी रहा होवेगा, शरीर दे तल ते कोई सोचनी विचारना नहीं है। या इसनू कोई चोट नहीं लगी, या जे कथा कीर्तन इसके हिरदे नू छू नहीं गया। संसार तो जड़ी चोट लगती है, मैं फिर दोहरा देवा, जद मनुख उदास आउंदा है लाजमी नहीं यह अपने आप नू बदलन की कोशिश करे, हो सकता है अपने आप नू खत्म करने की कोशिश करे। खतरा है, बहुत वड्डा खतरा है, सारी दुनिया च खुदकशी मौजूद है, कौन कर देने जो चोट खा जाते हैं और कहते नहीं जीवना, की करना है जी के। इतने निराश हो जाते हैं, इतने उदास हो जाते हैं, जीवना औखा हो जाता है उन्होंने और खुदकशी कर लेंगे। हां, 5% ऐसे मनुख ने जो खुदकशी नहीं करते, जगत तो चोट खा के अपने आप नू बदलन की कोशिश करते ने, जैसे कि राजयोगी परतरी, ये योगी बनया, ये संत बनया कथा कीर्तन तो चोट खा के नहीं, इस तरह के पुरुष नहीं सी। और ये भी अर्ज करते हैं, इसनों चोट घरों लग गई और इसने गल नू छुपाया भी नहीं। वैराग शतक जो इसका ग्रंथ है, उस कहिंदा मैं संत क्यों बनया, उन्हें कारण भी दस देता है, जोगी मैं क्यों बनया, कोई मैं सत्संगी नहीं सी, कथा कीर्तन जाके नहीं सुनदा सी, ते मेरे उपर असर पै गया, ते मैं उदास हो गया, निराश हो गया, इस तरह की कोई गल नहीं। फिर जोगी क्यों बनया, कहिंदा जिन को चित मैं नित मैं चित मो तिन की तन मोह तन माए रती ना, वो आन पुमान के संग रति फुन तामन में गन का ग्रह की ना, धृग है अब लाभृद कंदरब पे और मोए धिकार जो मार अधीना, इस रीत समूह की प्रीत तजी निरप होए जोगीश्वर ईश्वर चीना। इनू घर तो चोट लग गई, घर वाली तो पिंगला इसकी चहेती राणी सी। इहदे तीन ग्रंथ ने, वैराग शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक। वैराग शतक इसका बहुत कीमती ग्रंथ है और गुरु नानक की कृपा भी भरतरी ते बहुत ज्यादा सी। दो तीन शब्द भरतरी के प्रति सतगुरु ने उच्चारण किए ने, सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म नहारे, कह नानक सुन भरतर जोगी खीवा अमृत धारे। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, ये कहिंदा जिन को चित मैं नित मैं चित मौ तिन की तन मौ तन माए रतीना, जो मेरे चित दे हर वकत सी, मैं कदी जिस नूं भुलाया ही नहीं, उस दे चित दे च मैं नहीं सी। जिन को चित मैं नित मैं चित मौ तिन की तन मौ तन माए रतीना, वो आन पुमान के संग रति फुन तामन में गन का ग्रह कीना, मेरे चित दे च पिंगला सी हर वक्त, मैं उस नूं याद कीता है, पर पिंगला दे चित दे च मैं नहीं सी। वो आन पुमान के संग रति फुन तामन में गन का ग्रह कीना, उते गनका बनी हुई, उते परश पुरश दा जो है उसके मन दे चिंतन ते उसका संग। परतरी कहिंदा जिस दिन मैनू पता चलिया कि जिसनू मैं प्राणा तो भी ज्यादा प्यार किया, हर वक्त याद किया, उसके चित दे च मैं नहीं हां। वो आन उपमान के संग रति फुन ता मन में गन का ग्रह कीना, धृग है अबला ब्रित कंदरब पे और मोए धिकार जो मार अधीना, ऐसी स्त्री ते लानत जिसका पति छत्रपति राजा होए और वो अपने चित दे च उसनू थां ना दे। ते भरतरी कहिंदा मेरे ते भी लानत कि मैं जिंदगी का मकसद एक स्त्री ही समझ लिया। ये कहिंदा मेरे ते मोह अधिकार, मेरे ते भी लानत,
और मोह दिकार जो मार अधीना श्रीत समूह की प्रीत तजी निरप होए जोग ईश्वर ईश्वर चीना, इस तरह की रीत मैं छोड़ देती है। राजा होंदे हो या जोगी हो गए, नवी जिंदगी की तलाश, ये जीवन नहीं चाहिए, ये संसार मैनू नहीं चाहिए, कुछ होर दुनिया की तलाश। गोरख कहिंदा है कोई होर दुनिया भी है, तो उसका चेला बन गया। वो जिहड़ी होर दुनिया है मैं उत्थे वसना इस दिच नहीं, वो जिहड़ा होर जीवन है मैनू वह चाहिए है, ये नहीं, मैं उस दिच जीवना है। ये घर तो ही चोट खा गया, भाव संसार तो ही चोट खा गया। ऐसा भी आउंदा है कि घर तो संसार तो चोट खा के कोई जोगी बन गया, संत बन गया, गुरमुख बन गया, भगत बन गया, और शब्द का चोट ये लाजमी 100% संत

स्वभाव है देना। जो कुछ उसने दिता है उसकी देन नूं वेख के उस देन नूं निशानी जान के दाते दा चिंतन करना है, ए विष्णु दा नजरिया सी। अगां चल के ख्याल ए प्रचलित हो गया कि विष्णु भंडारी है, संसार नूं रिजक देण वाला है, संसार नूं दाता देण वाला है। दरअसल दाता देण वाला नहीं, दाते दा ज्ञान कराण वाला है और बोध कराण वाला है कि दाता ओ है ते जो कुछ साडे कोल है ए सब कुछ उसदा दित्ता होया है। विष्णु दी ए गल करीबन करीबन हर जैन दे समझ दे आई। इस वास्ते साडे देश दे विष्णु दे बहुत मंदिर बने और विष्णु दे अनेकां अवतार मन्ने गए। विष्णु तो बाद एक होर दृष्टिकोण साडे देश दे प्रचलित होया, ओ सी ब्रह्मे दा। गुरु नानक देव जी महाराज इशारतन उन्हां दा जिक्र करदे ने, गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार। ब्रह्मा विष्णु दे नुक्ता निगाह नाल सहमत होंदा नहीं दिसदा। बड़ी बिखड़ी विद्या लैके, बहुत बारीक पेचीदा विद्या लैके उन्हें प्रभु दे गीत गाने शुरू कीते। चूंकि ब्रह्मे कोल दिमाग एक दार्शनिक दा दिमाग सी, फिलोसफर दा दिमाग सी, ओ छेती मोटियां गल्लां नाल सहमत होने वाला नहीं सी। इस वास्ते ओ संसार दी खोज दे चल पिया, भई पहले मैं ये वेखना है संसार कित्थों है, संसार क्यों है, इहदा मूल की है, इहदा आद की है, इहदा मद की है, इहदा अंत की है। तो सृष्टि दा मूल लभण वास्ते ब्रह्मा चल पिया, उन्हें अपनी खोज दौड़ाई। बनस्पति दा मूल, कीड़े मकोड़ियां दा मूल, पशु पंखियां दी होंद, सूरज चंद तारियां दी पसरी हुई ए रोशनी ते उना दी होंद, और मनुखता दा इतने गहरे रूप देच ब्रह्मे ने अध्ययन कीता है, खोज की थी, जिस तो स्पष्ट होंदा है कि इस तरह दी खोज करन वाला पृथ्वी देते ए पहला ही मनुख है। 84 लख जून दा बोध इसने ही दिता। ग्रह नक्षत्रां दी गर्दिश दा मनुखी मन दे उते जो कुछ असर पै सकदा है, प्रभाव जो कुछ चंगा ते माड़ा पैंदा है, ए विचारां भी ब्रह्मे ने जगत दे सामने रखियां। बाद विच इन्हां ही विचारां तो प्रभावित होके ज्योतिष विद्या दा जन्म साडे देश विच होया, जिस नूं असीं आयुर्वेदक तौर तरीका इलाज दा दसदे हां। आयुर्वेदक जो वेदां दे चों निकलिया होया ढंग है, उन्हें जड़ी बूटियां दा भी बहुत गहरा अध्ययन कीता, बीमारियां दी भी खोज कीती, ए क्यों ने, ए कित्थों ने, इन्हां दा मूल कारण की है ते इन्हां बीमारियां दा अंत किस तरह होवेगा, गरस के जिंदगी दे हर पहलू दी खोज ब्रह्मे ने कीती। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज इशारतन आसा राग दे इक शब्द दे जिक्र भी करदे ने, नाल कुटुंब साथ वरदाता, ब्रह्मा भालन सृष्ट गया, आगे अंत न पायो तांका, कंस छेद क्या वड़ा भया। तो ब्रह्मा सृष्टि दी टोल दे चल पिया, सृष्टि दी भाल दे चल पिया, संसार किवें बनया इस दी खोज दे चल पिया। अगां चल के साडे देश दे च ए गल प्रचलित हो गई कि ब्रह्मा संसारी है, संसार दे बनाण वाला है नहीं, संसार दे बनाण वाला नहीं है, संसार किवें बनया इहदा ज्ञान देण वाला है, संसार किवें आलमे वजूद दे चाया, इहदी बणतर की है और इह कित्थे तक पसरे होया है, इहदा बहुत कुछ ज्ञान उसने दिता। चूंकि संसार दे ज्ञान दे उते ही वेद खड़े ने, इस वास्ते ब्रह्मे नूं संसारी कह दिता। श्री कृष्ण ने इत्थे आके अर्जन नूं कहा, त्रई गुणी वेद विशा नस्त्रई गुणी भवार्जन। हे अर्जन, वेद तीन गुणा दी गल करदे ने, संसार दी गल करदे ने, तू मेरी गल सुन, जो मैं कह रहा इस नूं मन, जो मैं कह रहा उस नाल जुड़ो, क्योंकि वेद संसार दी गल करदे ने। दरअसल संसार भी अपने थां दे उते इतना महान है
कि एदी भी खोज होनी चाहिदी है। और खोज करन दिते ब्रह्मा चलिया, उसका शौक सी, उसकी ये बुक सी। जीवन की बहु पक्षी खोज ब्रह्मे ने की। संगीत का जन्मदाता ब्रह्मा है, कविता का जन्मदाता ब्रह्मा है, आयुर्वेदिक का जन्मदाता ब्रह्मा है, 84 लाख जून का ज्ञान देण वाला ब्रह्मा है। मन दिया हालत नौ ने, रंग नौ ने, सुरां सत ने, जबान दे रस 6 ने, इस तरीके की खोज भी ब्रह्मा करता रहा। और बहुपक्षी खोज उसने जगत दे सामने रखी। चूंकि दिमाग आप दे कोल दार्शनिक दा सी, फिलोसफर दा सी, आप दियां बारीक गल्लां हर मनुख दी समझ दे च ना आईयां, इस वास्ते ब्रह्मे दी प्रतिष्ठा साडे देश दे च कोई बहुत नहीं हो सकी, उहदे कोई बहुते मंदर साडे देश दे च नहीं बन सके। जिस तरह कदम कदम दे उत्ते विष्णु दे मंदर ने, इस तरह दे कदम कदम दे उत्ते ब्रह्मे दे मंदर नहीं ने। कारण की सी? उह दार्शनिक सी, फिलोसफर सी, इतनी गहरी गल करदा सी, गावे को विद्या विखम विचार, इतनी बिखड़ी विद्या अगों रखदा सी, लोगां दी समझ तो परे दी गल सी, संसार दी समझ तो परे दी गल सी। और परे दी गल इस वास्ते करदा सी कि मनुखां दे अंदर परे जान दी भुख पैदा कीती जा सके, दूर जान दी भुख पैदा कीती जा सके। मनुख दा दिमाग जिथे है उथे तक दी ही गल कीती जाए तां मनुख दा दिमाग अगे नहीं जा सकदा, अगे बारे नहीं सोचेगा। तो बहुत अगे दी गल ब्रह्मा करदा सी, इस वास्ते उसदे आले दुआले कोई बहुती मनुखता कठी नहीं हो सकी, उसकी पूजा भी साडे देश दे च कोई बहुत वड्डे पद्धर ते नहीं हो सकी, और उसके बहुत सारे मंदिर भी नहीं बन सके। इसका नुकता निगाह जो सी गुरु नानक देव जी महाराज इशारा करते ने, गावे को गुण वड़ियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार। तीसरा दृष्टिकोण जगत दे सामने रखा है शंकर ने। इन्हों का नुकता निगाह विष्णु ते ब्रह्मे नालों बिल्कुल न्यारा सी। उन्होंने जिस ढंग का ज्ञान जगत दे सामने रखा, गुरु नानक देव जी महाराज इशारतन उन्हां दा जिक्र करदे ने, गावे को साज करे तन खे, गावे को जी लै फिर दे। शिव जी दे गाण दा ढंग ए सी, गावे को साज करे तन खे, भी परमात्मा तन दी साजना करके फिर खे कर देंदा, जीवन बना के फिर ढा देंदा। मौत ही मौत है समगर जीवन विच, इत्थे सूरज बनदे ने बुझ जांदे ने, इत्थे धरतियां बनदियां ने मिट जांदे ने, इत्थे मौसमे बहार आंदा है खजां आ जांदी है, इत्थे मनुख जमदे ने मर जांदे ने। मौत ही मौत है, अंत ही अंत है। अंत दा दृश्य जगत दे सामने शंकर ने रखिया। कई दफा मुरदियां दी खोपड़ियां दी माला गल विच पा लैंदा सी, सिर्फ इस वास्ते लोगां नूं पता चले कि मनुख दा अंजाम एही है। वह अपने तन दे राख मल लैंदा सी, स्वास मल लैंदा सी, स्वा मल के भ्रमण करदा सी, सिर्फ इस वास्ते कि आखिर तन ने स्वा हो जाना है, राख हो जाना है, मिट्टी हो जाना है, धूड़ हो जाना है। गावे को साज करे तन खे, गावे को जी लै फिर दे। और शिव जी अक्सर अपनी समाधि शमशान घाट ते लांदा सी, उत्थे ही बैठता सी ताकि मौत चेते रहे। उन्हां दा कहना सी जिसनू अपना अंत चेते नहीं वो बेअंत तक नहीं जा सकेगा। बेअंत तक पहुंचन वास्ते मनुख नू अपना अंत दिखाई देना चाहिए। ये तीन दृष्टियां साडे देश दे च प्रचलित होईयां। संसार दे च फसे हुए रसक मनुखां नू विष्णु दी गल बहुत चंगी लगी और वह विष्णु दे आले दुआले कठे हो गए। अज भी असी देखदे हां कि बहुता व्यापारी तबका किसे हद तक लक्ष्मी नारायण दी ही पूजा करदा है। संसार तो उपराम बंदिया ने शिवजी दा दामन पकड़िया और उन्होंने शिवजी दी गल बहुत चंगी लगी कि मौत ही मौत है संसार दिच, सब कुछ राख हो जांदा है, सब कुछ मिट जांदा है, सब कुछ दा अंत हो जांदा है। गावे को साज करे तन खे, गावे को जी लै फिर दे। इस तरह दे उपराम बंदे जो संसार तो बिल्कुल बेजार सन, वो शिवजी दे आले दुआले कठे हो गए।
अवधूत लोग संसार तो बैरागी त्यागी मनुख सारे शिवजी दा दामन पकड़ के चलन लगे। संसार दे च रस मानन वाले संसार दे च ही रहन वाले ऐसे मनुखा नूं विष्णु बहुत अच्छे लगे, लेकिन ब्रह्मे नाल कोई बहुती मनुखता ने साथ ना जोड़िया, क्योंकि उदी गल विद्या ते खड़ी सी, ज्ञान ते खड़ी सी, अकल दियां खोजां ते खड़ी सी। इस वास्ते आम साधारण मनुख ब्रह्मा दी पकड़ तो परे रहा। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने जिहड़ा दृष्टिकोण जगत दे सामने रखा है, उन्हां दा फरमान है कि एक दृष्टि नाल गल नहीं बनेगी, क्योंकि परमात्मा अनंत गुणा दा मालिक है, अनंत शक्तियां दा मालिक है, अनंत कला दा मालिक है, बहु पक्की जात परमात्मा ते मारनी है। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने प्रथम जड़ी पहली गल कीती है, ओते है ए पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, होए सबन की रेण का, तो आओ हमारे पास। ए बंदे पहले तू मौत नू कबूल कर ले, अपना अंत कबूल कर, ताई मैं तेनू बेअंत दे देश ले जा सकांगा। पहला अंत तेनू कबूल होवे, प्रथम मौत तेनू कबूल होवे, एक नजरिया सामने रख के फिर साहब कहंदे ने कि परमात्मा निरा काल दा रूप ही नहीं, निरा मौत दा रूप ही नहीं, बल्कि उते बहुत वड्डा दाता है, बड़ा दयालु है, और उसने बहुत कुछ दिता है। की कुछ दिता है? मन तन तेरा, धन भी तेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, ये सब कुछ तेरी देन है, तू सड़ी झोली दे च पाई है, तू ते बहुत वड्डा दाता है, बहुत वड्डा दाता है। पर साहिबां दा ऐसा कहना है कि दात दे च बंदा फस ना जाए, किधरे दाता दे च फस के दाते नूं भुल ना जाए, वली नियामत बिरादरां दरबार मिलख खानाए, धन संपदा नूं वेख के, धियां पुत्रां नूं वेख के, महल माड़ियां नूं वेख के किधरे दाते नूं भुल ना जाए, तो उस नूं अपनी मौत चेते रखनी चाहीदी। पर मौत नूं चेते रख के किधरे इतना ही उपराम ना हो जाए कि संसार तो बिल्कुल किनारा कश हो जाए, तो साहिब कहिंदे नहीं, अपनी अकल दा भी प्रयोग करे, अपनी बुद्धि दा प्रयोग करे, बुद्धि दे आसरे विच संसार विच रहिंदा होया संसार तो उच्चा होवे। इस वास्ते गुरु नानक ने नारा लाया, अकली साहिब सेविए अकली पाईए मान, जिंदगी दे हर पहलू विच तू अकल दा प्रयोग कर, पर निरी कोरी अकल दा प्रयोग ना कर। ऐसा ना होवे कि अकल बारीक हुई जाती है, रूह तारीक हुई जाती है। कई दफा मनुख फिलसफे दियां गुंजलदार गल्लां विच ऐसा फसदा है कि जिंदगी दी हकीकत नालों संबंध टुट जांदा है। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने इह तिन्ने ही गल्लां कठियां ही तैनू चेते होण, तू ज्ञानी बण, बुद्धिमान बण, आलम बण, लेकिन इलम विच खो ना जावें, तैनू मौत चेते होवे। पर मौत चेते होवे किधरे तू इतना उपराम ना हो जावें कि संसार तो किनारा कशी कर लवें, परमात्मा तैनू एक दाते दे रूप विच दिखाई देवे, और जो कुछ तेरे कोल है ए उस दी दित्ती होई तेनू निशानी प्रतीत होवे, इस निशानी नू वेख के तू दाते दा चिंतन कर सके। गुरु नानक देव जी महाराज दा कथन है कि इस तरह दियां कथनियां संसार विच बहुत सारियां ने, कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। अनंत रूप ते अनंत गुणां दा मालिक साधकां दी दृष्टि च जिस जिस ढंग नाल प्रगट होया, साधक लोगां ने उसे उसे ढंग नाल उस परम शक्ति दे गीत गाए, उदी उस्तति कीती। चूंकि वह हर पल हर छिन नवा है और अनेकां रूप ने, इस वास्ते परिपूर्ण परमात्मा दे अनेकां नाम पै गए। साहिब फरमान करदे ने बलहारे जाओ जेते तेरे नाम है, किसे नूं ऐसा दिखाई दिता कि ओ रमिया होया, जद ऐसा दिखाई दिता तो रसना तो निकलिया राम, जद ऐसा किसे नूं प्रतीत होया कि संसार विच रहिंदा होया ओ संसार तो परे है, तो निरंजन शब्द रसना ते आ गए। जद ए देखिया कि उस विच खिची नहीं, कशिश नहीं है, उस विच संसार दी पकड़ उस दे च नहीं है, संसार दे च रहिंदा होया
ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਉਸ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਜਦ ਐਸਾ ਦਿਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਰਸਨਾ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਜਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੋ ਰਸਨਾ ਦੇ ਚੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤੇ ਜਦ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਦੀ ਚਰਚਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਚਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ 5-7 ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਕਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਤਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਕਿਧਰੇ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝੌਂਕੇ ਜਿਉਂ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਝੂਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਤਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਦਰਖਤ ਨਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਲਚਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝੂਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਉਹ ਨਿਰਤਕਾਰ ਬਿਸਮਾਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਖੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਖਤ ਨੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੈ, ਜਦ ਪਵਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝੌਂਕੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸਰਗਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਖੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਖੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਖੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਨਿਰਤਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਦਰਖਤ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜੈਸੇ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਚੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਦਾਸੀਨ ਮਹਾਤਮਾ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਦਰਖਤ ਦੀ ਤਰਫ, ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਪੱਤਾ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਝੌਂਕੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਿਰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਸੰਤ ਦੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਤਾ ਟੁੱਟਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੱਤੇ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਇਸ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਖੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੱਤੇ ਸਦੀਵੀ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਮ ਖੋਜ, ਕਿਸੇ ਪਰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰ ਤਲਬ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗੰਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਖੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸੰਤ। ਚੌਥਾ ਜੋ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਲੱਕੜ ਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜ ਕਿਤਨੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਚ ਜਲਾਓ ਲੱਕੜ ਕਿਤਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮਲਬਾ ਹੈ ਸ਼ਾਖਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਲਾ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇਹ ਦਰਖਤ ਖਰੀਦਾਂ, ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਦਾ ਵਿਕੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਬਚੇਗਾ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਖੋ ਕੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਜੋ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਵਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝੌਂਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦ ਸ਼ਾਖਾਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ,
पत्ते पत्ते नाल टकरांदे ने खड़ाक पैदा हुंदा है। कहिंदा है झगड़ा तो इत्थे भी शुरू है, शाखा शाखा नाल लड़ रही ने, पत्ते पत्ते नाल लड़ रहे ने। सिर्फ साडे घर दे च ही लड़ाई नहीं, इत्थे दरख्त दे च भी बहुत वड्डी लड़ाई है। हुण जैसी जैसी दृष्टि है मनुख दी, वैसी वैसी सृष्टि दिखाई देंदी है। दरख्त इक्को ही है पर सारियां नूं वख वख रूप करके प्रतीत हो रहा है। संसार ते इक है लेकिन नजरां वख वख होण करके नजारे वख वख दिखाई देंदे ने। जैसी सृष्टि आउंदी है, जैसी दृष्टि आउंदी है, वैसी ही मनुख दी सृष्टि बन जांदी है। वख वख सृष्टि करके परमात्मा दे अनेकां रूप जगत दे च प्रचलित होए। इस्लाम ते ईसाईयत ने उस परिपूर्ण परमात्मा नूं पिता करके आख्या, फादर कहंदे ने, पिदर कहंदे ने। समुच्चा इस्लाम कहंदा है वो जिहड़ी परम शक्ति है वह पिदर है, वह फादर है। दरअसल अगर असी परमात्मा नूं संबंधी बनाना चाहिए, जैसे को है भी साडा संबंधी गूढ़ बुनियादी संबंधी है, ते कोई साडे कोल पुछे तुसी परमात्मा नाल संबंध स्थापन कीता है पर ओ थोड़ा केहो जिहा दा संबंधी है, कौन लगदा है, की लगदा है। जैसे नाल चलदे हुए मनुख बारे कोई पुछ लवे कौन है ते असी कह दईए संबंधी है, पर इहदे नाल सवाल दा सही मायने जवाब नहीं मिलदा। ओ पुछ सकदा है संबंधी ते है पर की लगदा है, पुत्र लगदा है, मित्र लगदा है, भरा लगदा है, दोस्त लगदा है, आया की लगदा, रिश्ते दा जिक्र करना पैंदा, संबंधी दा जिक्र करना पैंदा, कैसा संबंध है, संबंधी चर्चा करनी पैंदी है। वो जो परम शक्ति है, वो जो परमात्मा है, उहदे नाल संबंध जोड़ना है, पर यह संबंध कैसा होवेगा, क्योंकि मनुख दी दुनिया दे जिहड़े संबंध ने उहदे च मां है, बाप है, पत्नी है, बच्चे ने, भरा ने, दोस्त ने, पड़ोसी ने, बस यही संबंध ही ने। उस परिपूर्ण परमात्मा नाल कैसा संबंध जोड़िए, तो इस्लाम कहंदे ने पिता दा संबंध जोड़ो, ईसाईयत भी कहंदी है फादर है। प्रार्थना करनगे, प्रेर करनगे, इबादत करनगे, वो पिता दे अगों झुकनगे और उस पिता दे कोलों इंज याचना करनगे जैसे कि एक मासूम बच्चा प्यो कोल मंगदा है। इस्लाम ईसाईयत दी समुची इबादत पिता पुत्र दे आले दुआले घूमदी है। एक पुत्र प्यो दी पूजा कर रहा है, एक पुत्र पिता दी परिक्रमा कर रहा है, एक पुत्र पिता नूं महान जान के उहदे अगों याचना कर रहा है। यह बंदगी, यह इबादत इस रिश्ते दे उत्ते खड़ी है। पर होर थोड़ा जिहा अगां जाइए, भारत दा पुराना सनातन मत उसका एक अंग उस परम शक्ति नूं परमात्मा नूं मां करके पूजदा है, माता करके पूजदा है। जिथे इस्लाम कहिंदा है वह पिता है, ईसाईयत कहिंदी है वह फादर है, वह बाप है, उत्थे भारत दा एक तबका कहिंदा नहीं वह मां है। लिहाजा माता माता दी चर्चा ते गीत चलदे ने। माता दे बहुत सारे मंदिर भी साडे देश दे मौजूद ने, जैसे कि वैष्णो देवी, नैणा देवी, काली देवी, सुरस्ती देवी, दुर्गा देवी इत्यादिक अनंत देवियां साडे देश दे इस भावना करके उजागर होईयां कि मनुख ने मनिया वो परमात्मा माता है, मां है। तो मां जान के पूजा शुरू हुई, मां जान के प्रतिष्ठा शुरू हुई और मां जान के बंदगी, परिक्रमा, इबादत ये सब कुछ अर्चा बंधन चल पिया। एक तबके ने इस ढंग नाल परमात्मा नु मने। अगां चलिए सूफी संत जड़े ने परिपूर्ण परमात्मा नाल जो रिश्ता स्थापन करदे ने वो है महबूब ते महबूबा दा। इस वास्ते सबे मुसलमान सूफी कलाम नू पसंद नहीं करते। मुतसबी मुसलमाना ने ते सूफिया नू किसे हद तक कतल भी कीता। औरंगजेब ने सरमद नू कतल कीता। मुल्तान दे मुस्लिम हुक्मरान ने शमस तबरेज दी पुठी खल लवा दित्ती। करीबन करीबन जितने भी सूफी पैदा होए मुतसबी मुसलमाना दे मार दी शिकार होंदे रहे। जैसे कि सरमद दी कबर असी जामा मस्जिद दे कोल वेखदे आं, इस नूं औरंगजेब ने कतल कर दिता सी। एक खुले ख्यालां दा मालिक। सूफी कलाम दे अंदर जो रिश्ता परमात्मा दा मिलदा है
ਉਹ ਹੈ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਮਹਿਬੂਬਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਚਲੀਏ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਭਗਤ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਕਹੋ ਕਬੀ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਘਰ ਕਾ ਜਿਵਾਏ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮ। ਗਰਜ਼ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਔਰ ਨਿਹਕਲੰਕ ਰਾਜਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਰਈਅਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਪਰਜਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਸ਼। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਮਗਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਂ। ਤੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਗੀ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ। ਤੂੰ ਬਈ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਦਾਸ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮਾਨੇ ਛਾਕ ਚਾਕਰ ਰਾਖੋ, ਚਾਕਰ ਰਾਖੋ, ਚਾਕਰ ਰਾਖੋ ਜੀ। ਇਹ ਗੀਤ ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਕਰ ਰੱਖ ਲੈ, ਗੁਲਾਮ ਰੱਖ ਲੈ, ਦਾਸ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਾਕਰ ਹਾਂ। ਗਰਜ਼ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਭਗਤੀ ਜੀਵਨ ਦਾਸ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤ ਲਾਓਤਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਉਸੇ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਅਨਾਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਾਤੂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ। ਤੋ ਭਰਾਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਓਤਸੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਲਾਓਤਸੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ,
तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, सबनी थाई तांबो के आ काड़ा जी। विज्ञानक तत्व भी साडे सामने, अगर किसी बच्चे दी मां होवे ते प्यो ना होवे, ओ एहसासे कमतरी दा शिकार हो जांदा है और उसनू जगत यतीम कहण लग पैंदा, प्यो ही कोई नहीं, मां है। ते जे हुण प्यो होवे ते मां ना होवे, ऐसा बच्चा ममता ते प्यार तो वांझा रह जांदा है। जीवन दी परवरिश दे च काफी खामियां रह जांदियां ने। और इस गल नू हुण मनोविज्ञानियां ने मन लिया कि जिस बच्चे नू मां दी ममता नहीं मिली, वड्डा होके ये कठोर होवेगा, ये सख्त दिल दा होवेगा। ये गल वखरी है कि उसके पूर्वले संस्कार कुछ पवित्र होवन ते उहदे अंदर कोमलता बनी रहे, ये गल वखरी है। वरना मां दी ममता अगर नहीं मिली, प्यार अगर नहीं मिलिया, तो बच्चे दा हिरदा कठोर हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। मां दी लोड़ है, पिता दी लोड़ है। हुण मां होवे, बाप होवे, पर भरा ना होवे, बड़ी घाट महसूस होंदी है। भरा नूं ते आखदे ने इते बावां है, इते साडियां बावां ने। हुण मां बाप ते होवे पर भरा ना होवे, तां बहुत वड्डी घाट महसूस होंदी है, बहुत वड्डी घाट। भरा होवे, मां बाप भी होवन, पर दोस्त ना होवे, मित्र ना होवे, जिनू बंदा राज दी गल दस सके। क्योंकि कुछ ऐसे भी राज होंदे ने व्यक्तिगत, जो बंदा मां नू नहीं दस सकदा, प्यो नू नहीं दस सकदा, भरा नू भी नहीं कह सकदा, वह सिर्फ मित्र नू ही कह सकदा है, दोस्त नू कह सकदा है। तो गुरु नानक देव जी महाराज उस परिपूर्ण परमात्मा नू दोस्त भी कहंदे ने। क्योंकि जिहड़ी गल मेरे अंदर गुझी है, हे अकाल पुरख, मैं तेरे अगों प्रगट करनी है, इस ढंग नाल जैसे कि एक मित्र मित्र दे अगों करदा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे च मित्रता दा रिश्ता भी मौजूद है। साहिब कहंदे ने, सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंती यार, तिस मोहन लाल प्यारे के हों फिरों खोजंती। साहिब उस परम शक्ति नू यार कहंदे ने, तू सखा है साडा, तू मित्र है साडा, तू यार है साडा, असी तैथों कोई गल छुपा के नहीं रखनी और छुपा के रख भी नहीं सकते, तेरे अगों सब कुछ प्रगट कर देना है। पर तू निरा यार नहीं, तू ते भ्राता भी है, जैसे रण में सखा बरात, तू साड़ी बावा है। निरी तू साड़ियां बावा ही नहीं रक्षा करने वास्ते, बल्कि तू पिता है, ते पिता दी सोचनी यही आउंदी है, बच्चा अजीम बने, तू सानू महान बनाने दी भी सोचदा है। तू निरा पिता नहीं, तू मां भी है, ममता तैथों डुल डुल के पैंदी है, तेरा प्यार समग्र जीवन दे उत्ते बरसदा है, तू सारियां नाल प्यार पांदा। अगाहों चलिए साहिब गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी महबूब ते महबूबा दे रिश्ते नूं भी झुटलांदी नहीं, नजरअंदाज नहीं करदी। गुरु नानक देव जी महाराज ने ऐसा संबंध भी परमात्मा दे नाल जोड़िया, वडहंस राग दा एक शब्द मैं आप जी दे समक्ष भेट करां। मोरी रुण झुण लाया, भैणे सावण आया, तेरे मुंद कटारे जेवड़ा, तिन लोभी लोभ लुभाया, तेरे दर्शन विटों खनिए मन्या, तेरे नाम विटों कुर्बानो, जा तू ता मैं माण किया है, तुद बिन कहा मेरा माणो, चूड़ा भन पलंग सों मुंदे, सणबाई सणबाहा, एते वेश करेंदिए मुंदे, सौरा तो अवराहा, ना मनियार ना चूड़िया, ना से वंगणिया, जो शह कंठ न लगिया, जलन से बाहड़िया। इस शब्द देच जिस रिश्ते का जिक्र है, उते उही संबंध मेरे पातशाह स्थापन कर रहे ने, जो सूफिया ने ईश्वर दे नाल स्थापन किया। दरअसल मां बाप होवन, भरा भी होवे, दोस्त भी होवन, पति ना होवे, पत्नी ना होवे, तो एक बहुत वड्डी घाट परिवार देच महसूस होंदी है। ये रिश्ता भी परिपूर्ण परमात्मा दे नाल सतगुरु देव जी महाराज ने जोड़े। फिर गुरबाणी उस परम शक्ति नू गुरु भी कहंदी है। गुरु गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर, तू गुरु है आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, तू साडा गुरु है, असी तैथों प्रेरणा लैण वाले, तू समग्र जीवन नू
ज्ञान दान देन वाला है, सारे जगत नु चानना देन वाला है। जिथे साहेब गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस दे नाल गुरु ते शिष्य दा रिश्ता जोड़दे ने, उत्थे गुरबाणी उस नु राजा भी कहंदी है। को हर समान नहीं राजा, ई भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरे समान कोई होर राजा नहीं है, तेरे समान कोई होर पिता नहीं है, तेरे समान कोई होर मां नहीं है, तेरे समान कोई होर मित्र दोस्त नहीं हो सकता, तेरे समान कोई होर महान मालिक नहीं हो सकता। सारी जगत दे रिश्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने परमात्मा दे निरूपण कीते ने। भाई साहब भाई गुरदास जी का कथन है कि जिन्ने साडे संबंध ने इन्हां संबंधां दे विचों ही परमात्मा की झलक वेखनी है। मां दे अंदर दुल रही ममता नूं परमात्मा की दित्ती हुई ममता समझना है, पिता का दिता हुआ प्यार ऐसा समझना है कि परमात्मा ही यह प्यार दे रहा है, ईश्वर ही यह प्यार दे रहा है। मां नूं ठुकरा के पिता का दिल तोड़ के अगर कोई बंदा तीर्थां ते भ्रमण करे, दान करे, पुन करे, भाई साहब भाई गुरदास जी ने इस नूं कोई महानता नहीं दिती। आप कहंदे ने मां प्यो पर हर सुने वेद, भेद न जाने कथा कहानी, मां प्यो पर हर करे तीरथ, 68 तीरथ घूमण वाणी। मां दा दिल तोड़ के प्यो दी बेदबी करके अगर कोई बंदा कथा सुनन वास्ते जाए, भाई साहब कहंदे ने कथा दे भेद नूं नहीं समझ सकेगा, ये ते भुल गया। ये जो मां तेनू मिली है ये मां नहीं, ये परमात्मा ही मां दे रूप च तेनू मिले है, परमात्मा ही ममता लुटा रहे है, परमात्मा ही प्यार दे रहे है। अगर परमात्मा ने प्यार देना है, ममता करनी है, तो किस रूप च करे? वह मां दे रूप च कर रहे है। परमात्मा ने हमदर्दी जतानी है तो किस रूप दे जतावे? वह पिता दे रूप च जता रहे है, वह पिता दे रूप च प्यार दे रहे है। इस वास्ते भाई साहब कह रहे ने कि पिता दा दिल तोड़ के जो तीर्थां ते भ्रमण पिया करदा है, मां नूं ठोकर मार के जो कथा सुनन दी कोशिश पिया करदा है, भाई साहब कहिंदे ने रब्बी राज नूं ओह नहीं समझ सकेगा। मां प्यो पर हर करे तीरथ, 68 तीरथ घूमण वाणी। ते हुण ऐसा होवे कि माता दे तन दे कपड़े ना आउण, पिता दे पैरां दी जुत्ती ना आवे, ते ए बहुत वड्डा दानी बनिया फिरे। भाई साहब कहिंदे ने मां प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान पराणी। मां नूं ठुकरा के प्यो दियां जरूरतां नूं ठुकरा के जिहड़ा बहुत वड्डा दानी बनन दी कोशिश कर रहा है, भाई साहब कहिंदे ने परले दर्जे दा अज्ञानी पुरश है और बेईमान बंदा है। कारण की कि इन्हां तमाम रिश्तियां दे चों ही ते परमात्मा दा रिश्ता लभना सी, ईश्वर दा रिश्ता लभना सी। इस वास्ते साडे देश दे च कोशिश कीती गई कि पहले घर नूं मंदर बनाया जाए, घर मंदर, घर घर अंदर धर्मशाल होवे, कीर्तन सदा वसोआ। घर नूं ही मंदर बनाना है, तो घर मंदर तां बन सकदा है कि मां दे च परमात्मा दी झलक मिले, पिता दे च परमात्मा दा स्वरूप दिखाई देवे, भरावां दे च अकाल पुरख दी हमदर्दी दिखाई देवे, मित्रां दे च परमात्मा दी नेड़ दिखाई देवे, और पत्नी दे च परमात्मा दी पत ते शफकत दिखाई देवे, तां ही घर मंदर बन सकदा है। बड़ी कोशिश कीती साडे देश दे ऋषि मुनिया ने कि जिहड़ी पत्नी है ए पति नूं परमात्मा आखे, ते जो पति है ए पत्नी नूं देवी आखे। हुण इक नूं देवी दिखाई देवे ते एक नूं परमात्मा दिखाई देवे, घर ते मंदर ही बन गया। आखिर मंदर दे च की हुंदा है? देवते हुंदे ने, देवियां हुंदियां ने। पति नूं पत्नी देवी दिखाई देवे और पत्नी नूं पति देवता दिखाई देवे, एक परमात्मा करके बुलावे, एक देवी करके बुलावे, घर मंदर बन गया। पर जे इस तों उल्ट गल होवे, पति पत्नी नूं भूत दिखाई देवे और पत्नी पति नूं डायन दिखाई देवे, घर ते नरक बन गया। होर किहड़े नरक दे जाना है, घर ही दुखां दा अखाड़ा बन गया। घर नूं मंदर बनाउण दी प्राचीन समय तो एक कोशिश सी, परमात्मा पहले घर दे च दिखाई देवे,
ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਮਾਮ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ, ਅਜਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਤੇ ਜਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਝੂਠ ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਧੋਖਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਪਨਪੀ ਸੀ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਵਕਤ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ? ਇਸ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਨਬੀ ਦੇ ਚ ਵੀ ਦੇਖ, ਰਾਹੀ ਦੇ ਚ ਵੀ ਦੇਖ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਦੇਖ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਦੇਖ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਚ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਜਨਬੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਾਮ ਦੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੇ ਖੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਚ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਾ ਦੇ ਚ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਚ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਮਗਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਮਾਮ ਰੂਪ, ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਹੈਨ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ, ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਾ। ਹੇ ਨਾਰਾਇਣ, ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ।

पहला सब रस मिठे मनिए सुनिए सालोणे खट तुरसी मुख बोलना मारण नाद किए छती अमृत भाव एक जाको नदर करे बाबा और खाना खुशी खुआर

0: खट्टे तुरसीम खट मिठड़े ए सारे दे सारे ओ रस ने जो मैं अपने मुंह नाल परिपूर्ण परमात्मा दे नाम दा उचारण करदा। जितने खट मिठड़े रस ने, जितने तुरसीम रस ने है, सारे दे सारे रसां दा मैं आनंद उदो माण लैना जद रसना उस दे बोल बोल दिए, जद रसना उसका जप जप दिए। और इना सारे पदार्थां दे च मैं मसाले केड़े पाए ने, ना संगीत दा मैं मसाला पाया, सुनदा संगीत दे च, बोलदा संगीत दे च। तो जद बोलदा ते सुनदा मैं संगीत दे च, सुनना होर रसदायक हो जांदा है, बोलना होर रसदायक हो जांदा है। गुरु नानक दी ए गल अज दे युग दे ते बड़ी सार्थक आउंदी जा रही है कि कल युग में कीर्तन प्रधाना, हरि दी कीर्ति रागा नाल गायन करने और सुनने। जिथे सतगुरु ने कह दिता सी कल युग दे च ईश्वर प्राप्ति दा ए प्रधान साधन है, अज असी देखदे पया थकिया होया मनुख जहनी तौर ते शरीरक तौर ते, और बहुत सारे फिलसफे ए पढ़िया होया और अजोके ज्ञान विज्ञान नू ए समझदा होया, कॉलेज ते बड़िया बड़िया यूनिवर्सिटियां तो निकलिया होया, विश्वविद्यालयां तो निकलिया होया ए मनुख, आज इसनू अगर कीर्तन दी खुराक ना मिले, ना दित्ती गई, तो इसदे पागल होने दे च कोई देर नहीं है। ए प्रधान साधन है, संसार नू इसने बहुत कुछ जान लिया, इनू कथा राही जनाण दी हुण कोई लोड़ नहीं है कि संसार की है। इते विद्यालयां च सिक्के आ गए, पदार्थ की ने, संसार की है, इहदे च हुण वक्त जाया करना बिल्कुल बेमैनी है। हुण ते दसना चाहिए उस परिपूर्ण परमात्मा दे गुण की ने, ते उना गुणा नू प्राप्त किवें करिए, ते जे किधरे उहदे गुणा नू रागां दे च मिश्रित करके गा के प्रगट किया जाए, तो उहदे गुण ते रसदायक ने, राग होर रसदायक कर देंदे ने, संगीत ऐसा कम कर देने जैसे कुछ मसाले पा दिते गए ने, ते भोजन होर स्वादी हो गया है। तो अज दे इस कल युग दे दौर दे च गुरु नानक दी ए गल विश्वव्यापी सार्थक होंदी जा रही है कि कल युग में कीर्तन प्रधाना, जोगी भी कीर्तन करन लग पे ने, सन्यासी भी कीर्तन करन लग पे ने, साजां दियां धुनां चर्च दे च भी वजन लग पईआं ने, कवाली संगीत मस्जिदां दे च भी आ गया, दरगाहां दे च भी आ गया, काबियां दे च भी आ गया। तो एक गल तो स्पष्ट हो गई कि गाण नाल परिपूर्ण परमात्मा खुदावन ताला दे जिहड़े गीत ने, इनू संगीत दे ढाल के गायन करन नाल मन ते छेती असर पैंदा है और जल्दी सुकून मिलदा है। तो जिथे गुरु नानक दे कोलों ए रवाब दी धुन छिड़ी सी, गुरुद्वारियां तो उठ के अज मंदिर मस्जिद ते चर्चा तक भी पहुंची है और संगीत दे आसरे ते परिपूर्ण परमात्मा दे गीत गुण गायन करके परमात्मा नाल जुड़न दे वसीले लभ रहे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने इह ते मसाला है संगीत, भोजन नू होर स्वादी बना देंदा है, होर रसदायक जो है बना देंदा है। मारण नाद की है, छत्ती अमृत भाव एक जाको नदर करे, उस एक दा भाव, उस एक दी भावना, उस एक दी श्रद्धा जो अंदर पैदा हुई है, मन में 36 प्रकार दे भोजन छक ले रहे। भोजन 36 प्रकार दा अक्सर मनिया जांदा है, श्रृंगार 16 प्रकार दा गिणन दे जो है आया। मन दियां हालतां विद्वान 9 मनदे ने, जिन्हों 9 रस भी कह देंदे ने, मन दे वख वख इस ढंग दियां जो है गिणतियां ने। साहिब कहिंदे 36 प्रकार दा जो खाना है, मनो में छक लिया, मनो में रस मान लिया, जिहड़ी उसकी भावना अंदर उजागर हो गई है, अंदर जो है पैदा हो गई है। इस वास्ते बाबा होर खाना खुशी खुआरे, जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। मनुख जिंदा रहिंदा अगर खून चलदा रहे, और खून तां चलदा रह सकदा है अगर मुंह विच भोजन चलदा रहे, खुराक चलदी रहे। खुराक खून है, खून जिंदगी है, और खून चलदे ने तो मन चलदा है, विचार चलदे ने तो मुख गलते आ गई भोजन थे। तो साहब इसने इंज तस्लीम कर देने कि है कुछ ऐसा भोजन जो खून विच विकार पैदा करता है, है ऐसा कुछ भोजन जो शरीर विच रोग पैदा करता है। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। वैसे तो एक दिन का खाना भी दस सकता है कि जो कुछ मैं खादा है शरीर दे अनुकूल है कि नहीं, मन दे अनुकूल है कि नहीं। अगर कोई शरीर शास्त्री होवे, अगर कोई अपने मन नूं पढ़न वाला होवे, तो उन्हें देखना चाहिए अज मैं खादा की है, क्योंकि खून की गर्जिश ते खाण नाल है, विचारां दा दौर ते खाण नाल है, मन दे च विकार आ गए ने, तन दे च पीड़ा आ गई है, ये ते खाना दोषी है। और जे खाना दोषी है तो मनुख दोषी हो जांदा, विचार दोषी हो जांदे ने, शरीर रोगी हो जांदा। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी ए मनोत है कि बेशतर शरीरक रोग और मानसिक विकार इन्हां दा मूल कारण है आहार। अगर कोई मनुख अपने आहार दे प्रति सुचेत नहीं है, सावधान नहीं है, तो स्पष्ट है वो अपने रोगां प्रति और मानसिक विकारों प्रति सुचेत नहीं है। इस वास्ते फैसला कर देता है बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। ये ठीक है कि जीवन व्यापक है, वनस्पति दे च है, पशु पक्षियां दे च है, आदि मनुख प्रकृति दे हवाले सी, पहाड़ां दियां कंदरां च रहिंदा सी, रुखां तले रहिंदा सी, और प्रकृति ही जो उसनू खाण नू देवे ओही खांदा सी। इसका स्वयं का कोई चुनाव नहीं सी, क्योंकि मनुख अजे सभ्य नहीं होया सी। प्रकृति ने जो फुल दे दिते, फल दे दिते, वह खा लिया। पर जब फुल ना मिले, फल ना मिले, तो फिर पशुआं दा शिकार। इसते जीवन बतीत होंदा रहा, जिंदगी इस तरह लंघदी गई, आखिर सहजे सहजे मनुख सभ्य होया। सभ्य तो मुराद सभा दे च बैठन दी जा चाहिए, सभा नू समझन दी जा चाहिए, सभा दे च अपने आप नू पेश करन दा ढंग इस नू आया। और जो विचार मैनू नहीं चंगे लगदे उस सभा नू भी नहीं चंगे लगदे। सभा मैनू कैसी चंगी लगदी है और सभा नू मैं किस ढंग नाल चंगा लग सकदा, इस सोचनी दा जदो जन्म होया और इस सोचनी दे अनुकूल जद मनुख ने अपने आप नू ढा लिया, तो उसनू आख्या गया सभ्य। तो इसकी सोच दे च ए भी गल आई कि मैथों घट तो घट किसे नू दुख पहुंचे, चोट पहुंचे, तो मेरे आहार दे च भी किसे नू चोट ना पहुंचे, मेरी खुराक दे च भी किसे नू चोट ना पहुंचे। वैसे ते बनस्पति दे च भी जी, दाणियां दे च भी जी, और पहला समग्र व्यापक जीवन पानी, पहला पानी जीव है। जित हरिया सब कोय, अहिंसक ते मनुख हो नहीं सकदा, नहीं ते पानी दा त्याग करना पेगा, वनस्पति दा भी त्याग करना पेगा, दाणियां दा भी त्याग करना पेगा, क्योंकि जे ते दाणे अन्न के जिया बाज न कोय। बस इतनी सोचनी अंदर जन्म लवे कि मेरे आहार तो दूसरे नू चोट घट पहुंचे। पशुओं का कुछ ऐसा जगत भी है जिथे मन विकसित हो गया है और मानसिक पीड़ा महसूस होंदी है, और जिथे मानसिक पीड़ा ज्यादा महसूस होवे उस पशु नू भी मनुष्य जैसा समझना चाहिदा है, मनुख जैसा समझना चाहिदा है। पर जिथे मानसिक सोचनी नहीं, मानसिक पीड़ा नहीं सिर्फ शरीरक ही पीड़ा है तो वह बनस्पति जैसे ने दाणिया जैसे ने क्योंकि दाणिया नू भी जद बुनदे आ तड़पदे ओ भी ने दाणिया नू भी जद बुनदे आ उछलदे ने तड़पदे ने आवाज भी करदे ने तिड़ तिड़ करदे ने इना दे चीखण दी आवाज है तड़पदे हुए किसी पशु नू वेख के अगर मानसिक पीड़ा महसूस होवे तो उस नू तड़पदे हुए दाणिया नू वेख के भी पीड़ा महसूस होनी चाहिए दर्द महसूस होना चाहिए फिर भी खुराक खान लगया उदी ए सोचनी होवे कि मेरे आहार तो दूसरे नू घट ही चोट पहुंचे ताकि ऐसा आहार मेनू चोट ना पहुंचावे जिस आहार ने दूजिया नू चोट पहुंचाई है ए आहार इस नू भी चोट पहुंचाएगा एदे तन नू रोगी करेगा एदे मन नू पीड़ित करेगा करीबन करीबन 90% मनुख दी अज खुराक ऐसी है दूजिया नू चोट पहुंचा के हासिल की जा रही है तो चोट पहुंचा के हासिल की गई खुराक खुराक भी चोट पहुंचाएगी खुराक भी जरब करेगी इस वास्ते गुरु नानक दा ए फैसला बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार हे बाबा हे मेरे मित्र हे सियाने सुचेत रह तेरे शरीरक रोगां लई तेरी मानसिक पीड़ा लई 90% ते जिम्मेवार है तेरा आहार तो जो आहार दे प्रति सुचेत नहीं वो विचार दे प्रति सुचेत नहीं हो सकता जो आहार दे प्रति सुचेत नहीं वो अपने शरीर दे प्रति भी सुचेत नहीं हो सकता और जो शरीर ते मन दे प्रति सुचेत नहीं उनु सभ्य नहीं कहा जा सकता असभ्य मनुख है अजे उसनु सवाद बैठन दी जाच नहीं आई अजे उस दे अंदर पूर्ण तौर ते मनुखता प्रगट नहीं हुई तो प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज अपना उपदेश अपना संदेश खाने तो आरंभ कर दे ने फिर दूसरा आप पहनने दा उपदेश दें दे ने
1: रता पहनण मनुरता सुपे दी सतदान नीली सिहाही कदा करनी पहरण पैर ध्यान कमर बंद संतोख का धन जो बन तेरा नाम बाबा होर पैनन खुशी खुआर जित पैदे तनु पीड़िए मन में चले विकार खान पीन तो बाद पहनन दी मनुख सोचदा है और ये सिर्फ मनुख ही सोचदा है या इंज कह लो पहनन तो ही मनुखता आरंभ होंदी है पहनन बारे पशुआ ने नहीं सोचे पंछियां ने नहीं सोचे धन गुरु नानक देव जी महाराज ते कहंदे ने विस्माद नांगे फिरे जंत इन्ना नंगे पशुआ नू देख के मैं ते विस्मादमयी हो जांदा विस्मय हो जांदा इना दे अंदर पहनन दा ख्याल नहीं पैदा होया ये इस तरह दे नाल नगनता दी प्रदर्शनी कर रहे ने एक मासूम बच्चा नवजायद बच्चा उस दे अंदर भी अजे पहनन दा भाव नहीं पैदा होया ये गल वखरी कि चीथड़ियां विच कपड़ियां विच मां बाप उस नूं लपेट के रखदे ने पर पहनन दा भाव अजे उस दे अंदर नहीं पैदा होया इस वास्ते कह देंदे ने ये मासूम बच्चा अजे असभ्य है सभ्यता ते बुद्धि दे विकास दे नाल नाल ही हुंदी है तो अजे बौद्धक विकास नहीं होया ए बच्चा मासूम इस तरह नगन निर्दोष है जिस तरह के पशु नगन निर्दोष ने मनुखता नहीं आरंभ हो सकी मनुखता सोचण नाल आरंभ हुंदी है और पशु सोच दे तो लाजमी ओ पहनण लई भी सोच दे और नगनता उन्हां नूं महसूस हुंदी या इंज कह लो मनुखता इत्थों ही आरंभ हुंदी है जद नगनता महसूस होण लग पे यही कारण है कि जिस दे अंदर मनुखता ना होवे साडी भारतीय परंपरा दे मुताबिक कह देंदे ने ये मनुख बहुत नंगा है बिल्कुल नंगा है ਨੰਗੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਜੇ ਸਿੰਦਰ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਢਕਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਆਜ਼ਾ ਢਕਣੇ ਨੇ, ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਢਕੜੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ੀਲ ਸੰਜਮ ਦੇ ਚ ਰਹੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸ਼ੀਲ ਸੰਜਮ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵੇਗ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਜਹਿਨ ਨਗਨਤਾ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਗਨਤਾ ਭੜਕਾਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਗਨ ਹੈ, ਨਗਨ ਹੈ। ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਨਗਨਤਾ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਗਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਢਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੜਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਢਕਣਾ ਹੈ, ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਪੜੇ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਇਹ ਕਪੜਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਰੋਗੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਵਿਕਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਾਣੇ ਤੇ ਜੋ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਵਾਨਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਤਾਂ ਲਕਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾ ਭੜਕੇ, ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ, ਨਗਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਪਰੀਤ ਨਗਨਤਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਨਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਨਗਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਕਪੜੇ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨ, ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰੋਗ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਨਣਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਪੈ ਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਹੇ ਸਿਆਣੇ, ਉਹ ਪਹਿਨਣਾ ਜੋ ਤਨ ਵਿਚ ਖੁਆਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਬ ਦੇਹ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਜਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਸੰਜਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਨੇ ਸਿਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਪਹਿਨਣਾ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਪਹਿਨਣਾ ਜੋ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਆਵਣ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇਗਾ, ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ। ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਢਕਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਦਿਸਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਔਸ਼ਧੀ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਗ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਨਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਪਹਿਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਨਣਾ ਹੀ ਪਹਿਨਣਾ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਢਕਣ ਲਈ ਸੀ, اسلام نے ایسا پردہ دے دیتا، ایسا ڈکیا، منک غائب ہو گیا، پردہ ہی پردہ رہ گیا، کپڑا ہی کپڑا رہ گیا، منک نہ دسیا۔ عیسائیت نے اتنی نگنتا دے دیتی، اتنی نگنتا دے دیتی تو نگنتا ہی نگنتا رہ گئی، کپڑا اولے ہو گیا۔ درمیانہ ڈھنگ، درمیانی اوستھا دھن گرو نانک دیو جی مہاراج نے چنی، او کپڑا ہی نہیں کہ منک نو بالکل ڈک دے وے، کپڑا ہی دکھائی دے وے، منک نہ دکھائی دے وے، پر او نگنتا بھی نہیں کہ نگنتا دکھائی دے وے، کپڑا ہووے ہی نہ۔ دیکھ دیں اسی کدھرے منک نو دیکھیے تو کپڑے دے درشن ہوندے منک دے نہیں، چدر ہے، برقع ہے، اور انیکاں طرح دے پردے نے، تو کپڑا دکھائی دیندا ہے منک نہیں۔ پر ہے کدھرے ایسی نگنتا، اس نگنتا دے بھڑکاؤ واشناواں ہی دکھائی دیندیاں نے، بھڑکیا ہویا من ہی دکھائی دیندا ہے، بھڑکیا ہویا تن ہی دکھائی دیندا ہے، لباس نہیں، کپڑے نہیں۔ ایک بڑی سندر گاتھا ہے، دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج نے اپنی سپتنی سڑی جگت ماتا گنگا انہاں نو کہیا جے تھانو سنتان چاہی دیئے تا اس دا آشرواد تسی بابے بڑھے تو پرابت کرو۔ سکھ نو مان دیندے نے گردیو، اسیس لو، آشرواد لو۔ بابا بڑھا صاحب نو ملن لئی تیار ہوئیاں ماتا گنگا جی، تن سجایا بستریاں نال، گہنیاں نال، پھر اپنے رتھ نو سجایا، پھر سجیاں دھجیاں نال سہیلیاں لئیاں، سکھیاں لئیاں، نوکرانیاں، داسیاں لئیاں، چل پے بابا بڑھا جی دے درشن کرن لئی۔ اکثر ایسا ہوندا ہے کہ بہت اس طرح دا شنگار منک کر لوے، لباس پہن لوے، تو اندر بھاو پیدا ہو جاندا ہے جیسے میں درشن کرن لئی نہیں جا رہا، درشن دین لئی جا رہا۔ لباس اے بھاو پیدا کر سکدا ہے، لباس اے خیال پیدا کر سکدا ہے میں درشن دینے نے۔ اور جنہ جنہ دے اندر اے بک جتنی زیادہ ہوئے گی اتنا بھڑکاؤ لباس پیدا ہوتا جائے گا، اتنا ہی بھڑکیلے لباس دا جنم ہوئے گا کہ میں درشن دینے نے، میں نے دکھانا ہے، میں جگت نو دسنا ہے۔ پاویں ماتا جی دی بھاونا نہیں سی، پر سنسار کراؤ ریتی دے مطابق آپ نے بڑے سندر وستر پہنے، سندر گہنے نال اپنا تن سجایا، رتھ سجایا، سجیاں دھجیاں داسیاں تے سہیلیاں نال، تھال دے 36 پرکار دا پکوان لے کے آپ چلیاں نے۔ دوروں رتھ جد بابا جی نے ویکھیا، دھوڑ اڑدی ہوئی، پوچھ لیا کامے تو سیوک تھوں، اے کون آ رہے نے؟ تو سیوک نے دس دیتا گرو کے محل جاپ دے نے۔ رسنا تو سبھاوک نکلیا، ایک گرو کے محلانوں کی بھاجڑ پہ گئی ہے۔ اے بول ماتا گنگا جی دیوی کنی پہ واپس ہو گئی۔ دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج نو شکایت کی تھی، جنہاں نو آپ مان دین دے ہو، پرتشٹا دین دے ہو، وہ اس طرح سڈا اپمان کر دینے۔ اور بابا جی دی رسنا تو نکلیا ہے، گرو کے محلانوں کی بھاجڑ پہ گئی ہے۔ دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج فرمان کر دینے، کسے سادھو کول جائید ہے درشن کرن لئی، درشن دین لئی نہیں۔ تھوڑا جان دا ڈھنگ، تھوڑے کپڑے، تھوڑے گہنے، یہ بھاو بھی نہیں پیدا کر سکتے کہ میں درشن کرن لئی جانا ہے۔ اس واسطے جے ہر تھان دی جان دی اپنی ایک لباس ہے، اپنا ایک پوشاک ہے، तो सत्संग दे जान दा भी अपना एक लिबास है, अपनी एक पोशाक है। और ओ पोशाक बार बार ए भावना पैदा करे कि मैं दर्शन करन लई आया संगत दे, मैं दर्शन करन लई आया गुरु दे, मैं दर्शन करन लई आया एक पावन पवित्र माहौल दे। पर जे कपड़े ऐसे होन ते सारिया की निगाह उस दे कपड़िया ते ही पए, तो एक ते सारिया दा ध्यान उखड़िया ते दूजा अपने मन विच भाव पैदा होया दर्शन देण दा दिखाण दा। यही कारण है कि बहुत सारी मनुखता धार्मिक लाभ तो वांझी रह जांदी है क्योंकि अपने वस्त्रां दी तरफ ख्याल नहीं रखती। खास करके इस देच इस्त्री जात किसी हद तक बहुत जिम्मेवार है क्योंकि उसका लिबास कई दफा देखने दे चाया सत्संग देच ऐसा होंदा है जो सत्संग दे मयार ते पूरा नहीं उतरदा। कहिंदे दूसरे दिन जद सादा लिबास पहन के दो मिस्से प्रसादे और प्याज दा गंडा थाल दे च रख के बिना दासियां तो बिना रथ तो पैदल जद जगत माता गंगा जी पहुंचिया ने, अजे वे कदमा दी दूरी है बाबा बुढ़ा जी दी रसना तो निकलिया। मां नू वाकई फिक्र आउंदी है बच्चे नू भुख लगी है, कल कुछ होर आखिया सी अज कुछ होर आख रहे ने, एकदम भज्जे हो गए थाल ले लिया माता जी तो मंजे ते बैठ गए ने। मिस्सा प्रशादा तोड़े है बुरकी मुंह च पाई है, प्याज दा गंडा मंजे दे पावे दे ते रख के जो मुठ नाल तोड़े है आखे है ओ लाल मां तेरी कुख तो जन्म लवेगा जो दुष्टां दे सिर इंज बनेगा जिवें मैं इस प्याज नु तोड़े है। ए वाक प्रगट होया दल भंजन गुरु सूरमा वड योधा बहु परोपकारी धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा जन्म आप दी कुखों होया। मीरी पीरी दे मालक तलवार दे धनी और शस्त्रां दे धनी सूर वीरता जिन्हां दे रोम रोम दे चों जो है प्रगट होंदी सी और जिन्हां दे चेहरे तो भक्ति भाव हर वक्त प्रदर्शित होंदा सी, ऐसे मीरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा जन्म वक्त दे एक महान फकीर गुरु घर दे एक महान आशिक संत बाबा बुढ़ा जी दे आशीर्वाद नाल होया। पर इस आशीर्वाद दे पिछे एक बहुत वड्डी कहानी छुपी हुई है कि किसे भी संत कोल आना है दर्शन देण लई नहीं दर्शन करण लई। इहदे च कपड़िया दा बहुत वड्डा योगदान है। कपड़े कुछ ऐसे होंदे ने जो मन दे अंदर ख्याल पैदा करदे ने मैं दर्शन देने ने, और कपड़े कुछ ऐसे ने जो पैदा करदे ने ख्याल मैं कुछ भी नहीं मैं ते दर्शन करने ने, मैं ते दूजे दे जो है दर्शन करने ने। इस संबंध च एक होर भी बड़ी सुंदर गाथा है भगत कबीर जी दे डेरे एक ऐसी पनहारी सी जो गंगा तो रोज पानी भर के लियांदी है मटकियां दे राहे और सारा दिन प्यासियां दी प्यास बुझांदी है ठंडे जल नाल रसना नाल परमात्मा दा नाम जपदी है अपने मन नूं शीतल करदी है ते दूजियां नूं शीतल पानी पिला पिला के प्यास बुझांदी है अगलियां दे तन शीतल करदी है। इस तरह मन दे तल ते उसदे सिमरन चलदा रहिंदा है तन दे तल ते उसदी सेवा चलदी रहिंदी है। सेवा सिमरन दी ए मूर्ति अपना जीवन कबीर जी दे डेरे च इस ढंग नाल बतीत कर रही है। लेकिन एक ऐसी घटना घट गई कबीर जी दे कुछ चेले शिवरात्रि वाले दिन गंगा तट ते की देखदे ने कि वक्त दे बादशाह दी बेगम सिकंदर लोधी दी बेगम हिंदू यात्रियां नूं देखण लई आई है कि इत्थे आके की करदे ने, किस तरह दे धार्मिक रस्मों रिवाज नूं ए प्रचलन करदे ने ए अपनांदे ने ए देख रही सी। जिथे ओ धार्मिक रस्मों रिवाज लोकी निभा रहे ने कर रहे ने देख रही है ਉਥੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਨੇ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੋਤੀ ਜੜਤ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਨੀਲਮ ਵੀ ਚਮਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਉਸ ਪਨਹਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਏ ਠੰਡੇ ਜਲ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਚੱਲਦੀ ਏ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਸਤਰ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਤੇ ਇਕ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਲ ਹੈ ਸੰਸੇ ਜੀਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ ਮੈਲਾ ਹਿਰਦਾ ਕੌਣ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦਾ ਕੌਣ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਤਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਤਨੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਿਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਦੇਹ ਹੀ ਸੰਦੇਹ ਰਹਿ ਜਾਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿ ਹੀ ਨਾ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਚੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਨ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਦੇਹ ਹੀ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਔਰ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸੰਦੇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਆਇਆ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸਮਾਧਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦੀ ਖਾਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਬੀਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਪਨਹਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਲਿਬਾਸ ਪਤਾ ਨੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕਬੀਰ ਦੇ ਬੜੇ ਦੋ ਕੀਮਤੀ ਸਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਹੈਂਗੇ ਬਾਹਨ ਸਘਨ ਗਨ ਛਤਰਪਤੀ ਕੀ ਨਾਰ ਤਾਸੋ ਪਟੰਤਰ ਨਾ ਪੁਜੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਪਨਿਹਾਰ ਜੋ ਹਰੀ ਜਨ ਦੀ ਪਨਹਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਤਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁੱਛ ਨੇ ਤਾਸੋ ਪਟੰਤਰ ਨਾ ਪੁਜੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਪਨਹਾਰ ਤਰਕ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਭਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਮਖਮਲੀ ਨੇ ਨੀਲਮ ਜੜਤ ਨੇ ਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਖੱਦੜ ਦੇ ਨੇ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਨੇ ਟਾਕੀਆਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਚੀਥੜੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਤਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁੱਛ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋ ਕਬੀਰ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਨਿਰਪ ਨਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦੀਏ ਕਿਉਂ ਹਰ ਚੇਰੀ ਕੋ ਮਾਨ ਮੈਂ ਹਰੀ ਦੀ ਚੇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਥੜਿਆਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਉਪਮਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਇਸਨੇ ਸਾਦੇ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਲਿਬਾਸ ਜ਼ਰੀ ਨੀਲਮ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤਰਕ ਅਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਨਿਰਪ ਨਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦੀਏ क्यों हर चेरी को मान ओ मांग सवारे विखे को ऐसे मरे हरी नाम। इदे सादे कपड़ियां दिच हरी दा नाम है, उदे भड़कीले लिबास दिच प्रदर्शनी है, वाशना दी नुमाइश है। उदे कपड़ियां नू देख के दूजियां दियां वाशनावां भटक दियां ने, भड़क दियां ने, प्रगट हों दियां ने। इदे सादे लिबास नू वेख के लोगां दी जबान ते सतनाम सतनाम दा जप चल रहा है। जिन्हां कपड़ियां नू देख के भगवान चेते आवे, मैं उसकी उपमा करा, या जिन्हां कपड़ियां नू देख के शैतान दा जो है चेता चले, मैं उदी महिमा गायन करा। वाकई ऐसा है लिबास जिन्हू वेखदे आई शैतानियत प्रगट होंदी है, शैतान दे दर्शन होंदे ने। और है ऐसा लिबास जिन्हू वेखदे आई भगवान दे दर्शन होंदे ने, प्रभु दे दर्शन होंदे ने। खाण पीण दी सावधानी तो बाद जो मनुख अपने वस्त्रां दे प्रति सावधान नहीं, धर्म दी चरम सीमा नू छू नहीं सकेगा, बुलंदियां नू छू नहीं सकेगा। या इंज कह लो, जद भी किसे दे पैर बुलंदियां दी तरफ रागब होंदे ने, उदे पहरावे दी सादगी आनी आरंभ हो जाती है, उस दे पहरावे दी कोमलता आनी जो है शुरू हो जाती है। मनुख दी खाण पीण दी कमजोरी तो बाद ये दूसरी कमजोरी है। खाना पीना जबान दे रस करके बेमर्यादा चला जांदा है, पहनना वाशना करके और अहंकार करके अपने आप नू प्रगट करना है। और जैसे कोई कपड़ियां दे राही अपने आप नू प्रगट करता है, उसी तरीके नाल दूसरियां दियां वाशनावां जो है प्रगट आउंदियां ने, और ये पहनना धर्म दी दुनिया विच जुर्म हो जांदा है। जगत दा तमाम फकीरी समाज, साधु समाज, संत समाज जिस सादे कपड़ियां विच लिपटिया होया है, तो इस दे पिछे कोई फोका कर्म कांड नहीं, इस दे पिछे एक बहुत गहरी सोचनी है, एक लंबी विचारधारा है कि मैं ऐसा पहना कि मैं छुप जावा, और मैं ऐसा पहना कि मैं प्रदर्शित ना होवा, मैं ऐसा पहना कि दूसरे दियां वाशनावां भी प्रदर्शित ना होन। अगर किसी दे कपड़िया दे राही किसी दी वाशना प्रगट हो रही है, तो उदा पहनना बिल्कुल धर्म दी दुनिया च जुर्म है, पाप है। भावे कानून दी दुनिया जुर्म ना होवे, लेकिन धर्म दी दुनिया विच ए पाप है, इते गुनाह है। इदा पहनना ही दूजियां दी वाशनावां नू भड़का रहा है, ते भड़कियां होईयां वाशनावां किसी वक्त भी किसी दी इज्जत किसी दी असमत लुट सकदियां ने। मौजूदा दौर दा माहौल ऐसा है कि चारों पारे पासे नगनता और अर्ध नगनता दे राही वाशनावां नू प्रदर्शित करन दा एक महान प्रगटावा जो है चल रहा है चारों पासे। और इसे नू देख के ही गुरु नानक दी जो है रसना तो निकल गया सी, इते कल युग दा भाव है। नारद नाचे कल का भाव, जति सती कहे राखे भाव। मन नारद होवे ते चारों पासे नगनता दी प्रदर्शनी होवे, तो फिर जति ते सती लई थां बनानी बहुत औखी है, अपने पैर टिकाने बड़े औखे ने। पहनन दे संबंध च धन गुरु नानक देव जी महाराज दा ए महान उपदेश इस प्रकार है, रत्ता पहनन मन रत्ता सुपे दी सतदान। ए जो मन परमात्मा दे नाम दिच लीन हो गया है, रत्ता गया है, मनो मैं एही लाल रंग दी पोशाक पहनी है, और लाल रंग दे गूढ़े कपड़े पहनन दा हुण चाव नहीं रहा। सुपे दी सतदान, और एही मैं सफेद रंग दे कपड़े पा ले ने, जो दानी बिरतियां पैदा हो गई ने, परोपकार दा मादा पैदा हो गया है। नीली स्याही कदा करनी पैरन पैर ध्यान, जो मन विच अपने विकारां दे प्रति रोस पैदा हो गया है, एही मैं काले रंग दे कपड़े पहने ने। सारी दुनिया विच अज भी रोस दा रंग काला मनिया जांदा है, और वाकई जद किसे नू अपने गुनाह अपने विकारां ते रोस पैदा हुंदा है, अंदर काले रंग दी धारी जो है बनदी है। महाराज कहिंदे मैं यही काले रंग दे कपड़े पहने ने, और जद उन्हां विकारां नूं कट्टण दा ख्याल पैदा हो जाए, साहिब कहिंदे यही मैं नीले रंग दे कपड़े पहने ने। नीली सिहाई कदा करनी पैरण पैर ध्यान, पैरां दी सोहणी जुत्ती मैं केड़ी पाई ए तिल्लेदार, जो ध्यान नू हे प्रभु तेरे मार्ग ते तोरे है। सोहणी जुत्ती पाई हुई है, पैर भटके हुए ने, पैर गलत मार्ग ते चले हुए ने, तो कहा जा सकदे ते पैरों नंगा है। जुत्ती उसदे पैर दे च है जिसकी सुरत ध्यान दे मार्ग ते प्रभु दे मार्ग ते है चल रही है। महाराज कहिंदे ने पैरण पैर ध्यान, ओ जो ध्यान तेरे विच जुड़े होया है ते मैं जो चल रहा, यही मैं सोहणे तिल्लेदार पैरां दे च जुत्ती पहनी हुई है। कमर बंद संतोख का धन जो बन तेरा नाम, कमर कसा मैं संतोख दा कीता होया है। ते हुण सब तो वड्डी प्रदर्शनी दी जिहड़ी वस्तु है ओ है धन, ओ है जोबन। महाराज कहिंदे ने मेरे कोल तेरे नाम तो बिना होर कुछ नहीं, तेरा नाम ही मेरा जोबन है और तेरा नाम ही मेरा धन है। वाकई नाम दे मिलदे हां जो एक स्वप्न उजागर हुंदा है, और नाम दे मिलदे हां जो अंदरों एक बादशाहत पैदा हुंदी है, उसे दिन ही पता चलदा है धन किस नूं कहिंदे ने, जोबन किस नूं कहिंदे ने। सतगुरु देव जी महाराज कहिंदे ने सारा जोगन ते सारी धन संपदा फिके पै जांदी है जिस दिन ए असली धन मनुख नूं जो है प्राप्त हुंदा है। धन जोबन तेरा नाम बाबा होर पहनण खुशी खुआर, जित पै दे तन पीड़िए मन में चले विकार। ए सियाणे मनुख ओ पहनणा जो खुआरियां नूं जन्म देवे, मन विच विकारां नूं जन्म देवे, ऐसे पहनने नूं इक पासे कर। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा ए मूल संदेश उपदेश खान पीण पहनण दे बारे जिस विच बहुत वड्डी सच्चाई है, जो इस तल ते संजमी नहीं, ओ परमात्मा दे मार्ग दा पांदी भी नहीं।

बड़े भयंकर रूप दे सामने आउंदा है और शरीर पहले इदा मसला पहले हल करना पैंदा है और इदा मसला है खाना पीना पहनना पर ए संजम दे च ना होवे तो खाना पीना भी तन नू रोगी कर देगा मन नू विकारी कर देगा ए पहनना अगर संजम दे च ना होवे मर्यादा दे च ना होवे तो ए भी तन नू रोगी कर देगा मन नू विकारी कर देगा और तन दियां सारियां लोड़ां पूरियां हो जान ते मन जद बड़े भयंकर रूप दे सामने आवे तो हुण इस मन दी वास्तविक लोड़ की है। करीबन करीबन दुनिया दे अजोके सियाने मनुखा ने ऐसा समझ लिया मनोरंजन मन दी लोड़ है। नाटक चेटक तरह तरह दे रंग तमाशे रंगीनिया इस तरह दे मनोरंजन दे साधन संपन्न घरानिया दे नवे तो नवे पैदा हो रहे ने लेकिन मन दी एक अपनी एक अवस्था है। जिस चीज नू एक दफा वेख लवे ओनू पुराना कर देंदा है ते पुराने दी मन परिक्रमा नहीं करता मन अग्गे जांदा है मन गतिमान है इदी गति बड़ी तीक्ष्ण है और ये रुकदा नहीं ये लंघ जांदा है और लंघ के हर चीज नू पुराना कर देंदा है हर वस्तु नू पुराना कर देंदा है रंग पुराने हो जांदे ने रूप पुराने हो जांदे ने महफिलां पुरानियां हो जांदियां ने तस्वीरां पुरानियां हो जांदियां ने कहानियां पुरानियां हो जांदियां ने संगीत दियां धुनां पुरानियां हो जांदियां ने माहौल पुराना हो जांदा है। अज देखदे हां संपन्न घर जो है देशां विच ते कोई वध तो वध दो साल ही मकान विच रहिंदा है तीजे साल मकान बदल देंदा है नौबत इत्थे तक आ गई परिवार बदलने ने पति बदलना है पत्नी बदलनी है पर हुण कौन दसे ए जो मनोरंजन है ए मन दी मंग नहीं ए ते इस तरह है जैसे रोंदे हुए बच्चे नू छणकणा दे के वक्ती तौर ते बुलाया जा सकदा है पर उते दूध लई रो रहा है उते मां लई रो रहा है वक्ती तौर ते ए छणकणा दे के बुलाया जा सकदा है परचाया जा सकदा है लेकिन फिर भी उसने छणकणा सुट देना है हथ मां दी तरफ पसारने ने दुध दी मंग करनी है हू बहु देखदे पया संपन्न घरानिया दे लोग इना छणकणिया ने सुट रहे ने और कहने नहीं अस्थाई सुकून चाहिदा है मसनोई नहीं दायमी आनंद चाहिदा है अस्थाई आनंद चाहिदा है अस्थाई खेड़ा चाहिदा है तो ओ जड़ा अस्थाई खेड़ा है ओ ते जो अस्थाई है जो टिकिया होया है जो दायमी है जो हमेशा है उस तो ही प्राप्त हो सकदा है और ओ ते केवल परमात्मा है ओ ते केवल ईश्वर है उस तो ही लभ सकदा है। तो मनोरंजन दे जेड़े जेड़े साधन उस दौर दे विकसित होए सन सतगुरुदेव जी महाराज उसका जिक्र करते ने सुंदर घोड़ा होवे सोने की काठी होवे लगाम भी जर्रीदार होवे और कृपान तलवार गात्रे वाली पहनी होवे तीर कोल होवन पत्था होवे और तरह तरह दियां खुशबुआं होवन और इस सब कुछ ला के घोड़े ते असवार होके निकलना एक मनोरंजन सी एक मन दी लोड़ सी नेजेबाजी एक खेड़ा इस तरह दे मनोरंजन वक्ती तौर ते मन दा बहलावा सी उस दौर विच विकसित होए सन। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने नहीं मन दी ए लोड़ नहीं और इस लोड़ नू किवें पूरा करना है धन गुरु नानक देव जी महाराज दसदे ने घोड़े पाखर सोयने साखत बूझण तेरी वाट। हे परमात्मा जो मैं तेरा रस्ता जान लिया है जो मैं तेरे रस्ते नू समझ लिया है मानो ए मैनू घोड़े की प्राप्ति हो गई है और ऐसा घोड़ा जिदे ते जतसत दी काठी पई हुई है सोने दी काठी पई हुई है। कहिंदे ने ए कोई लाजमी नहीं कि मनुख नू अपने घर दे ही रस्ते दा पता होवे जो इट्टां ते पत्थरां दा बने होया मकान है और उस दे च आ गया है। अगर यही उसका घर है तो एक दिन इसे ही घर चो चार मनुख चुक के ले जांदे ने और काडो काडो होई सतगुरु दी बाणी कहिंदी

0: कड्डो तो एक गल स्पष्ट हो गई है। इत घर घर नहीं सी सरां सी, इत्थे ते सी प्राउणे सी मेहमान, घर ते कोई होर है। बाबा फरीद उसका जिक्र कर देने, गोर निमाणी सड करे निघरिया घर आओ, सर पर मैथे आवणा मरनो ना डरियाओ, तन दा घर शमशान है मन दा घर भगवान है, तन दा घर कब्र है मन दा घर खुदा है। तो बाबा फरीद कहिंदे घर ते आवाजा पे मारदा है, ऐ तन कब्र आवाजा पे मारदा है, कब्र तैनू बुला रही है, गोर निमाणी सड करे, गोर कब्र नू कहिंदे ने, गोर निमाणी सड करे निघरिया घर आओ, सर पर मैथे आवणा मरनो ना डरिया, मौत दा भय दूर कर, ऐ तन तेरा घर शमशान ही है, ऐ तन तेरा घर कबरी है, पर मन तेरा घर खुदा है, तेरा घर शमशान नहीं है, तेरा घर भगवान है। अपने घर दी चिंता कर, और उस घर दे रस्ते दा नहीं पता। और असी देखदे हां सारी जिंदगी लोग कई दफा धर्म दे मार्ग भी बदलते रहिंदे ने, रस्ते बदलते रहिंदे ने। इस नूं इक उर्दू दा महान शायर ने अपने आलमाना ढंग नाल बयान कीता है। वो कहिंदा है, सोते में कट गई कुछ गुनाहों में कट गई, रोते में कट गई कुछ आहों में कट गई, मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। जिंदगी बड़ी थोड़ी है और रस्ते ही कोई मनुख बदलता रहे तो जिंदगी रस्तियां ची खत्म हो जाती है, मंजिल तक पहुंचना औखा हो जाता है। ये छोटी जी जिंदगी कोई एक रस्ता चुन लेना चाहिदा है, और बड़े प्रमाणिक रस्ते जगत दे च बने शाहरा। साडे देश दे चार वड्डियां शाहराहां बनियां, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन मत, गुरु मत, सिख मत। इस तरह इस देश तो बाहर भी चार वड्डे शाहराह बने, शाही रस्ते, सरकारी रस्ते, बहुत वड्डे महान और खूबसूरत रस्ते, इस्लाम, ईसाइयत, यहूदी, पारसी। पर कई दफा मनुख की अपनी आदत आंदी है विंगे टेढ़े रस्ते ते चलना, कदी कदी शाहराह ते चलन वाले उकता जांदे ने मंजिल नू दूर समझ के, तो विंगा टेढ़ा चलन लग पैंदे ने, और विंगा टेढ़ा चल के भटक जांदे ने, पर कदमां दे निशान ते बन जांदे ने उन्हां दे, उन्हां दे कदमां दे निशानां दे उत्ते दुनिया होर चलन लग पैंदी है, और इस तरह विंगे टेढ़े रस्ते बन जांदे ने, ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਚ ਹੀ ਭਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਚ ਬਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਚ ਬਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਹਿੰਦੂ ਮਤ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ, ਜੈਨ ਮਤ, ਬੌਧ ਮਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਚ ਬਣੇ, ਨਿਕਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਢੰਗੀ ਚਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਟਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਭਟਕਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, और उन्हीं निशानियां नूं कईआं ने मार्ग समझ के चलना शुरू कीता, तो भटके हुए रस्तियां दिते चलण वाले भटक गए। शाहरा अज भी असी देखदे हां उन्हां ते कोई बहुत भीड़ नहीं है। बकौले भगत कबीर, जह मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर, एक औघट घाटी राम की ते चढ़ रहो कबीर। जिस रस्ते ते चतर चलाक मनुख चल पे बड़ी भीड़ चल पई, तार्किक बंदा तर्क करने वाला जैसे रस्ते च औगढ़ घाटी आई पहाड़ आया, उन्हें किनारा कशी की थी और किनारा कशी कर दिया ही भटक गया। और ए पहाड़ जिन्होंने अबूर नहीं करना सी उन्होंने ये भटकन चंगी लगी, तो उसके पिछे चलन वाले भी भटके, और इस तरह के भटकन वाले दे करके चलन करके रस्ते बने। ये भटके हुए रस्ते करीबन करीबन सारी दुनिया दे जो है मौजूद ने, जिन्हां दे उत्ते चल के मनुख प्रभु तक ते नहीं पहुंचता, भगवान तक ते नहीं पहुंचता, पर हां रस्तियां दे भटक के रह जांदा है। और ए साफ दिखाई देता है। इस वास्ते एक आलम नु कहना पया, मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। जिथे रास्ता कठिन दिखाई देवे, मनुख उथे रास्ता बदलने दी जो है कोशिश करता है, ते प्रभु दा मार्ग मैदानी रास्ता नहीं है, पहाड़ी रास्ता है। एक औ घट घाटी राम की तहीं चढ़ रहे हो कबीर, इसे नु रविदास कहंदे ने, घट औ घट डूंगर घना, एक निर्गुण बैल हमार, रमैये से एक बेनती मेरी पूंजी राख मोरार। औ घट घाट उसनु कहंदे ने जिस दे ते चढ़ना बहुत कठिन होवे, जिस तो लंघना बहुत कठिन होवे, और चढ़ाइया ते दम फुल जाए। इस तरह का ही परिपूर्ण परमात्मा का मार्ग है, क्योंकि सुरत नु बुलंदियां ते लै जाना है, उचाइया ते लै जाना है। इन्हां उचाइयां तो जो भी घबरांदे ने रस्ता बदल देने, और पहली दफा जो रस्ता बदलदा है वो भटके वाला इंसान ओदे कदमां दे निशान पक्के रस्ते बना देने ने, और उस एक दे भटकन करके बड़ी दुनिया भटकदी है। और इस तरह दी भटकन करीबन करीबन सारे जगत दे जो है मौजूद है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, यही मेरी घोड़े दी असवारी है, यही सोने दी काठी है, हे प्रभु जिड़ा मैं तेरे रस्ते नु जान लिया, तेरे मार्ग नु जान लिया। घोड़े पाखर सोयने साखत बूझण तेरी वाड, मैं जान लिया तेरा रस्ता की है। उसका रस्ता की है, जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, तेरा नाम जपना ही तेरे राह ते चलना है, तेरे मार्ग ते चलना है, बाकी सब भटकना है। नाम बिना जेता व्यवहार जो मृतक मिथ्या सिंगार, नानक के घर केवल नाम। सतगुरु देव जी महाराज कहंदे ने, साडे घर विच ते केवल नाम दा ही जप है, और कुछ भी नहीं। और यही एक मार्ग है, यही एक सही मार्ग है, बाकी सारी दी सारी जो है भटकना है। उदे रस्ते नु बुझना की है, उदे नाम नु जपना, और नाम जपन विच पूरा भरोसा होना कि परमात्मा तक पहुंचण दा यही मार्ग है, यही रस्ता है। तो साहिब कहंदे ने, जिहड़ा तेरे रस्ते नु जान लिया, तेरे वाट नु समझ लिया, बस यही साडे वास्ते घोड़िया दी असवारी है। घोड़े पाखर सोयने साखत बूझण तेरी वाट, तरकस तीर कमान सांग तेग बन गुण धात। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरे अनंत गुणा नु जो धारण कर लिया है, यही साडे कोल भत्था है, उस देश तीर ने, यही साडे कोल कमान है, और यही तेग बंद जिस देश तलवार रखी दी है, उनु कहंदे ने तेग बंद गात्रा, यही साडे कोल ओ गात्रा है, और यही साडे कोल तलवार है, केड़ा जो तेरे गुण साडे कोल ने। ए जो ज्ञान आ गया है, ए जो शील आ गया है, ए जो संजम आ गया है, ए जो प्रेम आ गया है, ए जो समदृष्टि आ गई है, ए जो हृदय निर्वैर हो गया है, निर्भय हो गया है, यही ते साडे शस्त्र ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज भी इसका बड़े सुंदर ढंग नाल जिक्र करते ने। आम कहा जाता है अवतारी पुरुषां कोल कुछ ना कुछ शस्त्र रहे ने। मुहम्मद साहब दे हथ दे तलवार सी। अपने देश नू देखिए, श्री राम दे कोल धनुषबाण सी। द्वापुर युग दे अवतारी पुरुष श्री कृष्ण जी कोल सुदर्शन चक्र सी। किसी तारकिक ने गुरु अर्जन देव जी महाराज नू कह दिता, तुसी पंजवें गुरु नानक, गुरु नानक दी गद्दी दे वारस, कलयुग दे अवतारी पुरुष, थोड़े कोल कोई शस्त्र नहीं है। तो महाराज कहण लगे, है वेखो गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रेण छारी, इस आगे टिके ना को विकारी, गुरपूरे ए गल सारी। साडे कोल गदा है गरीबी दी, विनम्रता दी, निर्माणता दी। साडे कोल खंडा भी है दुधारी, केड़ा जो सारियां दे चरणां दी खाक बन गए, हर एक दे पैरां दे थल्ले हो गए। सानू किसे दे सिर दे उपर बैठण दा शौक नहीं, सानू ते कदमां विच बैठण दा शौक है, सानू ते चरणां दे थल्ले बैठण दा शौक है। चोटी दे धार्मिक मनुख दी चाहत आउंदी है सारियां दे कदमां दे थल्ले बैठना है। चोटी दे राज नीचक दी एह चाहत आउंदी है ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਜਹ ਬੈਠਣਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਨਿਮਰਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਖਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਤਰਕਸ ਤੀਰ ਕਮਾਣ ਸਾਂਗ ਤੇਗ ਬੰਦ ਗੁਣ ਦਾਤ ਵਾਜਾ ਨੇਜਾ ਪਤਸ਼ਉ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਮ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ। ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਡੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਡੀ ਪਾਤ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਇਹ ਜੋ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਚੜਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਜਿਤ ਚੜੀਏ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ ਹੋਰ ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਖੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਨੋਰੰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ, ਐਸੀਆਂ ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਚੜਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਜਿਤ ਚੜੀਏ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ।
1: ਘਰ ਮੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਮ ਕੀ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਰ ਹੁਕਮ ਸੋਈ ਤੁਧ ਭਾਵਸੀ ਹੋਰ ਆਖਣ ਬਹੁਤ ਅਪਾਰੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਕਰੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰੇ ਜਿਤ ਸੁਤ

बार बार वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु ये मंत्र उतना ही आंदा है करीबन करीबन जितनी देर दे असी श्वास विरास लेंदे हैं बस उतनी इसकी जो है गति है उतनी ची अपने आप पूरा हो जाता है इनू श्वास विरास दे च पूरा नहीं करना ये आपे ही पूरा हो जाता है उतने ची वाहेगुरु वाहेगुरु इस्लामी मंत्र भी ऐसा है अल्लाह हो इसी च पूरा हो जाता है मैं देख रहा सूफी मुसलमान फकीर ऐसा ही जपते हैं अल्लाह हो बिल्कुल गति यही रहती है और सहजे सरलता दे नाल मनुख जितनी देर दे श्वास ग्रास लेंदा है ते वाहे गुरु पूरा हो जाता है इसनू रटी जाना है एक गल वखरी है कि तार्किक बंदा कह देगा ते पुनरुक्ति है इसकी रिपीटेशन है एवें बार बार दुराई जाओ बच्चों की तरह मैनू एक बड़े सियाने बंदे ने ते दिल्ली कह भी दिता से कहने लगा गैनी जी गुरु ग्रंथ साहब दे च रेपीटेशन है पुनरुक्ति है ते मैनू कहन लगे मैं थोड़ियां दो चार नज़मा पंजाबी दियां उर्दू दियां सुनियां ने किसे कोल ते तुसी कवि दिमाग रखदे हो तो इतना ते थानू पता होगा कि पुनरुक्ति दोष है रेपीटेशन साहित्यिक दुनिया दे च दोष है मैं कहा होवेगी दोष साहित्य ने मन लिया होगा साहित्यकारा ने मन लिया होगा परमात्मा नहीं मनता प्रकृति नहीं मनती मैं भी नहीं मनता कि पुनरुक्ति दोष है अजय ते मैं कुछ होर कहना सी कह लगा गैनी जी थोड़ी कथा च भी मैं पुनरुक्ति दिखाई देती है रिपीटेशन और कह लगा एक शब्द दे गुरु ग्रंथ साहब दे एक शब्द दे जड़ी गल है दूजे तीजे च भी हुई है चौथे पंजे च भी हुई है और मैनू कहन लगा मुदतां तो थानू सुन रहा तुसी भी घूम फिर के उत्थे ही आ जांदे पुनरुक्ति रिपीटेशन इते दोष है मैं कहा दोष तू मनदा होवेगा साहित्यकार मनदे होणगे प्रकृति नहीं मनदी परमात्मा नहीं मनदा मैं नहीं मनदा मैं कहा पुनरुक्ति ते ही जीवन है कहने लगे किस तरह जीवन है जिंदगी किस तरह पुनरुक्त हो गई मैं कहा देखो एक श्वास हुण तू अंदर लै गया ते हुण एक बार आया हुण मुड़ के अंदर ना ले जाई नहीं ते रिपीट हो जाएगा इत पुनरुक्ति हो जाएगी इत दोष है बार बार श्वास क्यों लेना एक कोई दफा लै नबज बार बार चल रही है दिल बार बार धड़कता है श्वास ग्रास बार बार चलते ने पृथ्वी दे उते दिन बार बार आउंदा है रात बार बार आउंदी है पानी बार बार पीने हैं रोटी बार बार खाने एक कोई दफा जिंदगी च खानी चाहिए है बार बार क्यों खाना है सवेरे खा ली दोपहरे खा ली शामी फिर खा रहे हैं क्यों पुनरुक्त क्यों कर रहे हैं ये रिपीट क्यों कर रहे हैं बार बार पानी पी रहे हैं बार बार भोजन छक रहे हैं बार बार श्वास ले रहे हैं बार बार दिल धड़क रहे हैं बार बार नबज चल रही है पृथ्वी ते बार बार दिन आ रहे है बार बार रात आ रही है कहने लगा है इतनी पुनरुक्ति है कहने लगे मैं इस ढंग नाल सोचिया नहीं सी बार बार हर के गुण गाओ पातशाह दी बाणी कहती है बार बार रटी जा वाहेगुरु उतने चिर तक करी जा जितने चिर तक तो वाहेगुरु दा रूप नहीं हो जाता धुन रटन करी जा भारत देश ते भारत तो बार इस्लामी दुनिया जितने गुरमंत्र ने करीबन करीबन उस श्वास विरास दे पूरे हो जाते राम पूरा हो जाता है ओम पूरा हो जाता है वाहेगुरु पूरा हो जाता है अल्लाह हो इसे च पूरा हो जाता है ये अपने अपने जप करने वाले दे मंत्र ने जगतगुरु बाबा कहिंदे भी ने कोई बोले राम राम कोई खुदा कोई सेवे गुसैया कोई अल्लाह कोई अल्लाह